0: कार्य 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर ए शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर दिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
4: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 17

0: 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भशरू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसी ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर। जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत। 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the President has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the Governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the Governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the Governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
5: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It aims to promote economic and technical cooperation among countries bordering the Bay of Bengal and its neighborhood. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
6: In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammed Faizan, Mohammed Ishtiaq, Mohammed Waqas and Mohammed Asim. All of them were residents of Mandal.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

दोस्तों मंगलवार का दिन है, बहुत ही प्यारी सुबह है, 8:22 होने को है स्टूडियो की घड़ी में और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट इकलौता रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और दोस्तों आज के सफर की शुरुआत आज के ताज़ा ज्ञान के साथ, और आज का ताज़ा ज्ञान यह है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। दोस्तों सभी जानते हैं ना, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपका व्यवहार अच्छा होता है, आपका नेचर अच्छा होता है, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चमक और असली पहचान जो है वो आपकी होती है। सबके साथ सम्मान से पेश आइए, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प कीजिए, वही बोलिए जो आपको लगता है कि हाँ मुझे भी ये सुनने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि हर बार अपने शब्दों को ध्यान में रख के जब आप बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं ना। कभी कभी कहते हैं ना, हमने बोल तो दिया लेकिन हमने सोचा नहीं, और बाद में हम बहुत सोचते हैं। इसीलिए बस अपने शब्दों को स्ट्रांग बनाइए, अपने नेचर को अच्छा बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी में हर जगह पर पैसा नहीं, इंसान का नेचर उसका स्वभाव काम आता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को देखिए, रुकिए, थमिए, जो बदलने की ज़रूरत है उसको ज़रूर बदलिए अपने अंदर। कहते हैं ना दोस्तों, आप जब ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करते हैं ना, वही बदलाव आपकी एक बड़ी सोच का, बड़ी सकारात्मक सोच का रीज़न बनते हैं ना। तो एक अच्छा रीजन बनाइए, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, और हर दिन का सूरज हमें एक नया कोरा पन्ना देता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें फुलफिल कर सकें, कुछ ऐसा लिख सकें ताकि हमारी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो सके। तो दोस्तों बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब लाइफ में एक साथ भागने की प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, छोटे छोटे स्टेप बनाकर, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाकर काम करना शुरू कीजिए। वो जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जब आप उनको फुलफिल करते जाओगे ना, अच्छे से भरते चले जाओगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि वाह मैंने कितनी जल्दी से और कितनी तेज़ी के साथ जो है अपना जो भी लक्ष्य था वो पा लिया है। फिलहाल आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए, कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप 9837896896 पर। अभी भी मेरा गला आप देख रहे ना, साथ नहीं दे रहा है, बहुत ही भयंकर मौसम बदल चुका है, तो ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखें यार। अभी जरा स्थिति में लौट कर आएंगे, आपसे और बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, वही लवली मॉर्निंग। मेरा नाम आनंद है, मिलता हूँ जरा सी दिन में।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Hi, Dayan Energy. आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: हाँ मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय
9: बिंदास मॉर्निंग।
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

क्या बात है जी, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक। सबसे पहले तो जय माता दी, आज आपको बता देते हैं बहुत ही अच्छा सा दिन है। वाइव है, ट्यूजडे की सुबह है, मंगलवार का दिन है, सब कुछ मंगल ही मंगल हो आपके जीवन में, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 8:38 हो रहे हैं, 13 अक्टूबर की सुबह आनंद के साथ है आप, बहुत स्पेशल मॉर्निंग एंड ऑफकोर्स यहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए आज की सुबह। आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपने साथ प्यारी प्यारी जो रखे हुए हैं ना ये थॉट्स अपने मन में, इसको मेरे साथ शेयर करो, मैं शेयर करूंगा इसको पूरे मुरादाबाद तक। हाई, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, आप कैसे हैं? नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास मनप्रीत का सबसे पहले व्हाट्सएप आया है। सुबह सुबह इन्होंने मेरे को मेरी डाइविंग पहुंचाई है कि आनंद जी देखो, उठो आंखें खोलो भाई, पानी लेकर आयो, मुंह तो धो लो भाई। अरे भाई ये पूरी नहीं हुई है लेकिन मनप्रीत भाई, यार मुझे लगता है कि जीवन में सबसे कठिन जो चीज़ है ना वो ये आपका जुकाम है। अगर एक बार आपको पकड़ लेना फिर आसानी से छोड़ता नहीं है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए ना इस जुकाम से जितना हो सकता है दूरी बना के रखो, बॉस अपना खास ख्याल रखो। लेकिन आज की सुबह सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लालिमा के साथ आप निकलिए ना घर से बाहर। देखिए सूर्य देवता निकल चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही औसम है, चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में, कैसा रहने वाला है आज का मौसम, हवाएं कैसी चलने वाली है, सब कुछ आपको पता लगेगा। एक प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, एयर क्वालिटी थोड़ी सी मच बेटर है, ह्यूमिडिटी 88% है, यानी गर्मी आपको लगने वाली है हल्की हल्की सी। एंड ये जो मौसम ही आगे चल के 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करें तो 21 डिग्री तक भी आ सकता है। और बाकी आज मौसम साफ रहने वाला है पूरा का पूरा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कोई भी ऐसी नहीं दिखा रहा है बादल चादल, लेकिन बाकी मौसम भाई कब बदल जाए कुछ नहीं पता, प्रकृति का नियम है भाई, वो कभी भी बदल सकती है। तो बट आप अपना स्पेशल ख्याल रखें, ये मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है कच्चा पक्का वाला टाइप का ना, तो ऐसे में अपने बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का खास करके ख्याल रखें। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुबह सुबह एप्पल खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपको अपना नाम भी लिखना चाहिए था जब आपने मुझे इतनी प्यारी बात लिखी है। तो एक संदेश और पहुंचा है, सर जिंदगी में कुछ भी करने से पहले ना इंसान को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आगे चल के उसका क्या परिणाम होगा, मतलब अगर वो सकारात्मक वे में है तब तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ ही हमें चीज़ों को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है आपने। हमारे पास सुमन देवी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हो? आई एम वेरी वेरी गुड, और आज मैं अपने काम से बाहर निकल रही हूँ तो सोचा आपका प्रोग्राम सुन लूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। अरे वाह, थैंक यू सो मच, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किया है, हमें बहुत खुशी है। एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है, हेलो मेरा नाम श्वेता है, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग श्वेता जी। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह व्हाट्सएप माध्यम के जरिए 9837896896 पे, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इससे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये गाना एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में जब वापस आएंगे तो आज के दिन के बारे में विशेष बात करेंगे कि आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है आज 13 अक्टूबर की सुबह। आप ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए ऐसे ही FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात। मैंने भी बहुत बार इस गाने को सुना है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है और जितनी बार भी ये गाने सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। हाय वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। और बहुत सारे लोग सुबह सुबह जो है निकल रहे हैं अपनी अपनी मॉर्निंग डेस्टिनी पे, तो ऑल द वे बेस्ट यार आप जहाँ भी जा रहे हैं। एंड आज की सुबह मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास मैसेज पहुँचा है हर्षित ठाकुर का। एंड हाय हर्षित, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हर्षित भाई जो आपने लिखा है ना, वो डेफिनेटली मैं उसको जरूर अभी थोड़ी देर में अपने शो में शामिल करूंगा। वेल थैंक यू सो मच। और बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं हम सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब हर दिन आता है ना, हर दिन का सूरज जब आता है, हर दिन का जब एक नया डे शुरू होता है मेरी और आपकी जिंदगी का, तो उसमें ना बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें भी होती है ना। अब वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। आपके पास एक गिलास है, आपके पास दो गिलास है, एक गिलास में फुल पानी है, एक गिलास में हाफ पानी है। आप दो व्यक्ति को दीजिए, एक व्यक्ति फुल गिलास पानी को पी जाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति हाफ गिलास पानी को बोलेगा नहीं यार तूने मुझे इतना ही दिया है, उसको फुल दिया, तूने मेरे को इतना हाफ क्यों दिया। मतलब अगर वो चाहे तो उसको पॉजिटिविटी में भी लेके जा सकते हैं कि ठीक है यार एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है ना, ये भी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं हाफ भी ले रहा हूँ कम से कम पूरी प्यास ना सही, लेकिन गले को सुकून तो मिलेगा और शायद इतना पानी पीऊँगा तो शायद मैं और आगे थोड़ा सा सफ़र कर पाऊँगा, है ना। तो मतलब कहने का सिर्फ यही है कि आप किस नज़रिए से किस चीज़ को देखते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ थोड़ी है ना, अगर आप उसमें भी खुश रहना चाहते हैं, अगर आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकती है। आज की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को, ये ट्यूज़डे की मॉर्निंग है, दिस इज़ मंगलवार की सुबह और जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं जी। एंड आज का दिन क्यों खास है, क्या है आज के दिन का सिग्निफिकेशन, आपको भी बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन के इतिहास के पन्नों के बारे में, क्योंकि हर दिन का जो इतिहास होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। श्रोताओं आपको बता दें, आज के दिन 1792 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आधारिक निवास व्हाइट हाउस की नींव जो है वो उनकी रखी गई थी आज ही के दिन, और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना US नींव की जो स्थापना हुई थी सन आज के दिन 1775 में। साथियों और आज के दिन 1943 का वो दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। श्रोता वो आज ही का दिन था 13 अक्टूबर का। और 1999 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, आज ही के दिन 13 अक्टूबर को। हां जी, और आपको बताते चले, सन 2016 में एक बहुत ही फेमस मशहूर संगीतकार और लेखक बॉबी डिलन को जो है साहित्य का नोबल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, उससे सम्मानित किया गया था। श्रोताओं आज ही के दिन। तो देखिए, हर दिन की तारीख में बहुत कुछ खास होता है, बहुत कुछ विशेष होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं, जब हम जानते हैं उनके बारे में पता करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें आज के दिन कुछ और ख़ास लोगों का भी जो है वो जन्मदिन होता है, जिनकी वजह से, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ये दिन और ये इतिहास दोनों ही खास हो जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ, आज ही के दिन अविनाश सावले भारतीय एथलीट हैं जो लंबी बाधा दौड़ के लिए जाने जाते हैं, 1994 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा शिवेंद्र सिंह सिंधु जो मणिपुर गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे, उनका भी जन्म हुआ था 1929 में। और आज ही के दिन अशोक कुमार जो भारतीय अभिनेता हैं, उनका भी जन्म हुआ था सन 1911 में। साथियों आपको बताते चलें, ऐसी तमाम सारी मैं आपको बता दूँ लोग हैं, ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी हैं जिन्होंने आज के जन्म लिया है और कुछ अलग किया है, कुछ ऐसा किया है जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। तो हम तो आपसे भी कहते हैं कि हर दिन की किताब जो है आपको एक पन्ना देती है, हर दिन की जिंदगी आपकी एक नई खुशियों की चाबी लेकर आती है, आपकी लाइफ का जो ये पूरा एक सिनारियो है, यहाँ पर आपको एक गोल्डन चांस मिलता है कि आप भी कुछ नया बेहतर और बेहतरीन कर सके। जब आप प्रयास करेंगे ना कुछ अच्छा करने का, तो दिल से यकीन मानिए बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी और वो काम सक्सेसफुल भी होगा। श्रोताओं आज के दिन आपको बताते चलें एक और नाम जुड़ जाता है, CK नायडू भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान है, 1895 में जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बात और विशेष लोगों के बारे में हमने बात कर ली जिनका आज के दिन जन्म हुआ। अभी बात करेंगे आपके बारे में।

साथियों आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके संदेश को अभी शामिल करने वाला हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ऐसे ही आप हमारे साथ ट्यून इन रहिए। और अभी ये गाना मैं आप सभी के लिए प्ले कर रहा हूं, अगर आपके साथ आपके घर में जो भी हैं वो इंजॉय करेंगे इस गाने को और आप उनको डेडिकेट कर सकते हैं आज की सुबह इस गाने को मेरी तरफ से। बहुत ही प्यारा गाना, सुबह सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, सुबह सुबह आपके लिए चाय कॉफ़ी बना रही है, आपको ऑफिस के लिए बहुत हेल्प करती है, तो उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट तो बनता है आज की सुबह।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
6: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर मैं हूं, आप हैं और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें हैं और बहुत सारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे ये जो आपने मैसेज किए हैं ना, उसके लिए तो मैं आपका दिल से थैंक यू ही करना चाहूँगा, इतने सुंदर सुंदर मैसेज करने के लिए। और इतनी प्यारे प्यारे लोग सुबह सुबह हमारे साथ जब जुड़ते हैं ना, तो मेरे को सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच, आप लोग सच में कितने प्यारे हो यार। आपको पता है नवरात्रि चल रही है, आज माँ का तीसरा दिन है, नवरात्रि का तीसरा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। और आइए अभी बात कर लेते हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के बारे में। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, और जितने लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यूनिंग किया है आपका भी वेलकम बैक है। FM मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से शरदी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। माँ जीवन आपके जितने भी कष्ट हैं सबको हरे, सारे कष्टों को दूर करे, आपके जीवन में सिर्फ रोशनी और रोशनी हो, सिर्फ सकारात्मकता हो, यही माता रानी से प्रार्थना है। दोस्तों आपको बताते चले, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। माँ के मस्तक पर चंद्र जो घंटा है उसका आकार है, जिसे अर्धचंद्र सुशोभित है, एंड इसी कारण माँ को चंद्र घंटा भी कहा जाता है। और मान्यता है कि चंद्र घंटा अपने भक्तों को साहस, शक्ति और निर्भरता का आशीर्वाद देती है। मतलब आप जो है आपके अंदर एक ऊर्जा का जो संचार है वो होता है, आपके अंदर का जो भय है, जो डर है वो खत्म होता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको एक साहस मिलता है। तो आज के दिन की आपको ढेर शुभकामनाएं। माँ चंद्र घंटा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, आप जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको दे। मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने से आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन से सारे कष्ट भी दूर होते हैं। तो दोस्तों माँ की भक्ति में हम भी एक खूबसूरत संदेश कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, बस अपने मन में जो एक विश्वास है ना उसको जगाए रखिए, अपने हौसले को कभी कम मत होने दीजिएगा। और बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी चीज करें दिल से करें। एक छोटा सा सवाल भी होगा मेरा अभी आज के दिन से जुड़ा, एंड आज का क्या रंग है, क्या अंग है, सिग्निफिकेशन क्या है आज के रंग का, डेफिनेटली हम बात करेंगे। दिस इज नवरात्रि स्पेशल, आप सुन रहे हैं आनंद को, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। ऑफकोर्स अभी हम माता रानी की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा देवी गीत तो डेफिनेटली होगा प्रोग्राम में, ताकि ये प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाए। और हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल के कलाकार तशरीफ जिन्होंने दी है, और उनके साथ हमने स्पेशल कॉन्वर्सेशन की है, बहुत ही खूबसूरत गाया है भाई ने, तो एक छोटा सा जो है प्यारा सा भजन पहले सुन लेते हैं इनकी वॉइस में ही। और कांता भाई स्टूडियो में इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गिटार पे आयुष, एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है परफॉर्मेंस दी अपनी। तो पहले हम ये सुनेंगे अच्युतम केशवम, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
7: सुनाने वाले हो मुरादाबाद की जनता को, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे
8: हैं। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भजन है, ये सबने सुना होगा, अच्युतम केशवम, बहुत ही प्यारा भजन,
7: बहुत ही प्यारा।
8: तो मैं इसे करता हूं शुरुआत,
7: प्लीज। यार श्योर, सो मोस्ट वेलकम। और गाइस आप भी मैं जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: माहौल भी बना दिया राधे राधे भाई साहब आपको तो यार आपने तो मतलब कमाल कर दिया, इतना बढ़िया आपने गाया, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, बस मुरादाबाद की जनता भी आपकी आवाज में डूब गई होगी, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना अच्छा आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, कहाँ से इतना अच्छा आपको आया?
1: ये मेरा बचपन से था मेरा।
0: अच्छा,
1: ये मेरे ब्लड में है म्यूजिक।
0: अरे वाह।
1: लेकिन इसको मैंने खुद से ही परखा जाना और खुद के मैंने इसको पॉलिश किया, इम्प्रूव किया। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद का ही गुरु मतलब रहा हूं।
0: आते
1: मैंने कहीं सीखा नहीं है,
0: तो मतलब प्रॉपर्ली मुरादाबाद से ही।
1: हाँ, प्रॉपर्ली मुरादाबाद।
0: दैट्स वेरी नाइस। तो गाइस देखो कितना बढ़िया वो लोग कर रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सबसे पहले आप दोनों को जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो कुछ माता रानी का हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ तो एक दो कुछ हो जाए तो। कांता भाई से और भी ऐसी अच्छी अच्छी जो म्यूजिकल वाली बातें वो होती रहेंगी और ऐसे प्यारे प्यारे ट्रैक उनकी आवाज में आप सुनते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वंदे का नाम आनंद है, लौट कर आता हूँ एंड कुछ और खास बातें करेंगे, शहर में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे एंड एक छोटा सा क्वेश्चन भी होगा। सो कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, ये है दास मॉर्निंग, आपका अपना रेडियो स्टेशन है जहां दिल से दिल तक बातें होती हैं। मुरादाबाद वक्त हुआ है 9:16, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आज ट्यूजडे की सुबह, कहीं जाम है, कहीं ट्रैफिक है हल्का फुल्का भी, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896 पर।

क्या बात है यार, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक अभी आपने एंजॉय कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो गया है 9:20। आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ, जहां मैं हूं, आप हैं और ढेर सारी अच्छी बातें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे वंडरफुल मैसेज करने। हाय, कैसे हालचाल, जय श्री राम। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने आ गया हूं आपसे, एंड इसका आंसर आप करोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी यार। बहुत ही क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, है ना। बड़ा आप गूगल नहीं करेंगे, ये आपको मेरी तरफ से मतलब एक छोटी सी कह सकते हैं रिक्वेस्ट है। दिमाग लगा के अगर बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जब आप दिमाग पे प्रेशर डालो वो चीज़ आपको उसका आंसर ना मिले बेसिकली, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है अपने इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अपने भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपको पता है तो मैसेज करिएगा मुझे 9837896896 पर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंग्लिश में जाती है और हिंदी में वापस आती है, इसका भी आंसर करना। अगर आपने इसका आंसर किया तो पूजा शाला की तरफ से एक अच्छा सा प्राइज आप जीतेंगे आज की सुबह, एंड इसके साथ ही साथ आप

0: जो है डांडिया नाइट कॉन्सर्ट के पासेस भी जीत सकते हैं मेरे साथ, ठीक है जी। दो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदी में जाती है और इंग्लिश में लेकर आती है, आप मुझे बताओ फटाफट से। अगर इन दोनों के आंसर्स आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था भाईजान साहब का YouTube चैनल जो है वो लॉन्च बेसिकली होने वाला है, और उस पर अब वो आपको अपना कंटेंट दिखाते हुए नजर आएंगे, जिसको लेके फैंस में काफ़ी उत्सुकता जो है वो बढ़ गई है, काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गया है फैंस में। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से, और उसके बाद जो कांता भाई ने एक और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक जो है सुनाया वो आप तक डेफिनेटली पहुंचाने वाला
1: हूँ। भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हम भी सभी सभी मत वाले।
0: आय हाय, बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए खबर आई है भैया अपने यूपी बोर्ड से। पहले फटाफट यही मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसीलिए हाईलाइट जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको लिख के ले आता हूँ। यूपी बोर्ड ने सोमवार की शाम को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हैं उसके लेकर जो है उसको लेकर एक नई बात और एक टाइम टेबल घोषित किया है कि भैया 10th और 12th वाले स्टूडेंट का जो टाइम है वो उन्होंने घोषित किया है कि परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 यानी कि 5 फरवरी सन 2027 से शुरू होकर के 24 फरवरी सन 2027 तक चलेंगी। इसके बाद जो है यूपी में इलेक्शन जो आ रहे हैं इसी वजह से, ठीक है जी। तो 2027 की ये स्पेशल अपडेट, ये जो था ये उन लोगों के लिए था इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट जो स्टूडेंट हैं जो इस बार तैयारी कर रहे हैं 10th की और 12th की। तो 5 फरवरी से बच्चा स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम्स जो कि चलने वाले हैं 24 फरवरी तक। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको डेफिनेटली बताए जाएंगे, तो प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। दिल धड़कने दो से गाना थोड़ी देर में, चलो आप मुझे मैसेज क्योंकि बताना जी 9837896896 पे हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। बहुत सारे लेडीज एंड जेंटलमैन लोग जुड़े हैं, अलका वर्मा जुड़ी है, राधे राधे पहुंचाती है, मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इनको गाने अच्छे लग रहे हैं। कश्मीर से हमारे पास मैसेज आया है शाजिया का। इसके अलावा हमारे पास एक संदेश पहुंचा है बरेली से, हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है। आई एम एब्सोल्युटली गुड, हाय गुड मॉर्निंग, हर्षित बात कर रहा हूं मैं, एंड ये दिव्या इनकी वाइफ है और उनको ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हर्षित, मैं डेफिनेटली गाना थोड़ी देर में प्ले करूंगा, आप ऐसे ही मेरे साथ ट्यून इन रहिए। एंड ऑफ कोर्स आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, आप मुझे व्हाट्सएप करो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इंग्लिश में लेकर जाती है और हिंदी में वापस लेकर आती है, आपको पता है, तो मैसेज करके बताओ जरा 9837896896 पर। अभी माहौल बनाते हैं और हमारे साथ जो कांता भाई ने गाना हमें सुनाया ना अपनी आवाज में, जो इन्होंने वाइब्रेशन दी है सुबह सुबह पॉजिटिविटी की, तो जरा इसको सुनते हैं। थैंक यू सो मच कांता भाई, आप आए और कांता की आवाज सुनो कैसी लग रही है आपको बताना मुझे।

0: क्या बात है यार,
1: सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मेरे पास तो सिर्फ ये तालियां ही हैं और ये दिल आप चुरा के जाने वाले हो आज कांत भाई, मेरा ही नहीं पूरी मुरादाबाद की जनता।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: यार सोना इतना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: Somebody's there.

यार कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना जिनको सुन के सच में मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं मेरे पास आज की सुबह, बहुत ही तगड़े वाले और सही जवाब मेरे पास पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे को मैसेज किए हैं राइट वाले, लेकिन अभी तक ना आप वो वाला आंसर नहीं पकड़ पा रहे हो कि हमको लेके तो ये इंग्लिश में जाता है लेकिन वापस हिंदी में लेकर आता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है। मेरे पास देखिए तनिषा का यहाँ पे मैसेज आया है, इन्होंने मेरे को राइट आंसर दिया कि आनंद जी हमारे देश का सबसे छोटा राज्य ये है। थैंक यू तनिषा। इसके अलावा मेरे पास मयंक का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास प्रगति भी जुड़ चुकी है आज की सुबह। एक मेरे पास और व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय कैसे हालचाल है, फेस्टिव सीजन है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे आसपास फेस्टिविटी होती है तो बहुत मजा आता है। आई टोटली एग्री, बहुत अच्छा लगता है, सब चीजें बहुत हैपनिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा है

है वहां पर जाके, सच में बड़ा सुकून मिलता है यार। और ऐसी जगह पर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। और ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और उन्हीं में से एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, ये मनु का। हाय आनंद, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन यार। इन्होंने लिखा है कि आपके गाने सुन के बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत ही अच्छी लिस्ट लेकर आते हो। मैं काशीपुर के लिए निकल रहा हूं और आपको अभी ऑन द वे सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलो अभी काम की बातें तो होती रहेंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं नारियल पानी वगैरह के, तो उससे जुड़ी एक बहुत ही अच्छी बात अभी हेल्थ टिप्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ये बहुत ही कड़क अपडेट है और इसको आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़े काम की हो जाती हैं, और अक्सर हम उन्हीं को छोड़ देते हैं ना, तो ये नहीं करना है आपने। छोटी छोटी चीज़ों को ही आपने जो है साथ में लेकर चलना है। फेसबुक अकाउंट हो गया है हैक, तो इन आसान स्टेप से आप रिकवर कर सकते हैं। आजकल जो है बहुत ईजी हो गई हैं चीज़ें यार, मतलब कि कोई भी किसी का अकाउंट कैसे भी हैक कर लेता है, किसी का अकाउंट गिरा देता है, बहुत सी चीजें चलती है ना आजकल सोशल मीडिया पर। आपने इतनी मेहनत से उसको बनाया है तो कैसे आप ऐसे जाने दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे अभी। आपको बताते हैं अपने यूपी में पूजा हवन और दीप जलाने के लिए बनाए जाने वाले जो घी है उसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है कि भैया आप उन्हें पूजा के घी के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा। जैसे होता है ना पूजा वाला घी अक्सर आप सुनते हैं, तो इन पैकेट पर अब घी शब्द लिखने पर रोक लगा दी गई है। हाँ जी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशनी जैकब जी के निर्देश के अनुसार बताया गया कि भैया जो भी घी के डब्बे अब आप देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश में, उस पर ये नहीं लिखा होगा पूजा का घी, ये वाला घी, तो इसको बैन किया जा रहा है, और मतलब कर ही दिया ऑलमोस्ट। तो अच्छी चीज है ये, मुझे लगता है कि हर इंसान ने इस चीज को देखकर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। दरअसल इन उत्पादों का रंग और इनकी जो मतलब फ्रेग्रेंस है उससे पता नहीं चलता कि असली और नकली में क्या फ़र्क होता है, और लोग इसे खा भी लेते हैं इसी भ्रम में। एंड अभी ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। कई बार क्या होता है ना पूजा के नाम पे हम आजकल लोग इतने स्पिरिचुअल यार चले जाते हैं कि चलो ठीक है पूजा के नाम का है तो तुरंत ले लिया। तो भैया अब आपको बता दें यूपी में पूजा की घी पर थोड़ी सी जो है अब गाइडलाइन नई आ गई है, तो अब आपको ऐसे वाला घी नहीं दिखाई देगा, ये वाला ब्रांड पूजा का घी, वो वाला ब्रांड शुद्ध पूजा का घी, इसमें चेंज हो गया है। 9:40 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप आनंद के साथ बने हुए हैं। चलो एक काम करते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, एक अच्छा सा गाना और इस गाने के बाद वापस आते हैं। आप बस ऐसे ट्यून इन रहिए हमारे साथ।

0: इशाक कामिल ने लिखा है, बहुत ही प्यारा ट्रैक, साथ में एंजॉय करते हैं।
1: जाले तेरे तू अगर मेरी, दिल हवाले तेरे तू अगर मेरी।
0: एक चीज और मैं आपसे अगेन रिपीट कर रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इट्स नॉट माय करेक्ट क्वेश्चन, वो तो आएगा ही थोड़ी देर में, बट अभी मैं आपसे पूछ रहा था आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंग्लिश में लेके जाती है हिंदी में वापस लेकर आती है। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज कि भाई आप मुझे बताओ जरा अपने भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, टेलस। कितनी आपकी नॉलेज चेक कर रहा था मैं, कितनी ज्यादा आपको नॉलेज है अपने आसपास की चीजों की भी, तो बता सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप करके 9837896896 पर।

9:45 हो गए भाई, ये भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि वक्त के साथ जो चलते हैं ना उनकी जीत जिंदगी में भाई हमेशा होती है। मैं तो आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भैया लाइफ में जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त के साथ भी चलो यार, क्योंकि जो वक्त के साथ चलते हैं ना वो जिंदगी में अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: क्या बात है जी, बिल्कुल, ये छोटे छोटे एड ब्रेक, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमारी स्पेशल कॉन्वर्सेशन चल रही थी कांता भाई से, और उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग गाने जो है स्टूडियो में आके कल गाए, क्या माहौल बनाया है, मतलब मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी एक और स्पेशल कांता भाई की वॉइस में ही जो है सुनाता हूँ आपको, बढ़िया सा, और कल इनसे बहुत अच्छी मैंने कॉन्वर्सेशन करी।
6: अगेन ये बहुत प्यारा भजन आप सभी के लिए।
5: मेरी पूरी मुरादाबाद की जनता सुन रही है आपको इस वक्त लाइव, एंड हो सकता है कुछ लोग आपको जानते भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्लीज कांता भाई।

0: क्या बात है, बहुत ही वंडरफुल माहौल बना दिया यार. मेरे को लग रहा है कि मैं कैसे कब जाऊंगा, ये कब होगा, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इनका. गाइस ये मेरे में नहीं, आप में भी बढ़ रही होगी, है ना. सो चलो इन शॉर्ट जल्दी से बात कर लेते हैं. उनका अभी एक जैमिंग शो भी होने वाला है आज ही शाम को, तो वो बहुत जल्दी में है. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया, आप आए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने निकाला. आई नो
1: यू. सच में यार बहुत ही वंडरफुल था ये कॉन्वर्सेशन. अभी एक और इन्होंने बहुत ही अच्छा सूफी ट्रैक मैंने इनसे सुना है, थोड़ी देर में आप तक पहुंचाऊंगा. लेकिन इससे पहले नीति मोहन की आवाज, अनु मलिक का म्यूजिक. 9:50 स्टेशन क्लॉक में होंगे. पिया घर आया 2.0. ओ माय गॉड. आने वाला गाना आज ही देर में इसको आप सुनेंगे. और अभी आगे बढ़ते हैं, आपको शो कैसा लग रहा है फटाफट मैसेज करके बताओ यार. 9837896896 पे व्हाट्सएप कर सकते हो. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हो यार 9837896896 पे कैसा लग रहा है आपको शो, क्या अच्छा लग रहा है ये आप मुझे बताओ कि मैसेज करके. मेरे को थोड़ी पता चलेगा, है ना. तो आप मुझे अच्छा सा फीडबैक शेयर करो ताकि मुझे और मजा आ जाए आगे ऐसी काम करने में. यार आने वाला गाना नाच मेरी रानी.

0: पिया घर आया 2.0, नीवी मोहन की आवाज, अनु मलिक का म्यूजिक, एक ब्यूटीफुल गाना सुनते हुए आगे बढ़ चुके हैं मैं और आप। ये ट्यूसडे की सुबह है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है आप जहां भी पहुंचने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। या आप अभी निकले हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑल द वे बेस्ट। यार मेरी तरफ से तो ढेरों बधाइयां आज के दिन की, नवरात्रि का तीसरा दिन, जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं जी। भैया शहरवासियों के लिए नहीं, शहरवासियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है यार। अपने मुरादाबाद सिटी के लोगों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जल्दी खोला जाएगा आपका फेवरेट हर्बल पार्क। हाँ जी, अगर आप सोच रहे थे यार हर्बल पार्क कब खुलेगा, तो आपको बता दें इको हर्बल पार्क और अंबेडकर पार्क को फिर से खोलने के लिए जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही पार्कों के संचालन के लिए ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, और बाकी यहां पर जो है एक बार फिर से आप जा सकेंगे एंड इसको दोबारा खोलने की जो है तैयारी की जा रही है। तो बस थोड़ा सा इन पार्कों में जो है रख रखाव और बाकी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा एंड एक बार फिर से जो है आप यहाँ पर जा सकेंगे, और ये जो पार्क है बहुत ही बढ़िया। लेकिन यार आप किसी भी पार्क में जाओ एक बात का ध्यान रखो, ये पार्क जो है सिर्फ जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उनका काम नहीं होता है, हमारा भी काम होता है कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, चीज़ों को सही सलामत रखें ताकि वो चीज़ें देखिए हमारे लिए। हम जब भी कभी किसी भी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल हमें रखना चाहिए ना। फिलहाल के लिए अच्छा से गाना भी आपने एंजॉय किया। एक और बात आपको फटाफट से बता देता हूँ, देखिए भाई साहब आज बिजनौर नूरपुर बाईपास पर मरम्मत के चलते डायवर्जन जो है वो लागू रहेगा। हरिद्वार हाईवे पर आज रात 8 बजे तक भारी वाहन पूरी तरीके से बैन है। एग्जैक्टली तो आपको बता दें भैया, मुरादाबाद से बिजनौर होते हुए मेरठ मुजफ्फरनगर हरिद्वार जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों को दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे से अमरोहा गजरौला हापुड़ होते हुए जाएंगे और उसी रास्ते से वापस भी आएंगे। आपको बता दें पागवाड़ा क्षेत्र के जो TMU कट और ये कैलसा मोड़ है वहाँ बिजनौर जाने वाले जितने भी भारी वाहन हैं वो इधर से नहीं जा सकेंगे, बिकॉज वहाँ पर मरम्मत चल रही है, वहाँ पे मतलब काम चल रहा है। अच्छी बात है ना, जब काम सही हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से ट्रैवल कर सकेंगे दोस्तों, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। आज 13 अक्टूबर मंगलवार को रात 8 बजे तक भारी वाहन जो है वहाँ पर नहीं है, डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। तो SP ट्रैफिक साहब ने बता दिया है, मैंने आपको बता दिया, तो अगर आपका प्लान था इस रूट से गुजरने का फिर लौट कर आते कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रेडियो सुना करो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए होती हैं। अभी बात कर लेते हैं अपने उस राइट आंसर की जो मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे 2 सवाल किए थे लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो इंग्लिश में जाती है और हिंदी में आती है, राइट? और दूसरी, हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत से लोगों ने आंसर्स किए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले शिखा मैम ने आंसर्स किया था मुझे, यहाँ पे दोनों मैसेज के इन्होंने राइट आंसर दिए, कांग्रेचुलेशन। एंड साथ में प्रणीत, इन 2 लोगों ने मेरे को राइट आंसर दिए, कांग्रेचुलेशन। आप दोनों को मिलता है पूजा शाला की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया तोहफा यार, बधाइयां जी, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। एक छोटा सा गाना भी चला दो भाई, क्या बात है, बोथ ऑफ यू। चलिए गाइज, आप भी जीत सकते हैं। एक और मेरे पास बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जो आप जीत के जा सकते हैं और अपनी शाम को और भी हैपनिंग बना सकते हैं। 10 बज चुके हैं सुबह के हमारे स्टेशन क्लॉक में। अगर आप जीतना चाहते हैं तो बस मैं अभी यूं गया और यूं लौट कर आया, मतलब ऐसे जाऊंगा वैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा ये आपको यहाँ नहीं पता लगेगा। फिलहाल अभी एक छोटा सा एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, पहुँचते रहिए ऐसे ही, और बाकी ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ। बहुत कुछ है अभी जीतने के लिए, अभी तो सिलसिला जारी रहेगा यार। फिलहाल अभी आता हूँ।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा, इसका आंसर अगर आप करेंगे तो आप जीतेंगे एक बहुत ही अच्छा पास है मेरे पास डांडिया नाइट का। देखिए नवरात्रि चल रहे हैं, अब ऐसे में आपको डांडिया में ऐसा हम लेकर ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: भाई आपून के पास ना सारे के सारी चीजें अवेलेबल है यार।
4: क्वेश्चन।
0: आज बॉलीवुड की अभिनेत्री पूजा जी का जन्म होता है, बहुत ही कमाल की सेलिब्रिटी हैं, इनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अभी रिसेंटली वरुण की मूवी आई थी ना, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, मैंने मूवी देखी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी हम अपन बात करेंगे आज के क्वेश्चन पे, है ना। फटाफट से, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना भी है, बहुत सारे और भी काम है भाई, बहुत ज्यादा पूरा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आइडेंटिफाई करना है गाना कौन सा है आपने मेरे को बताना है। अगर आपको मेरा ये गाना पकड़ में आ जाए तो फिर आप मुझे मैसेज करेंगे 9837896896 पे, ठीक है। जो उठाएंगे अपना फोन, टाइप करेंगे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर। छोटा सा काम करना है, इमीडिएटली आपको इस गाने को पहचानना है कौन सा गाना है।

0: मैसेज करना है आपने, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड करना है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। कौन सा गाना है चलिए जी फटाफट से पहुंचाइए अपने सही जवाब, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर जल्दी से व्हाट्सएप करो। जीतेंगे आप हैपनिंग डांडिया नाइट की पासेस। अगर आपको जीतने हैं तो मुझे जल्दी से मैसेज करो। लास्ट में जाते जाते कांता भाई ने आपको क्या सुनाया, चलिए कांता भाई से सुन लेते हैं। भैया जरा कुछ सुना दो यार। तो ये क्या सुना रहे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज व्हाट्सएप करिएगा। और बड़ा कमाल का गाते हैं हमारे भाई जी, तो बिना किसी देरी के चलिए सुनते हैं।
1: हो गई मैं मतवारी।
0: एक तो गिटार बहुत अच्छी बजा रहे हैं आयुष जी आप।
1: बल बल जाऊं
0: हाय हाय हाय
1: अपने पिया को, ए मैं जाऊं वारी वारी।
0: अच्छा लगे तो मैसेज कर दे।
1: मोहे सुद

0: अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग। इतने अच्छे अच्छे कलाकार मुरादाबाद में छुप छुप के बैठे हैं, मुझे तो बड़ी मतलब जो है ऐसे मेरे को लग रहा है कि क्यों सामने नहीं आ रहे अभी तक। इतने अच्छे टैलेंटेड, आप इतने टैलेंटेड हो कांता भाई, क्यों नहीं आपने सोचा कि थोड़ा?
1: यार मुझे ऐसे लगता है कि कांता जी को तो डेफिनेटली गाना चाहिए, बट अगर आप आज इनको लाइव सुनना चाहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को लाइव एंजॉय करना चाहते हैं, तो आज एक बहुत ही सुंदर भजन जामिंग होने वाली है। ये हो रही है बुद्धि बिहार के गांधी मैदान में। अगर अभी तक आप वहां पर जाने का प्लान नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप सारी डिटेल्स को जो है कनेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, एंड मेरा इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद के नाम से। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जैमिंग शो होने वाला है। अगर आप आ रहे हो तो मैं भी आपको वहीं मिल जाऊंगा स्टेज पे एंकरिंग करते हुए। फिलहाल के लिए ब्यूटीफुल ट्रैक ओरिजिनल गाने सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में। थैंक यू कांति जी, थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वंडरफुल टॉकिंग टू यू यार, मजा आ गया। फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय करो, लौट कर आ रहा हूँ राइट लकी कॉलर के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: चलिए गाइस, मेरा जाने का समय हो गया है। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में 10:10 हो रहे हैं। मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप इस गाने को आइडेंटिफाई करो। इस गाने में भाईजान है, कैटरीना कैफ है, स्टारिंग बहुत ही अच्छी, स्टारिंग बाय सलमान एंड कैटरीना। बहुत ही प्यारी फिल्म थी इनकी, बहुत ही प्यारा गाना है ये। लास्ट मौका है, अगर आप बता सकते हो तो वेरी गुड। ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं लेकिन मैं आपके आंसर का ही वेट कर रहा हूँ यार। व्हाट्सएप करो कौन सा गाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, एनर्जेटिक गाना है, सुखविंदर सिंह ने गाया है। मैसेज करिएगा आप मुझे अगर आपको समझ में आ गया है ये कौन सा गाना है, तो बस उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। चलो जी, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा पाजी। अगर आपको समझ में आया है ये कौन सा गाना है तो इमीडिएटली मेरे को व्हाट्सएप करने का यार, 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर है, जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। जितनी जल्दी व्हाट्सएप कर दो कि उतना एडवांटेज ये है इस बात का भैया कि आप जो है इतनी जल्दी हमारे शो के विनर बन जाओगे ना भाई। तो मैसेज करो 9837896896 पे। वेटिंग है आप उनके जवाबों का यार, मतलब आप उनको आपके जवाब का इंतजार है।

चलिए भैया पार्टी करते रहिए, मैं यहाँ से लेता हूँ जाने की इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मैंने जो गाना पूछा था उसका सही जवाब मेरे पास पहुंच चुका है। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग जुड़े मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आज ट्यूजडे की सुबह थी, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक बार तालियां आपके लिए। चलो, और इस बात का मेरे पास सबसे पहले सही जवाब किसका आया था, मैंने आपसे पूछा था कौन सा गाना है। Absolutely, this is right answer, Banjara. ये बहुत ही अच्छा गाना from the film एक था टाइगर। आप लोगों को समझ में नहीं आया था यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था आज की सुबह। मेरे को रोहन जी ने इसका आंसर किया है। रोहन भाई थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपने मेरे को राइट मैसेज किया राइट आंसर के साथ, तो कांग्रेचुलेशन मैं आपको देता हूँ एक बढ़िया डांडिया नाइट के पासेस। एक बार आपके लिए गाना हो जाए, वेरी नाइस। तो देखो ये मेरे साथ डांडिया नाइट एंजॉय करने आने वाले हैं, इनको पूरी डिटेल्स के लिए जल्दी कॉल आएगा हमारे एफएम की ओर से। बाकी गाइस आप लोग भी ऐसे सुनते रहा करो, कुछ ना कुछ स्पेशल आपके लिए आता रहता है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कौन नाम बताओ मुझे। अरे भैया मैं नहीं जान रहा। चलो फिलहाल मैं लेता हूँ अब आपसे जाने की इजाजत। इन शॉर्ट आपके नाम पढ़ लेता हूँ। दर्पण भाई मेरे साथ जुड़े हुए थे आज की सुबह। दर्पण भैया थैंक यू सो मच, राइट आंसर आपने भी किया था मेरे को। एंड गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारे पास। अख्तर सेफी जी का बिजनौर से मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग अलका वर्मा जी। एंड हमारे साथ मैसेज पे कौन जुड़े थे, हाई गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपकी वॉइस से एक अलग ही लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ हरिओम महेश्वरी जुड़े हैं आज की मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है, मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं, गुड मॉर्निंग। दुर्गेश भाई कल्याणपुर से सही जवाब पहुँचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर सुजीत भाई, थैंक यू सो मच सुजीत भंडारी जी। जय माता आनंद, जय माता दी आनंद भाई, क्या हालचाल है, तीसरे नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं जी। नवरात्रि चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है माँ का, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। ये मुंबई महाराष्ट्र से मैसेज आ रहे मेरे पास बबलू जी का, साथ में गीता अंजान लक्ष्मी कश्यप ये हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेर शाही गली जी प्रोग्राम में पहुंचे हैं, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाई माई नेम इज हर्षित, हाई हर्षित गुड मॉर्निंग। रिहाना जुड़ चुकी है मेरे साथ आज की सुबह हमारे साथ स्टूडियो में, जो है बहुत ही अच्छी वाइब आती है जब आपके मैसेज में पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है आनंद भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निकुंज रस्तोगी, साथ में इनकी वाइफ आयुषी भी कनेक्ट हो गई आज की मॉर्निंग हमारे शो में, आप दोनों को थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है, गुड वाली मॉर्निंग। विक्की सागर लिखते हैं, रेडियो वाले आनंद आपका जो गिटार पे गाना गाया बहुत ही अच्छा लगा और आवाज में मतलब मजा आ गया भाई की, थैंक यू सो मच यार। ऐसे लोकल टैलेंट आपको यही मिलता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इसीलिए कहते हैं बस ट्यून इन रहा करो, कभी भी कुछ भी आ सकता है आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीजें सिर्फ आपको यही जानने को मिलती है। ठीक है जी, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, कल लौट कर आएंगे तो कुछ और खास बातें करेंगे, अभी जाने का समय हो गया, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल। अफरोज जी मेरे साथ जुड़ी थी टेक्स्ट मैसेज के जरिए, गुड मॉर्निंग सर आपके एक सवाल का जवाब है गोवा, बट इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी, कोई बात नहीं। चलिए गाइज कल होगी मेरी आपकी मुलाकात, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। 10:17 हो रहे हैं भाई, मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, टिल देन टुमारो मॉर्निंग होगी आपसे और भी बात, आप अपना रखिए ख्याल और लाइफ में भाई कोई एक ऐसा काम जरूर करो जिसे करने के बाद आपको सच में बहुत ही अच्छा और बढ़िया फील हो, है ना। जिंदगी में देखिए होता क्या है ना, हम भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा ना पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए अच्छी चीज़ों को ज़रा साथ लेके चलिए, बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से अच्छा देने का प्रयास कीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बढ़िया सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। चलो जी बाय, कल मिलते हैं।

You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. Say what?

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम शुरू हो चुका है, शो शुरू हो चुका है। जी हाँ, मॉर्निंग मसाला, और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:24 और 13 अक्टूबर की तारीख है। दिन बहुत ही खूबसूरत है, मंगलवार का ट्यूसडे मॉर्निंग है और बाहर खिलखिलाती धूप, बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, किस सुबह को और खूबसूरत बनाएगा, खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए, अपने खूबसूरत संदेश पहुँचाइएगा आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत खूबसूरत डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं आज। और अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, ट्यूसडे मॉर्निंग है और एक ब्यूटीफुल थॉट जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि अच्छा ही लौट कर आएगा एवरीवन। देखिए, जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है, तो क्यों ना आज इस ट्यूसडे मॉर्निंग की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ की जाए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे शब्दों में और हमारे शब्द ही हमारे व्यवहार में नजर आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज किसी के लिए अच्छा सोचिए, किसी की मदद जरूर कीजिए और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जरूर रखिएगा। क्या पता दोस्तों, आपकी छोटी सी अच्छाई किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना दे। इस ट्यूसडे मॉर्निंग में खुशी करती है आपसे बहुत सारी बातें करेगी और अपने शो की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
8: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हाल चाल है आपके? ओहो हो, सब बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही मस्त रहिए, बिंदास रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, शो का नाम तो आपको मालूम ही है ना? अच्छा चलो, जो अभी न्यू लिसनर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनको बता देते हैं, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी। देखिए एवरीवन, एक बहुत ही खूबसूरत अपडेट है जो अपने मुरादाबाद सिटी से है और अपने मुरादाबाद वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी परिवार के साथ पार्क में घूमना और सुकून के पल बिताने का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दरअसल शहर के हर्बल पार्क और अम्बेडकर पार्क को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। एमडीए की ओर से पार्क के संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है एंड हालांकि पार्क कब खुलेगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मुरादाबाद वालों से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन पार्कों में फिर से रौनक लौटेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, जब ये पार्क खुल जाएंगे ना तो प्लीज साफ सफाई का भी ख्याल रखिएगा। एक्चुअली कुछ भी अगर आप खाने पीने की चीजें लेकर जा रहे हैं तो उसको खाइए पिए, देखिए इंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ कचरे को डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि साफ सफाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी होती है। और आज बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सरल भाषा दिवस की। कहते हैं ना, आपकी बातों में कितना ज्ञान है ये जरूरी है, लेकिन आपकी बात कितनी आसानी से समझ आती है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कम्युनिकेशन यानी संवाद तभी बेहतर होता है जब हमारी बातें सामने वाले को आसानी से समझ आए। फिर चाहे आप ऑफिस में हो, घर पर हो या किसी मीटिंग में, अपनी बात को सिंपल और केयरली रखिए, क्योंकि मुश्किल शब्द जो होते हैं ना वो आपको इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं, लेकिन सरल शब्द आपको लोगों के दिलों के करीब लेके आते हैं।

बस यू नो डी की हम शुभकामनाएं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरल भाषा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम अपने जो दोस्तों के संदेश आए हैं ना उनको भी शामिल कर लेते हैं। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए श्रोताओं आपने क्या क्या पहुंचा है आज की सुबह, जरा हम भी तो एक नज़र डालें। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुँचाते हैं, ये मैसेज हमें पहुंचा है यहाँ पर अच्छा नीपा नगर एमपी से हमारे पास

तैयार करके दिया है ना, उसको डेकोरेट करके जो भेजा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो रेडियो आपने भेजा है ना, सच में ये तो दिल जीत लिया है इस रेडियो ने हमारा। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हाय खुशी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। राबिया सैफी का मैसेज हमारे पास आया है आज की सुबह, और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं फ्रॉम द मूवी विवाह, मिलन अभी आधा अधूरा है। साथ में नजमा है, अफरोज है, अफरोज फातिमा, लाइबा, अंजुकैया भी हैं और खुशी दी आप भी। ओके, थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए डियर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये भी गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एवरीवन, आप भी मुझे अपने खूबसूरत संदेश यहाँ पर पहुँचाएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अभी लौट कर आती हूँ तो बहुत सारी अपडेट हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, एंड बहुत ज़रूरी अपडेट है जो आप तक पहुँचानी है। और मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। अपने सिटी में, अपने इंडिया में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल जाए तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है ना। तो चलिए आप एंजॉय कीजिएगा कुछ खूबसूरत गाने, उसके बाद खुशी लौट कर आती है, करेगी बहुत सारी बातें। आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए और इन प्यारे प्यारे गानों का आनंद लीजिएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त खुशी आपके साथ है और मैंने आपसे कहा था कि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। फिर देर किस बात की है, जो मोबाइल आप चला रहे हैं इसी मोबाइल से आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों, कुछ आवाजें ना ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचती हैं। ऐसी ही एक जादुई आवाज के मालिक थे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी, जिन्होंने अपनी कव्वाली और सूफियाना संगीत से दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। 13 अक्टूबर को उनकी जयंती के अवसर पर हम उनको याद करते हैं, संगीत की इस महान हस्ती को जिनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। साथियों, उनका जन्म 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद पाकिस्तान में एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता फतेह अली खान जी और चाचा मुबारक अली खान जी ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। पिता के निधन के बाद उन्होंने कव्वाली की पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाया और 1971 में परिवार की कव्वाली पार्टी की कमान संभाली। उनकी पहचान सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही, उन्होंने पारंपरिक कव्वाली को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया और पश्चिम संगीतकारों के साथ भी काम किया। 16 अगस्त 1957 को महज 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।

खूबसूरत गीत भी हैं जो मैंने यहाँ पर चुने हैं। लेकिन दोस्तों उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों उनके मशहूर गीतों में आफरी आफरी, दम मस्त कलिंदर और दमा दम मस्त कलिंदर और मेरे रश्के कमर जैसे नाम भी शामिल हैं। तो श्रोताओं, इन महान फनकार को याद करते हुए सुनते हैं उनका एक खूबसूरत सा गीत। जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ और आपके जो संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जय माता दी खुशी जी, आपको भी जय माता दी। नवरात्रि का आज शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा नवरात्रा है, माँ चंद्रघंटा का आज खूबसूरत सा दिन है और हम भी आप सभी को जय माता दी कहते हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आज ही खुशी की ओर से, आप सभी की झोलियाँ माता रानी खुशियों से भरें एंड आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो भी आप चाहते हैं आपकी माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, कहते हैं माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, थैंक यू सो मच। और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। अरे वाह क्या बात है, सुनवाएंगे ये खूबसूरत सा गीत आपको। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नवरात्रि की पावन, ये कहते हैं कि तीसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी परिवार को भी। दुर्गेश सैनी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रतीक्षा जी का, ये मैसेज हमें लाइन पार से पहुंचाती है आज की सुबह, गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक खूबसूरत सी गाने की रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर भेजी थी विकी सागर जी ने, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये खूबसूरत सा गाना सुनना चाहते हैं तो चलिए इनकी रिक्वेस्ट भी हम पूरी करते हैं, उसके बाद हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए और आप कहना चाहेंगे गुनगुनाते रहिए। हाँ जी देखो, प्यारे प्यारे गीत संगीत का आप आनंद ले रहे हैं ना, बस ऐसे ही खुश रहा करूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच में आप सब बहुत ही प्यारे हैं। ये ट्रैक अभी आपने सुना नुसरत फतेह अली खान जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया। और दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी मुरादाबाद सिटी की। एंड देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में आपको भी मालूम ही है कि सभी भक्त श्रद्धालु मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दोस्तों आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा सुशोभित है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है।

दोस्तों, इस शुभ दिन पर माँ से प्रार्थना करें कि हर घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ आए और हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिले। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और दोस्तों, बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद शहर में जो रौनक मिल रही है ना मंदिरों में देखने के लिए, ओ हो हो, मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। बताती हूँ मैं आपको। देखिए, शरदी नवरात्रि के शुरुआत के साथ ही माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लालबाग स्थित काली माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त माता रानी को नारियल फूल और चुनरी अर्पित कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में सेल्फी पॉइंट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो मुरादाबाद बालू नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता रानी की भक्ति और आस्था से पूरे शहर भक्तिमय नजर आ रहा है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं वंस की। तो चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद हम लौट कर आते हैं। आप कहीं मचाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एंड खुशी आपसे कहती है कि दिल से मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी जो है ना, वो पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। क्या करना है आपको? मुस्कुराने में कंजूसी नहीं करनी है। हाँ जी, वेरी गुड। चलो अभी सुनो कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, बातचीत करूंगी आपसे। लेकिन हाँ, अभी नहीं जा रही हूँ, रुको। मैं आपके संदेशों को भी पढ़ लेती हूँ। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो इनको पढ़े बिना हम नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी का। हेलो मैम, प्यार वाली गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ओके, ये ट्रैक सुनना चाहती है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। बहुत प्यारा सा है, ये ट्रैक सुनवाएंगी आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी मैम, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। अनुज कश्यप जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। ये मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी जी, जय माता दी, जय माता दी आपको भी, कैसी हैं आप? एक माता रानी का आप प्यारा सा भजन सुनवा दीजिएगा। डॉली हमें मैसेज करती हैं गांगन मुरादाबाद से। बिल्कुल डॉली, सुनवाएंगी हम आपको। अब इतनी सारी बातें हमने माता रानी जी के बारे में की है, तो एक ट्रैक तो बनता है आज की सुबह। और श्रोताओं, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय माता दी।

0: अब आपको हर साल मैं यहाँ पर लेकर आया करूँगा।
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। जी हाँ, क्योंकि मौसम का हाल भी जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो एवरीवन, मौसम को लेकर एक जरूरी अपडेट। दिल्ली एनसीआर और कुछ अन्य इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावनाएं जताई गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 13 अक्टूबर को पूर्वमान के मुताबिक दिल्ली में आज गरज चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जताई गई है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए आज कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। दोस्तों, मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। एंड IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक आज दिल्ली NCR, UP, बिहार और वहीं पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइड की चेतावनी जताई गई है। तो आप भी बस सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मौसम से अपडेटेड रहिए, बहुत जरूरी है। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो वेदर अपडेट थी एंड अब आपके जो संदेश आए उनको भी शामिल कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ आज की सुबह, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश जो यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का। और अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं तो ठीक हूँ। ये नाम इन्होंने लिखा है अपना, नफीस जी का मैसेज हमारे पास हरथला से आया है। और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको प्ले करने का सर। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, खुशी जी जय श्री राम, जय श्री राम आपको भी। गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग जानकारी आप लेकर आती हैं, उसके लिए शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। बिल्कुल, इस ट्रैक को भी हम सुनवाएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और इन्होंने एक थॉट भी हमारे साथ शेयर किया है आज की सुबह, कि मर्यादा लांघकर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, प्रशंसा तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। अरे वाह, क्या बात है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इनको भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है, शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है, जय माता दी, खुशी जी आपको भी जय माता दी, दुआ करते हैं आप अच्छी ही होंगी, आपकी आवाज़ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी लगती है हमें। खुशी जी, मेरी गुड़िया की पसंद पे एक सॉन्ग हमें सुनवा दीजिएगा, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, हमें माता रानी के दरबार ले चलो। अरे वाह, मंजू मिश्रा जी का मैसेज आया है सूर्यनगर से। और साथ में इन्होंने लिखा है, माता रानी आपके पूरे परिवार को खुश रखें, खुशियां दें, सेम टू यू मैम। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अनम हरथला से मैसेज हमें पहुंचाती है आज की सुबह। और ये ट्रैक सुनना चाहती है, थोड़ी थोड़ी कथे से उसकी आंखें हैं, अमेजिंग ट्रैक। तो चलिए विवन, सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद खुशी लौट कर आती है। एंड बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं जो आप तक पहुँचानी है और आपसे एक सवाल भी करना है, तो सवाल हम पूछेंगे लेकिन इस खूबसूरत गीत की उस पर।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये शानदार सा ट्रैक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज किशोर दास जी की जो सभी के दिलों पर राज करती है। और मैंने आपसे आज की सुबह बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आज किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है और मैंने आपसे मालूम किया है कि आप मुझे बताएगा किशोर कुमार जी का फुल रियल नेम क्या है। अपने नाम के साथ सही जवाब हमें पहुंचाएगा आज की सुबह। और वक्त मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 11:44 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। और दोस्तों नवरात्रि का पर्व हमें नारी शक्ति और साहस का संदेश देता है। महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन से एक ऐसी ही प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे एक बुजुर्ग दिव्यांग यात्री की जान बचाई। उनकी बहादुरी और तत्परता इस ने इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। सच ही है दोस्तों, वर्दी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा का संकल्प भी है। ऐसी बहादुरी महिला जवान को हमारा सलाम, हम उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और नेक्स्ट अपडेट हमारी है दोस्तों, देखिए हरिद्वार में कुंभ का मेला 2027 की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की आधिकारिक वेबसाइट और थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मेले से जुड़ी जरूरी जानकारियां डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना और कुंभ की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाना है। यानी आने वाले कुंभ की तैयारियों में डिजिटल सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अब एक अच्छी खबर अपने मुरादाबाद से। यहाँ स्थित अटल आवासीय विद्यालय में मौजूद मजदूरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य बनाने का अवसर मिल रहा है। इस विद्यालय में बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई से जुड़ी जो जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आर्थिक परेशानियां उनकी तरक्की में रुकावट ना बने। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईपीएस एंड कोई अधिकारी बनना चाहता है और कोई बनना चाहता है आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रहा है। वाकई जब शिक्षा का साथ मिलता है ना तो सपनों को नई उड़ान मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लगातार संदेश भी आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमारे पास नमन जी का आया है, साथ में अमित यादव जी हैं और नीरांशी यादव हैं। शंकरलाल यादव जी गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे पास बहुत सारे सही जवाब आ गए हैं तो हम सभी को शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और खूबसूरत गीत जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गीत से पहले कुछ एड ब्रेक भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए एड ब्रेक के बाद हम सुनवाएंगे आपको एक शानदार सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

क्या बात है दोस्तों, जब इतने खूबसूरत गाने सुनते हैं ना तो दिल को चैन आ ही जाता है ना। और देखिए अभी आपने सुनाई शानदार सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज में, और हमने भी फैसला कर लिया है कि अब हम बनाते हैं अपने शो के लकी सुपर स्टार। कौन बनते हैं आज के विनर? हमने आज की मॉर्निंग आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा था। हमने आपसे मालूम किया था दोस्तों कि आप मुझे बताएं किशोर कुमार जी का फुल रियल नेम क्या है, और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें सही जवाब पहुँचाया है आज की सुबह हमारे शो के कौन बनते हैं लकी लिस्नर, उनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे आज के शो के लकी सुपरस्टार बनते हैं, लकी विनर बनते हैं, कौन है वो उनका नाम हम बता देते हैं आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है एवरीवन। और आज के हमारे शो के विनर बनते हैं डॉक्टर अरोड़ा जी एंड चंदन नगर मुरादाबाद से, आपके लिए जोरदार तालियां।

बिल्कुल, आज के हमारे शो के लकी विनर बनते हैं डॉक्टर अरोड़ा जी। और सनी दिया है सबसे पहले सही जवाब, राइट आंसर है आभास कुमार गांगुली जी। किशोर कुमार जी का ये रियल फुल नेम है। जी हाँ, हम जिनको प्यार से किशोर दाजी कहते हैं उनका फुल नेम है आभास कुमार गांगुली जी। और सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाते हैं सर, आप बनते हैं आज के हमारे विनर और आपको मिलते हैं गरबा पासेस एंड आप भी डांडिया में जा सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपको हमारी टीम की ओर से कॉल आएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमारे पास पहुँचाए हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं, मैम किशोर कुमार जी का असली नाम है आभास कुमार एंड ये हमें मैसेज पहुँचाती हैं निशा जी जिला मुरादाबाद से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी कैसी हैं आप, मोहम्मद उस्मान जी फ्रॉम मुरादाबाद रामपुर दोराहा से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं एंड अनम जी ने हरथला से मैसेज पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर रितु यादव जी का, और रितु जी ने मैसेज हमें पहुंचाया है प्रकाश नगर गली नंबर 2 से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, राधे राधे अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी, ऋतिक हैं और राधित्य कसाना जी कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आभास कुमार गांगुली जी, ये किशोर दास जी का फुल नेम है और इन्होंने अपना सही जवाब हमें पहुंचा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। और हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, हेलो खुशी मैम, मेरा नाम भी खुशी है। ओ खुशी जी जय श्री राम, अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई कि खुशी ने भी खुशी को मैसेज किया है। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर नीलाक्षी का आया है और ये मैसेज अपना न्यू मुरादाबाद से पहुँचाती है और ये भी सही आंसर के साथ जुड़ी है आज की शो, आज की सुबह पार्टिसिपेट किया है मैम ने, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट कोई बात नहीं, आपको ये चांस कल भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपने भी शो को एंजॉय किया होगा और गाने ओ हो दिल को छू गए। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाती हूँ डॉक्टर ए के सिंह से, जो कि चंबल फर्टिलाइजर के

0: कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेज आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना वो लगवाना बहुत जरूरी है। बाय मैम।
0: बाय बाय।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: मानते भगवान की नहीं मानते अल्लाह को मानते।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूं आपका रेडियो वाला आनंद और आप सभी को कहता हूं एक बार फिर से नमस्कार। जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं आपको बता दें आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है खेती किसानी। और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है, हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही खूबसूरत एक ऐसे लेजेंड जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी उन्होंने तमाम सारी जानकारियां दी थी हमारे किसान भाइयों को, तो मैं एक बार उनके बारे में बता दूं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिट के सीनियर मैनेजर श्री एके सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे
3: आनंद
1: स्टूडियो
3: जी
1: में।
3: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे और या सुन रहे हैं उन सभी को मेरा चंबल फर्टिलाइजर की ओर से और मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार।
1: क्या बात है सर, आपकी आवाज सुनते ना मतलब ऐसे मुझे पुराने वाला अपना आकाशवाणी रेडियो याद आ जाता है, उसमें वो कृषि जगत कार्यक्रम आता था ना, तो उसमें जो हमारे जो उद्घोषक होते थे बिल्कुल आपकी तरह एकदम ठहराव के साथ सारी बातों को मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे ताकि हमारे किसान चीज समझ में आ सके। एक्चुअली
3: आराम से होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे और आज हम श्रोताओं ढेर सारी बातें आपसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और सर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो अनिल सर मैं सबसे पहले आपसे अपनी वार्ता के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का विषय बहुत खास रहने वाला है, भूमि स्वास्थ्य के सुधार के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। जी तो सर पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि भारत सरकार वे उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही योजना है इसके संबंध में आप जानकारी दीजिए जरा।
3: बिल्कुल आनंद जी, भारत सरकार और जो उर्वरक मंत्रालय हैं, अगर हम कहें तो भारत सरकार है उनके अंतर्गत सारे ही मंत्रालय आते हैं, उनकी जो है सारी ही जिम्मेदारी है।
1: हाँ जी।
3: और उसमें खेतीबाड़ी भी एक जो अहम स्थान रखती है।
1: जी जी।
3: और क्योंकि खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है तो उर्वरक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, सुझाव हैं, सलाह हैं, मार्गदर्शन है या सहायता है वो किसानों को अच्छे से मिलती रहे, ये भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहता है।
1: रहता है।
3: और जो इसी प्रयास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने भी उर्वरक आज के समय में हमें उपलब्ध हो रहे हैं अपनी दुकानों पर,
1: जी जी,
3: वो सब भारत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अब भारत सरकार सीधे तो नहीं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मांग जाती है।
1: हाँ जी।
3: हर एक सीजन की, जैसे कि हमारे यहाँ तीन सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद।
1: जी जी।
3: तो अभी क्योंकि रबी का सीजन आरम्भ होने वाला है तो हर क्षेत्र से राज्य सरकार इकट्ठा करती है कि भाई कौन कौन सी फसलें लगेंगी और उसमें जो उर्वरकों की आवश्यकता है वो कितनी होगी और किस किस समय पे होगी, तो भारत सरकार उसकी संज्ञान लेती है और जहाँ जहाँ पर उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर वो उसको एलोकेट करते हैं कि भाई आपने इस राज्य में अपनी फैक्ट्री से इतना उर्वरक इस समय पर इस स्थान पर भेजना है। अगर ऐसा लगता है भारत सरकार को कि जो मांग है हमारे जो सारे हिंदुस्तान की उसमें अगर कोई और आवश्यकता है तो हम बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। इम्पोर्ट मतलब अन्य जो उत्पादन के केंद्र है जो कि हमारे भारतवर्ष में नहीं है, जो कंट्री है उनमें है, वहाँ से लेकर आते हैं और समय पर जहाज आते हैं तो जहाँ हमारे पोर्ट है वहाँ पर वो उर्वरक उतरता है, उसकी पैकिंग होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, अब जितने भी उर्वरक आ रहे हैं उस पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता।
1: ओके।
3: आयतित जो कंपनी है उसका छोटा नाम होगा और जो है और जो उत्पादन है जहां उत्पादन हो रहा है उनका नाम होगा और सब जो चीजें होती हैं वो जो भारत सरकार के नाम से ही आती हैं। तो ये विशेष रूप से सभी किसान भाई ध्यान दें कि कोई ब्रांड नहीं है और उसके पीछे उद्देश्य भारत सरकार का ये रहा कि कोई खास ब्रांड को लेके अक्सर ऐसा होता, बोलते भाई ये तो फलाना ब्रांड है तो ये तो ऐसे ही बिकता है, वो चीज को उन्होंने खत्म किया कि क्योंकि सारे उर्वरक एक जैसे हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया अगर किसी भी कंपनी का आता है तो एक जैसा ही है, उसके अंदर उतने ही पोषक तत्व हैं, सभी के अंदर एक बराबर होते हैं। डीएपी आता है या कोई एनपीके आता है या अमोनियम सल्फेट आता है तो उसके अंदर जो आपके पोषक तत्व है चाहे वो ए कंपनी लाए या सी कंपनी लाए, पोषक तत्व उतने ही सभी में समान हो। तो ब्रांड के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें जो सुविधापूर्वक और समान जो रेट पर उपलब्ध होती रहे इसलिए भारत सरकार ने ये प्रबंध किया। अब एक और खास योजना है जिसे हम पीएम केयर्स के बोलते हैं।
1: जी जी।
3: पीएम केयर्स के में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जितनी भी खाद के जो विक्रय केंद्र यानी खाद की दुकानें हैं
1: जी जी,
3: उनको PMKSK का नाम दिया है। नाम दिया है इसके साथ साथ तो वहाँ पर वो जो दुकान है उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें PMKSK लिखा होता है, प्रधानमंत्री जी का फोटो भी होता है। और वो इसलिए अहम हो गया है अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हमारे किसानों को उपलब्ध होती है। जैसे खेती से संबंधित अगर उनको कोई सलाह चाहिए, जैसे कोई फसल उगानी है उसमें कौन सा बीज सबसे अच्छा है, कौन सा उर्वरक की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, कब कब उसका उपयोग करना है, इसके अलावा फसल में कोई अगर हरी बीमारी आ रही है, कीट आ रहे हैं या कोई रोग आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर वो आ गया है हमारी जो मतलब खेत पे या मतलब फसल के ऊपर तो उसको कैसे जो है एक तरह से उसका प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो, ये सलाह मिलती है। और इन सलाह देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि इनका साहित्य आपको मिल जाएगा। साहित्य मतलब जैसे लीफलेट होता है एक तरह से, कोई उसमें पूरी

0: जानकारी लिखी होती है कि ये चीज है, ये उत्पाद है, ये इस चीज में पड़ेगा, ये खरपतवार नाशी है, इसकी इतनी मात्रा डालिए, इतना पानी मिलाइए, इस समय पर डालिए, तो ये पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध होता है, जैसे कि रबी फसलों के बारे में जानकारी है, वो राज्य सरकार की ओर से भी हो सकता है, या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने आदान लेके आती हैं, उनके भी साहित्य होते हैं। तो ये एक तरह से स्थूल सलाह है, आप दुकान पर गए हैं और वो आपको उपलब्ध होगी, आपने वहां से ले भी ली और अपने साथ भी लेके आप आ सकते। इसके अलावा आज की तारीख में क्योंकि फोन का जो आपका समय है वो आप समय चल रहा है, इंटरनेट है, तो आप फोन के द्वारा भी ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारियां जो उपलब्ध हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और उनको देखकर आप समझें। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आदमी अपनी ओर से कुछ कह रहा है तो उसको ऐसे मान लें, उसको समझें जरूर, और अपने कुछ साथियों से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइटें जो कि भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, कंपनियों की, वहां पर जो भी सलाह आपको दी जाती है वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो, तो इस तरह से आपको सलाह मिलती है। दूसरा क्या है, संपर्क सलाह बोले अगर हम इसको, तो संपर्क सलाह में ये है जो कृषि के वैज्ञानिक वो आपसे संपर्क करेंगे या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के स्कूल हैं, जो एग्रीकल्चर का जो जो, जो जो आपकी राज्य सरकार है उनका जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सभी जो है एक तरह से जानकार लोग हैं जो कि खेती के बारे में आपको और अधिक सही सलाह वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि हर सीजन में कोई न कोई योजना जरूर आती है, योजना से संबंधित, जैसे कोई अनुदान की आपकी योजना है कि जैसे बीज पे अनुदान मिल रहा है, या किसी जो जो उपकरण है उनका जो इस्तेमाल होता है उनके ऊपर भी अदला, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जो अधिक चर्चा होती है आनंद जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इतने लाख रुपए का एक यूनिट पे योगदान है, आप लगाइए, उसके लिए एक जो मतलब प्रोसीजर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो आप उसका लाभ जो ले सकते हैं। तो पीएम केएस के माध्यम से किसानों को सलाह और सही रेट पर उर्वरक और उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि ये जो पीएम केएस की सेवाएं हैं इनका आप अवश्य लाभ उठाएं, जिनका खेती में लाभ होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अगर कोई दुकानदार है जो आपको ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे अनुरोध करिए कि आप ये उपलब्ध कराइए, और जब आप उनसे कहेंगे तो वो जो भी और संसाधन है जहाँ से ये सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो अवश्य ही वहाँ से इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने का काम कर।
1: बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करी। और किसान भाइयों, ये जानकारी आपके लिए जानकारी नहीं है, वो चीज है जो आपको हमेशा उपयोग में आने वाली है। मैंने सही कहा ना ए.के. सिंह जी?
0: जी बिल्कुल सही बात
1: जी। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे सर, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा दूसरा, और आज के सवाल भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं। अगला प्रश्न है हमारा ए.के. जी से, प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप।
0: हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सवाल अगर हम इस तरह लें कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में
1: जी जी
0: जो उर्वरक है उनके सही इस्तेमाल के बारे में कहा है, जो कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो आपको इसी संबोधन में उपलब्ध होगी, उनका आपको उनका संबोधन उपलब्ध होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी और स्पष्ट करना चाहूंगा
1: जी।
0: कि जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि हम देखते हैं कि कोई ने अगर अपने एक एकड़ खेत में इतना खाद डाल दिया तो मैं उससे ज्यादा डालूं तो मेरी फसल ज्यादा हो जाएगी, ये बहुत अनुचित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे कि चार लोग रोटी खा रहे, खाना खा रहे हैं
1: जी जी,
0: हो सकता है उनकी उम्र एक हो, एक ही गांव से हो, लेकिन उनकी भूख अलग अलग हो सकती है,
1: बिल्कुल
0: उनके स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो आप ये जब वो चार लोग हैं तो वो अपनी ओर से उनकी जो मतलब ऐसी कोशिश नहीं होती कि इसने अगर छह रोटी खाई है तो मैं भी छह खाऊंगा, वो देखते हैं भाई मेरा दो में पेट भर गया है और अब मैं नहीं खा सकता हूँ, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन खेत के बारे में ये हम अगर कहें कि खेत में कोई आवाज तो सीधे आता नहीं है, तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डाल देंगे उतना ज्यादा निकल आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फसल उतना ही लेगी जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी वो बेकार चला जाता है।
1: सही बात है।
0: और जो चीज आपने जो पैसे से खरीदी है और वो बेकार चली जाए तो आप समझिए इसमें कौन सी समझदारी है,
1: बिल्कुल
0: कोई समझदारी,
1: कोई समझदारी।
0: तो इसलिए उर्वरक का जो उपयोग है उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जितनी जरूरत है उतना डालिए, जब भी आप आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक तत्व इनमें पोषण है और इनकी आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी उतनी ही मात्रा डालें जो कि फसल को उसकी जरूरत। अब अक्सर सवाल उठ जाता है कि भाई उतनी मात्रा का कैसे अंदाज, ताजा लगे। तो इसका एक तो सीधा तरीका है कि आप खुद अपने यहाँ पे प्रयोग करें। जैसे सपोज आपके तीन खेत हैं या एक खेत के तीन टुकड़े कर ले, एक में आपने सपोज जो है उदाहरण ले एक बैग डाला, एक में सवा बैग डाला, एक में जो दो बैग डाला, अंतर देख लें। अगर एक बैग वाले में ही आपको अच्छी उपज मिल रही है तो फिर हम दो बैग क्यों डाल रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये मिट्टी परीक्षण के द्वारा, मिट्टी परीक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे खेत को मैं जो फसल में लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मान के चले कि हम गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं, उसका लगाने का समय हमें पता ही होता है, बीज की मात्रा पता ही है, तो प्रति एकड़ उसमें उर्वरक की कितनी जो आवश्यकता होगी, हम उदाहरण के रूप में ले लें कि यूरिया है, यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी। तो जब मिट्टी की जाँच होगी तो उसमें ये देखा जाता है कि खेत में कितने पोषक तत्व, और फिर जो फसल हम ले रहे हैं उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, तो उन दोनों का जब आकलन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक जो है जो सही मात्रा निकल के आती है कि गेहूं में कितना यूरिया हमें चाहिए, हम उसके हिसाब से चलें। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अगर मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध है आपके क्षेत्र में तो वो सर्वथा उचित है, उसको आप माने और उसके हिसाब से ही उर्वरक का उपयोग करें। तो आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का
1: जी,
0: वो सभी किसानों को अवश्य सुनाए, उससे काफी उनको प्रेरणा मिलेगी। और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपसे अनुरोध किया है कि आप उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में करें, क्योंकि जब भी आप अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे खेत की जो मतलब मिट्टी है उस पर बड़ा ही उसका खराब प्रभाव पड़ता है, और खेत से संबंधित जितने जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, और अंतोगत है हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: श्रोताओं एक बार फिर से आपका हम स्वागत करेंगे, और हमारे स्टूडियो में आज बड़ी कमाल की शख्सियत मौजूद है जी, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिट के सीनियर मैनेजर श्री ए के सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। ढेर सारी बातें हम उनके साथ लगातार कर रहे हैं श्रोताओं, और सर इसी बीच में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, मृदा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है?
0: जी हाँ बिल्कुल जी। तात्पर्य से अर्थ है कि क्या अर्थ निकलता है
1: जी,
0: है ना, क्या अर्थ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल,
0: मृदा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में जब भी हम स्वास्थ्य उसके बारे में सुनते हैं, स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य मतलब ये है कि जो हेल्थ है, जो भी चीज है वो उसकी क्या स्थिति है। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करें, भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो या तो स्वास्थ्य ठीक है या ठीक नहीं है, या ऐसे ही चल रहा है यार कुछ अच्छा नहीं है, या हाँ ठीक है अच्छा भी है। मतलब स्वस्थ होने का अर्थ ये है कि जो क्रियाएं सामान्य रूप से होनी चाहिए वो अगर सारी क्रियाएं हो रही है, जो ताकत उससे उपलब्ध होनी चाहिए वो पूरी ताकत उपलब्ध है, तो वह चीज स्वस्थ है। लेकिन जो चीज उससे हमें चाहिए और वो नहीं मिल पा रही, जो ताकत हमें उससे चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य में कोई रुकावट है। तो जहां हम जो मृदा स्वास्थ्य के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जितनी हमें चाहिए उतनी है। जैव तत्व की मात्रा जो कि हवा पानी के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, क्या वो उतनी है? और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि अगर मृदा स्वस्थ नहीं है तो हम उससे जितना उत्पादन लेना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। अब स्वास्थ्य में कोई एक चीज एक पैरामीटर नहीं होता है, जैसे कि अगर हम कहें हम अपना खून जांच करवाते हैं तो बहुत सारी चीज वो चेक कर लेते हैं, शुगर कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन कर लेते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी विटामिनों की क्या स्थिति है, विटामिन डी की क्या स्थिति है, तो वो देखते हैं कि भाई 5 पैरामीटर सही है लेकिन 4 खराब है, उसकी वजह से भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सारे पैरामीटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से खेत के अंदर जितने पोषक तत्व हैं, जैसे मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आजकल तो सल्फर भी मुख्य पोषक तत्व में आ गया है, ये तो बहुत अहम होने चाहिए, इनकी पूरी मात्रा होनी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक है जी, कैल्शियम है
1: जी सर,
0: बोरोन है, तो ये भी उतनी ही मात्रा में जो कि पैरामीटर है जितना चाहिए खेत में उतना होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक की कमी है तो वो कोई और जो पोषक तत्व जो पूरी मात्रा में भी है लेकिन वो फिर फसल को अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे कि मान के चले कि हमारे पास एक कार है, कार में सारी चीजें बिल्कुल फिट है, इंजन सही है, तेल पड़ा है, बैटरी वगैरह, टायर टूर सब सही है, लेकिन टायर जहाँ पर आपका पहिया लगा है उसके बोल्ट गायब है तो गाड़ी चलेगी
1: नहीं सर?
0: नहीं चले। इसी तरह से हरेक पोषक तत्व का अपनी संपूर्ण मात्रा में होना यह सुनिश्चित करता है कि हम अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जब इनमें कमी होती है तो क्या होता है, हमें फसल उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, फिर हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम कुछ चीजों को ज्यादा देंगे और कुछ चीजें जो बहुत कम है उनके बारे में हमें कोई ध्यान ही नहीं होगा, तो स्वास्थ्य में वो और ज्यादा गिरावट आती चली जाएगी। जैसे कि मान के चले कि ये कहा गया आपके स्वास्थ्य को चेक करके कि भाई कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा है, आपको लगा, तो अगर अब आपको ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसको कम किया जाए, तो कम करने के लिए क्या है, आप हरी सब्जियां खाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, ऐसी चीजें न खाएं जो कि इस चीज को और ज्यादा अधिक करते हैं, तो जब तक वो जानकारी नहीं होगी तो और ज्यादा स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। इसी तरह से खेत का जो स्वास्थ्य है वह हमारी खेती का एक मुख्य आधार है और खेत का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और खेत जब स्वस्थ होता है उसमें सारा पैरामीटर सही होते हैं तो खेत के अंदर जो मृत जीव हैं उनकी क्रियाएं भी बड़ी आसानी से हो पाती हैं, और जब उनकी क्रियाएं अच्छे से होती हैं तो हमें फसल उत्पादन में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे ओर से वह जीव भी हमें बहुत सारा काम अपने आप ही करके दे देता। अब इसके बाद आता है जैव तत्व, जैव तत्व तो खेत के अंदर होना बहुत जरूरी है, उससे जो खेत के अंदर जो उसका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है और सारी चीजों का समायोजन अच्छे ढंग से होता रहे, तो जो जमीन स्वस्थ है वो हमें अच्छा उत्पादन देगी, आसानी से देगी, क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, लेकिन अगर खेत का स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हमें उत्पादन भी कम मिलेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा और हमें तनाव भी।
1: सर आपने सच में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है बताई हमें मृदा के बारे में और कैसे हम उसको आगे उसका ख्याल रख सकते हैं ये भी आपने बताया, और इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के क्या कारण है सर?
0: बिल्कुल, कारण देखें अगर एक सबसे बड़ा अहम कारण ये है
1: जी
0: कि आपके पास एक आपके पास एक अलमारी है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो आपको पता है जब भी जरूरत हुई आप गए और आपने आवश्यकता के अनुसार उसमें से पैसे
1: निकाल दिए। बिल्कुल,
0: अगर आप निकालते ही रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो खाली हो जाएगी।
1: बिल्कुल खत्म हो
0: जाएगी, तो आपने ये भी देखना है बीच बीच में कि भाई मैंने निकाला था अब इसमें मैं उतने डालूं तो आगे के लिए मुझे मिलते रहे। खेत के बारे में भी यही है हमारा, खेत की मिट्टी कोई असीमित भंडार नहीं है पोषक तत्वों का।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें भी सीमित मात्रा में है और हमें हमेशा उसका टॉपअप करते रहना चाहिए। अब टॉपअप की बात चलिए तो आज का, क्योंकि आधुनिक जमाना है, फोन सभी के पास है, तो फोन में टॉपअप करते हैं ना, रिचार्ज करते हैं। तो वो करना खेत का बहुत जरूरी है। तो इसके मुख्य जो मतलब कारण है अपन उसके बारे में बात कहेंगे। सघन खेती मतलब एक के बाद एक फसल अगर हम ले रहे हैं लगातार और खेत को कोई आराम नहीं है तो वो सारी फसलें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में लेती हैं लेकिन हम उनकी पूर्ति उतनी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं उन्हीं से पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जैव तत्व है उसका खेत के अंदर, उसके और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि सिर्फ उर्वरक से नहीं मिलते, बहुत सारे जो अन्य साधन है उनसे उपलब्ध होते हैं, उनकी अगर हमने पूर्ति नहीं करी तो उसमें गिरावट आने लगती। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था कि अगर पोषक तत्व भी हम जितने चाहिए उतने नहीं दे रहे हैं, कोई पोषक तत्व तो ज्यादा दे दिया, कोई हमने दिया ही नहीं, तो संतुलन जो है अगर हमने ये बनाए नहीं रखा तो कहीं न कहीं आप मान के चले खेत के स्वास्थ्य में गिरावट आनी आरंभ हो जाएगी। तो संतुलन बहुत जरूरी है। आजकल बोलते हैं ना कि जैसे आपकी खाने की थाली उसमें हर चीज होनी, हरी सब्जियां भी हो, दालें भी हो, रोटी भी हो और दही भी हो, रायता है या जो भी कुछ है, एक संपूर्ण आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो भी और न्यूट्रिएंट है वो सब होने चाहिए। इसी तरह से हमारे खेत को भी सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर वो अत्यधिक मात्रा में निकलने लगेंगे और हम उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं वो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। दूसरा एक जो बड़ा अहम जो हमें लगता है कि खेत को कभी कभी आराम भी मिलना चाहिए। आराम क्यों मिलना चाहिए? आपके हिसाब आराम क्यों मिलना? हमारी तो कार है, हम तेल डालते हैं और सर्विस कराते हैं, हमेशा चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार ठीक है, एक जो मैकेनिकल चीज है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन खेत मैकेनिकल नहीं।
1: Exactly.
0: खेत के अंदर असंख्य जीव होते हैं।
1: जी जी।
0: तो अगर आप हमेशा खेती करते रहते हैं तो उनकी जो क्रियाएं हैं उनमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो, तो अगर आप थोड़ा आराम देते हैं तो वो निश्चिंत भाव से उस खेत में अपनी क्रियाएं करते हैं और आपके खेत को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। तो हमें कभी कभी बीच बीच में, हर साल नहीं तो दो एक साल बाद, 3-4 महीने के लिए खेत को आराम देना चाहिए। और या अगर हम

0: है ना, समय समय पर कुछ न कुछ अपनी खेती बाड़ी में हम करते रहते हैं। तो ये जो आपने एक मिथ है कि भैया जो हमारे मन में था ही नहीं कभी कि खेत को भी आराम चाहिए होता है, तो ये चीज जान के मुझे तो काफी अच्छा लगा। और बिल्कुल किसान भाइयों, आपको भी ये चीज शायद नहीं पता होगी जो आज हमें एके जी ने बताई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक और प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य गिरावट से क्या नुकसान है?
1: हाँ, नुकसान ये है
0: जी
1: कि अगर स्वास्थ्य आपका जो कमजोर है तो आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जो आपसे काम होना चाहिए वो नहीं हो। तो बिल्कुल सीधी सी बात पे आए तो जो फसल उत्पादन हम अपने खेत से लेना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे मान के चले कोई एक फसल लगाई है, उसके एक एकड़ से हम 50 क्विंटल अनाज का उत्पादन लेना चाहते, तो वो 50 क्विंटल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं है। अगर उसमें ही नहीं है तो वो फसल को या पौधे को नहीं दे पाएगी, और पौधे को अगर सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले तो उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो उसमें फूल और फल का उत्पादन भी उतना नहीं हो पाएगा, ना ही उसकी अच्छी क्वालिटी होगी। तो पहला नुकसान तो ये हो। दूसरा, अब इसकी भरपाई के लिए आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर दूं, तो आप दुकान पे गए और उन्होंने कहा यार ये खाद डाल दो, चाहे उसकी जरूरत है या नहीं है,
0: नहीं है।
1: तो वो आप उस पे आप खर्चा अधिक करें। अब जहां एक एकड़ में वो फसल उगाने के लिए आपके 5,000 खर्च होते थे, तो हो सकता है आप फसल को कमजोर देखें और हर बार कुछ न कुछ बाजार जाएं लेके आएं और डालें, तो हो सकता है 2,000 से 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर दें, तो 8,000 खर्च हो गए। तो एक तरफ तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और एक तरफ खर्चा अधिक हो रहा है, तो जो इन टोटल में जो आपको फायदा होना चाहिए था उसमें और ज्यादा कमी आने की संभावना है। ये तो दो ऐसे हो गए कि जो दिखते हैं। तीसरा, एक नुकसान बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आपकी फसल ठीक नहीं होती तो आपको तनाव होता है, आप बोलते हो यार ये सब किया ये नहीं, तो आपका उससे लगता है कि यार खेती में क्या है, आपका जो एक सोच है उसमें नकारात्मकता आने लगती है। उस समय तो होती होती है, फिर आप लापरवाह भी होने लगते हैं, पर उसका कारण ये नहीं था जो आप सोच रहे हैं। इसका कारण सिर्फ ये था कि मृदा के स्वास्थ्य को अगर हमने ठीक रखा होता तो ये कोई भी इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आती। तो खेती में मृदा स्वास्थ्य का बड़ा ही अहम स्थान है। अगर खेत स्वस्थ नहीं है तो उसमें हमें जो मन चाहा उत्पादन नहीं मिलेगा, खर्चे हमारे अधिक होंगे, रोग बीमारियां भी ज्यादा
0: जी
1: रोग, क्योंकि कोई भी चीज अगर कमजोर है तो उसमें कीड़े भी ज्यादा आते हैं, उसमें बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। सभी लोग आने, जैसे कि मान के चले कि कोई एक जगह है उसकी दीवारें जो कमजोर है, तो चूहे भी आ जाएंगे, बिल्ली भी आ जाएगी, सारी चीजें, चूहे आएंगे तो बिल्ली भी आएगी, बिल्ली उसे खाने के लिए आएगी और आपके लिए सारा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सुरक्षात्मक उपाय किए हैं तो कोई भी वहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा और सुख शांति जो बनी रहेगी। हालांकि उनका भी जीवन अहम है, वो अपना किसी और स्थान पर क्रियाएं करेंगे। तो इसी तरह से जो है एक मान के चलें कि भूमि का स्वास्थ्य आपकी खेती का एक सुरक्षा चक्र है, वह सुरक्षा चक्र अगर सुनिश्चित नहीं है, अगर वो कमजोर है, तो बहुत सारे नुकसान की संभावनाएं हमें खेती में आन पर।
0: बहुत ही सही एके जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करूंगा। आप तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदु पर जो है आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बीच में अगर बात करूं मृदा स्वास्थ्य में सुधार क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
1: सुधार कैसे करें, जैसे कि अभी आपने अभी तक सुना है बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि की वजह से हमारे खेत का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: उसका उल्टा कर दीजिए
0: जी,
1: है ना। अब बात ये आती है, उल्टे में होता है सघन खेती।
0: सघन
1: खेती हम रोक नहीं सकते आज
0: जी, जी, जी,
1: क्योंकि हमारी मांग है, खेत के आकार छोटे हो रहे हैं, फैमिली का साइज भी हमारा अलग अलग हो रहा है, फैल रहा है, तो हिस्से में जमीन कम है। सघन खेती आप करें लेकिन कभी कभी खेत को आराम भी दें।
0: ओके,
1: उर्वरकों का जो उपयोग है वो संतुलित उपयोग करें। संतुलित उपयोग के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि खेत में आप ट्रायल कर सकते हैं, अगर नहीं तो मिट्टी की जांच कराएं, उससे सही उर्वरक की मात्रा उस फसल में जो देनी है वो जानें। तीसरा, खेत के अंदर जो जैव तत्व है उसकी पूर्ति अवश्य करें, उसके गोबर की खाद, हरी खाद, इनसे आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं, साल में एक बार जरूर देवें, है ना। सिंचाई का पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। कभी कभी क्या है, अगर पानी की हमारे यहाँ खूब अधिकता है तो हम रात को खोल के जो छोड़े आए ट्यूबवेल और पानी भरता रहा खेत में
0: जी,
1: उससे बहुत नुकसान होता है, फसल भी कमजोर होती है। जैसी फसल कमजोर फिर आप कहते हो चलो अब इसमें यूरिया डाल देते हैं, तो वो गलत है
0: जी।
1: तो इस तरह से, और फिर फसलों को हेर फेर से बोएं, फसल चक्र अपनाएं, ये सब चीजें अगर आप करते रहे तो आप पक्का मान के चलिए कि भूमि का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा, और उसके लिए आपको कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर स्वास्थ्य आपका खराब है तो उसमें आपको ज्यादा प्रयास करने चाहिए उसको ठीक करने तक। एक लेवल तक अगर आ जाता है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको

0: काम करना होगा।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। मृदा के बारे में ढेर सारी जानकारी जो है आपने हमारे किसान भाइयों को हमारे रेडियो के माध्यम से दी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ मृदा का मतलब उसके क्या लाभ है, इसके विषय में मैं जानना चाहूंगा।
0: आप देखिए, जो जैसे कि हमने कहा था कि नुकसान क्या है कि भाई उत्पादन कम होता है, खर्चा ज्यादा होता है, रोग बीमारियां अधिक आती हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर आपके खेत की मृदा स्वस्थ है, उत्पादन अच्छा होगा, खर्चा भी कम होगा और रोग बीमारियां कम आएंगी। तो इनसे संबंधित जो आपके तनाव हैं वो सारे दूर हो गए, खर्चा कम हो गया, उपज ज्यादा मिल गई, फायदा ज्यादा हो गया, सीधी सी बात है। तो जो सारी चीजों का एक समाधान कि लाभ का अर्थ ये कि निश्चिंततापूर्ण खेती आप कर पाएंगे, आप जो फसल चाहें वो आप ले सकते हैं, जितना उत्पादन चाहें आप ले सकते हैं और उससे अच्छा फायदा कमा सकते।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: और आपका भी धन्यवाद आनंद जी,
1: बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आपने आज बताई इस वार्ता के माध्यम से कि भूमि स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें, और इस पे तमाम विषयों पर जो है आपने जानकारी दी, तो दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। और चलते चलते आपसे एक संदेश जो हमारे किसान भाइयों को आप एक सलाह देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए से।
0: जी हाँ बिल्कुल, मेरा सिर्फ यही अनुरोध है जैसा कि आज का विषय है
1: जी
0: कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहना चाहिए, हमारा खुद का, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उनका या हमारे यहाँ पर जो पशु हैं जो कि दूध दे रहे हैं या जो भी है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारे खेत का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अगर ये पूरा चक्र अच्छा रहेगा तो आप मान के चलिए कि जीवन में आनंद रहेगा, खुशियाँ रहेंगी और संपन्नता भी बनेगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर मैसेज चलते चलते जो है सर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूँ और एफएम मुरादाबाद भी आपको दिल से धन्यवाद कहता है। और श्रोताओं आपसे भी बस हमारी यही गुजारिश है कि आप ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए किसान भाइयों ट्यून इन रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन पे एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत से जो है हम जुड़े रहते हैं आपके साथ ताकि आपको भी समय समय पर सारी जानकारियां मिल सके। आज चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री ए.के. सिंह जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे, उनसे ढेर सारी बातें हुई। जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड में कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। किसान भाइयों अपना खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए सुनते रहिए आपके शहर का अपना रेडियो। बाय बाय, नमस्कार।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी। हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर, महिला मंच। दोस्तों मानसून स्टार्ट हो गया है, बारिश की पहली फुहार अपने साथ ठंडक, सुकून और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू लेकर आती है। लेकिन यही मौसम अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो सर्दी, वायरल, डेंगू, मलेरिया और पेट की परेशानी भी साथ ले आती है। तो आज पूरे शो में बात करेंगे मानसून में कैसे रखें अपना और अपने परिवार का खास ख्याल। साथ ही होंगी यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें और कुछ खूबसूरत गीत भी।
5: हाय, मैं आपके साथ आपकी आरजी रीना, और बरसात की बीमारियों के बारे में बात हो रही श्रोताओं। बारिश का मजा लेकिन सावधानी भी। बारिश में भीगना अच्छा लगता है लेकिन अगर भीग जाए तो देर तक गीले कपड़ों में ना रहे, घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहने, अगर संभव हो तो हल्का गर्म पानी या फिर अदरक वाली चाय पी लीजिए ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना होए। और आप ज्यादा गीले कपड़े में रहेंगे ना तो बॉडी के अंदर ईचिंग शुरू हो जाती है, जो कि वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में यानी कि शुरू हो जाती है ईचिंग होना, तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। लेकिन एक क्वेश्चन है आप सभी से मेरा, बारिश की पहले फुहार में भीगना आपको पसंद है या गर्मा गर्म चाय के साथ खिड़की से बारिश देखना? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं, नंबर है 9837896896।
4: अरे वारीना, अभी आपने बात की बारिश के बारे में, बारिश का मजा, लेकिन सावधानी के साथ। अब मैं बात करने वाली हूँ अपने श्रोताओं से खान पीन के बारे में। बारिश हो रिमझिम और खाने की अगर बात ना हो उसमें तो फिर अधूरा सा लगता है ना। मानसून में बाहर का कटा हुआ फूड, फल, खुला खाना और सड़क किनारे की चीजें खाने से बचें एवरीवन, एंड घर का ताजा और गर्मा गर्म खाना सबसे बेहतर होता है। तो बारिश में आपको, मुझे पता है कि गर्मा गर्म पकौड़े बहुत पसंद हैं और स्पेशली मम्मी के हाथ के, वो तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपको भी बहुत पसंद है। तो देखिए, बाहर अगर आप जा रहे हैं मानसून में तो बाहर के खाने से बचें, अवॉइड करें बाहर का खाना, हो सके तो घर का ही कुछ बना हुआ आप साथ लेकर जा सकते हैं।
5: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने कि घर से ही बना कुछ आप लेकर जाइए, क्योंकि बरसात के मौसम में कुछ चीजें ऐसी है जिसका हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अपनी सेहत। सेहत सही है तो आप हर काम आसानी से कर लेंगे।
4: और हमारी वो की टैगलाइन भी बड़ी प्यारी सी है ना रीना,
5: सेहत सही लाभ गई।
4: सेहत सही लाभ गई, एग्जैक्टली राइट। जब हमारी सेहत सही होगी तो हम हर चीज का लुत्फ उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। लेकिन रीना, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको बारिश में क्या पसंद है, पकौड़े या फिर गर्मा गर्म समोसे?
5: मुझे बरसात में देखो भीगना तो मुझे अच्छा लगता है, बट वो भी जब मैं घर पर हूँ ऑफिस जाने से पहले, तो मैं नहा के आराम से उसके साथ होना चाहिए, नहाने के बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय।
4: नेक्स्ट
5: स्नैक्स में ब्रेड पकौड़ा।
4: अच्छा, ब्रेड पकौड़ा पसंद है आपको?
5: इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है।
4: ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे कुछ आप कह रहे थे, कंटिन्यू कर लीजिए।
5: हाँ, पानी का महत्व। बारिश के मौसम में प्यास कम लगती, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतनी ही रहती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। ऐसा नहीं है श्रोताओं कि बारिश हो रही है आप पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि पता है कि मौसम वेदर है वो ठंडा हो जाता है और उसमें हमें प्यास बहुत कम लगती है। लेकिन आप नहीं पी रहे, आप अपने लिए मत पीजिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए जरूर पीजिए। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, चाहे बारिश हो। गर्मी में तो हर कोई पीता है भैया, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट का सिप लेता है, लेकिन बरसात में भी हमें पानी उतना ही पीना चाहिए।
4: बिल्कुल राइट यार, बहुत अच्छी बात बोली है। देखो, पानी की आपने बात की है तो हमारे सामने भी दो बॉटल नजर आ रही हैं, एक रीना की है और एक खुशी की बॉटल है, एंड हम भी बीच बीच में पानी पीते रहते हैं जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। और अब बात करते हैं मच्छरों से बचाव की। देखिए, बारिश के समय में ना आपको भी पता है कि कहीं भी पानी भर जाता है, चाहे वो आपकी छत पर रखा हुआ कोई टूटा बर्तन हो, कोई टायर हो, बहुत सारी चीजें हमारी छत पर रखी रहती हैं जो इसका हम यूज नहीं करते हैं, उनमें पानी जम जाता है। आपके घर के सामने गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो दोस्तों, उस पानी को आपको जमा नहीं होने देना है, उस पानी को आपको क्लीन करना है ताकि मच्छर वहाँ पर ना पनपे। और मानसून आते ही मच्छर तेजी से बढ़ते हैं, घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। पूरी बाजू के कपड़े पहने और रात में मच्छरदानी या फिर रिमप्लेट का इस्तेमाल करें। आपके घर में मच्छरों से बचने का सबसे असरदार देसी तरीका कौन सा है श्रोताओं, आप हमें जरूर बताइएगा। हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे जवाबों का। एंड अभी बात करते हैं रीना से भी। रीना, आप क्या कहना चाहोगे इस मौसम के बारे में? और
5: देखिए, मौसम बरसात का सही होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। अब जैसे बारिश होती है, कीचड़ कहीं पे नालियों के पास में पानी भर जाता है, तो वो पानी क्या है, साफ नहीं है, वो पानी गंदा है। आप उस पानी से निकल रहे हैं, पैदल भी जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप हमेशा गाड़ी पर हो, गाड़ी में हो या फिर आप बाइक से हो, पैदल यात्री भी होते हैं।
4: और रीना, ऐसा भी होता है ना, जैसे हम आपने बोला कि सड़कों में रोड पर पानी भर जाता है और जो नालों में कुछ चीजें होती हैं जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी बहकर आ जाते हैं।
5: बहुत सी चीजें हैं जो आप बहके आ जाती है। हाँ, तो उनका ध्यान रखना है। और ज्यादा देर तक आपको कीचड़ में नहीं रहना है, गंदे पानी में छपा छप आपने ज्यादा देर नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बीमार होने की पूरी संभावना है, इसीलिए ज्यादा देर तक कीचड़ में नहीं रहना है। इनफैक्ट ज्यादातर वहाँ जहाँ पे गंदे पानी पानी आ रहे हैं, नालों के पानी आ रहे हैं, उस जगह तो बिल्कुल जाने से बचिए और जितना हो सके जल्दी घर पहुंच के साफ पानी से अपने पैर को वॉश कीजिए और फिर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि आप सुरक्षित रहे, क्योंकि पैर ज्यादा देर तक भीगने

होगा कि जो हमारी उंगलियों के पास के जो स्किन होती है ना, वो सिकुड़ने लगती है और फिर उसमें फंगल्स हो जाते हैं, जो आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के बाद इतनी ज्यादा खुशी, मतलब खुजली इतनी ज्यादा लगती है ना कि आप उसको मतलब बिना खुजाए रह ही नहीं सकती हो। और ये बहुत कॉमन बीमारी है, ये जब इन्फेक्शन पैरों की उंगलियों के आसपास हो जाता है तो उसके लिए फिर इंसान ना सो पाता है ना चल पाता है, परेशान रहता है। तो ज्यादा देर तक आपने कीचड़ वाले पानी में बिल्कुल भी नहीं रहना है श्रोताओं। देखिए, इस मौसम में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और मलेरिया होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, बहुत सी बीमारियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और बस ऐसे ध्यान रखिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं।

0: हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मानसून में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है। मौसमी फल, हरी सब्जियां और विटामिन सी वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल करें, अच्छी नींद लें और हल्की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे ना तो आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आप भी चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ भी बेहतर से बेहतरीन हो जाए और आप भी ऐसे ही प्यार से खिलखिलाएं। नोट ओनली, क्या करना है आपको, सिर्फ मुस्कुराना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रीना से। रीना, आप क्या कहना चाह रहे हो?
1: देखिए, बरसात में कोमन बहुत चीज है जिसका हम घर से निकलते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना ख्याल जरूर आता है कि बारिश में घर से बाहर निकले ना निकले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ जाता है जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है।
0: राइट।
1: तो इसके लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो रेन कोट, छाता अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि मौसम खराब हो तभी आप छाता रेन कोट लेकर जा सकते हैं। आपको दिख रहा है कि भाई आज बारिश होने वाली है, घटा हो रही है, तो डेफिनेटली बारिश हो सकती है। जरूरी नहीं 10 बजे नहीं हो तो 12 बजे, 3 बजे ना होएगी जरूर। तो अपने साथ अगर आप छाता रेनकोट रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और साथ ही साथ उन सभी से यही कहना चाहेंगे जो गाड़ियों में सफर करते हैं, यानी कि बरसात के समय सड़कों पर पानी भर जाता है, तो अपनी गाड़ी यानी कि ज्यादा तेज नहीं चलानी, आपने धीरे चलानी। अपने आसपास के जो लोग चल रहे हैं, पैदल सवारी है, ई रिक्शा वाले हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है ताकि उनके ऊपर जो छींट है वो ना जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई व्हाइट कलर के कपड़े के बहुत शौकीन होते हैं और व्हाइट कलर के कपड़े पहन कर जाते हैं, और एक बार छींट लगने के बाद ना उस दाग को साफ करना, ये बात तो सिर्फ मम्मियों से पूछा जाए।
0: हाँ रीना यार, ऐसा मैंने भी देखा है कई बारी कि कुछ लोग इतनी मतलब हाई स्पीड में होते हैं कि सामने उन्हें ये नहीं पता होता है कि सामने भी कुछ इंसान है। वो उनका ख्याल नहीं करते हैं, वो इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर जाते हैं कि सामने वाले के कपड़े क्या मुंह पर भी छींटे आ जाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जो इस समय हमें ऑन द वे कार में सुन रहे हैं कि प्लीज आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और हाँ, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लीजिए।
1: और तुमने खुशी एक देखा होगा कि बचपन में स्कूल जाते थे,
0: हाँ,
1: तो उस टाइम बहुत कम घरों के अंदर छाता होती थी ना, तो वो कट्टे वगैरह की जो बना लेते थे छतरी थे।
0: मुझे याद आया।
1: हाँ, तो क्या ऐसा काम करा है, मतलब जैसे बारिश हुई हो और तुमने कट्टा ले लिया हो मतलब ओढ़ने के लिए ताकि हम गीला ना होए?
0: एक बार
1: छाता नहीं ले जाती थी, मेरे को मजा उसी में आता था।
0: हाँ, तो स्कूल का टाइम था तो हम लोगों की छुट्टी के समय पे ही बारिश हो गई। हमने सोचा था कि मॉर्निंग टाइम में बारिश हो ताकि हम स्कूल ही ना जाए, लेकिन उल्टा हो गया। हम स्कूल पहुंच गए, जब घर आने का टाइम हुआ तो बारिश बहुत जमकी होने लगी। तो उस समय हमने कहा कि कैसे जाएंगे, अगर बाहर ऐसे जाएंगे तो सारी किताबें जो बुक्स हैं, बैग है, वो गीला हो जाएगा। तो फिर हमने अपनी मैम को बोला कि मैम प्लीज हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारा बैग भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। तो मैम ने हमें एक बड़ी सी पॉलिथीन दी, मुझे याद है अभी भी, तो व्हाइट कलर की। हम उसको ओढ़कर अपने घर आए, लेकिन रास्ते में रोड पर पानी था, उस पानी में भी हम चल चल कर आए। कहीं से आम बहकर आ रहे हैं तो कहीं से अनास पाती बहकर आ रही है।
1: नीले वाले पन्ने तो बहुत ओढ़ते हैं बरसात के मौसम में, बरसात की पानी और ऊपर से नीले कलर का पॉलिथीन।
0: हाँ,
1: मजा आ जाता है।
0: हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो वाला मेमोरेबल टाइम भी, अभी हम याद कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है।
1: तो श्रोताओं, आप भी बता सकते हैं अपनी बचपन की कहानी, इनफैक्ट अभी की कहानी भी बता सकते हैं।
0: और
1: जरूरी नहीं कि उसी टाइम हम छाप पन्नी ओढ़ते थे, अभी भी ओढ़ा जाता है यार।
0: और फिर दिल तो चाहे जी, दिल को हमेशा अपने बच्चा बनाकर रखना चाहिए। हम भले ही कितने बड़े हो जाएं, लाइफ में ना इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, फिर लाइफ में मजा नहीं आता जीने का। तो कुछ फन एक्टिविटीज हमें करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: करते रहनी चाहिए ना एवरीवन। एंड अभी हम बात करते हैं चाय की। अब बारिश हो और चाय की बातें ना हो, ओ हो, फिर तो लगता है कि कुछ अधूरा सा है। देखिए दोस्तों, बारिश, चाय, पुराने गानों का रिश्ता, बारिश, चाय और पुराने गानों का रिश्ता ही अलग होता है ना एवरीवन। मैं जानना चाहती हूँ आपको बारिश में कौन सा गाना सबसे पसंद है जो आप बारिश में गुनगुनाती हो, अक्सर आपकी जुबान से निकलता हो। कल आपने मुझे सुनवाया भी था वो गाना।
1: मुझे यार, मैं रेट्रो की बहुत दीवानी हूँ।
0: अच्छा,
1: भीग जाने दे भीगी रातों में, अरे गाना है ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, जो भी कुछ है वो गाना है, मुझे मतलब ये वाला जो लगिया सावन की फूल झड़ी वाला गाना है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है।
0: हाँ, मतलब जब इस गाने को सुनते हैं ना तो अलग ही जोन में हम पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना बारिश के मौसम में, ये वाला बहुत पसंद है। मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, बहुत पसंद है। और एक बार एक और गाना है आपको पता है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई,
1: बरसो रे मेघा
0: मेघा, अरे वाह।
1: ब्रेक लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ।

0: अभी अपने पसंद का गाना बता सकते श्रोता, बरसात का मौसम और पसंद के गाने ना हो तो साथ भुट्टा यार।
1: ओहो हो हो, स्वीट कॉर्न की बात कर दी है लड़की ने।
0: यस, मतलब बरसात हो और स्वीट कॉर्न की खुशबू ना है, हर गली मोहल्ले से आती हुई यार।
1: हाँ। अच्छा आपको पॉपकॉर्न बनाना आता है?
0: मुझे पॉपकॉर्न बनाना नहीं आता यार, बस भुट्टे को बॉइल करके काला नमक डाल के और नींबू, बस इतना ही आता है मेरे को।
1: अच्छा यार,
0: मुझे यही बहुत पसंद है, इतना ही।
1: खाने पीने की बातें मत करो, इस समय लंच का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लग रही है। पता चला कि खुशी कुछ मिनट के लिए यहाँ से गायब हो गई है। तो अच्छा, हम बारिश की बात कर रहे थे, देखो हमारी कितनी सारी यादें ताजा हो गई है ना, और हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं हमें, वो भी मुस्कुरा रहे हैं रीना, क्योंकि उनके भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, जो वो भी इस समय उनकी जो मेमोरीज है वो भी ताजा हो गई है। वो भी अपने बचपन के टाइम में खो गए थे, जब हमने स्कूल की बात की थी कि हम भी ऐसे ही जाया करते थे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, पता है क्या
0: क्या
1: अभी हम बात करने वाले हैं, बारिश हमें सिखाती क्या है?
0: बारिश हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। देखिए बारिश के बाद धूप तो जरूर निकलता है, और जब धूप निकलती है तो हर किसी के चेहरे पर अलग मुस्कान भी होती है और थोड़ी सी नाराजगी भी होती है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ जाती है ना। तो देखिए मौसम है और परेशानियां हर जिंदगी में आती है, कभी खुशी तो कभी गम, आपने ये टैगलाइन सुना भी होगा। तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, हर मुश्किल का सामना करना है, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, बस हमें सतर्क रहना है। और किन किन चीजों का आपने समय पर ध्यान रखना है, एक तो सबसे कॉमन होती है चीज है, यानी कि हमारा जो मेडिसिन है, जो हमारे बुजुर्ग है उनकी दवाइयां होती हैं, जो बच्चे हैं इनका खासकर ध्यान रखिए। और बरसात के मौसम में ना जो जरूरतमंद चीजें हैं वो अपने घर में
1: होनी चाहिए,
0: रखे। बिल्कुल, दवाई तो अपने साथ रखना ही चाहिए, जो कि दवाई के बिना देखे रह नहीं सकते, डेली दवाई के ऊपर जी रहे हैं, तो उनके लिए चीजें हैं वो अपने साथ जरूर रखिए, चाहे बारिश आए चाहे ना आए।
1: और आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत से समझौता मत कीजिए। साफ खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, मच्छरों से बचिए, भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति, हम मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और लाइफ में हम हमेशा हैप्पी रहिए। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम दोनों की तरह खिलखिलाते रहिए
0: और रेडियो सुनते रहिए।
1: ओके बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके। सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनके यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
4: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और साथियों, आज सुन पाप का अपना पसंदीदा कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम है महिला मंच। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आए तो अपने सपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक शख्सियत है सुधा चंद्र, एक बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगना, प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हौसले की मिसाल। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भविष्य को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को उस मुश्किल तक सीमित नहीं होने दिया। आज हम उनकी जिंदगी के उन 25वें पड़ाव को जानेंगे जो हमें कॉन्फिडेंस, धैर्य और लगातार कोशिश करने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुधा चंद्र जी की इंस्पिरेशनल जर्नी। हाय रीना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो?
0: आई एम गॉर्जियस। तो आगे आप क्या कहना चाहती हैं सुधा मैम के बारे में?
1: किसी भी इंसान की कहानी समझने के लिए उसके शुरुआती जीवन को जानना जरूरी होता है। सुधा चंद्र का जन्म यानी की 1965 में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार तमिल जन्मभूमि से, जो बचपन से ही सुधा का झुकाव कला और नृत्य की तरफ था, धीरे धीरे नृत्य करके जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़की एक दिन अपनी जिंदगी के संघर्ष को पार करके लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। महिला मंच से आज की सीख है, बच्चों की रुचि को पहचानिए और उसे अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दीजिए। सुधा चंद्र की जिंदगी में नृत्य सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था। उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास शुरू किया था और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा को निखारा। दोस्तों, किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उसके साथ चली अनुशासन, धैर्य और लगातार अभ्यास, यही गुण सुधा की यात्रा में भी नजर आते हैं। महिला मंच की सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आपके अंदर भी कोई ना कोई खास हुनर जरूर है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने और समय देने की। याद रखिए, आपका हुनर आपकी पहचान बन सकता है।
0: परिवार के साथ और सपनों की उड़ान। दोस्तों, जब किसी के सपनों को परिवार का साथ मिलता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाता है। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में भी उनके माता पिता और परिवार का सहयोग अहम रहा। उनकी नृत्य यात्रा में परिवार ने उनका साथ दिया और मुश्किल समय में भी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिली। अक्सर महिलाएं परिवार के हर सदस्य के सपने पूरे करने में जुटी रहती हैं, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं कि वह महिलाओं के सपनों को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। आज का सवाल हमारे श्रोताओं से है, क्या आपके घर में भी हर सदस्य को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों, वर्ष 1981 में सुधा चंद्र जी की जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तमिलनाडु में यात्रा के दौरान हुए हादसे में उनके दाएं पैर में गंभीर चोट आई। बाद में संक्रमण के कारण डॉक्टरों को उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उस समय सुधा जी की उम्र बहुत कम थी। उनके सामने भविष्य को लेकर आए कई सवाल थे। नृत्य जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन दोस्तों, जीवन की कोई एक घटना हमारी पूरी पहचान तय नहीं करती। मुश्किल समय में खुद को संभालना और आगे की राह तलाशना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है।
1: सुधा चंद्र के जिंदगी में दुर्घटना के बाद का समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। जिस नृत्य के लिए उन्होंने मेहनत की थी, उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता सामने आई। लेकिन ऐसे समय में परिवार का सहयोग, उनका पूरा सपना और आगे बढ़ने की इच्छा उनके लिए महत्वपूर्ण बने। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता, यह भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में खुद को थोड़ा समय देना, अपनों से बात करना और छोटी उम्मीदों को थामे रखना बहुत जरूरी है। महिला मंच की तरफ से एक प्यारी सी बात, मुश्किल दौर आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। अब हम बात करते हैं जयपुर फुट से मिली नई राह। सुधा चंद्र की वापसी की कहानी में जयपुर फुट की अहम भूमिका रही। यह कृत्रिम पैर उन्होंने दोबारा चलने और आगे चलकर नृत्य का अभ्यास शुरू करने में मददगार बना। यहाँ हमें एक और जरूरी बात समझानी चाहिए यहाँ एक और जरूरी बात हमें समझनी चाहिए किसी इंसान की उपलब्धि में उसकी अपनी मेहनत के साथ साथ सही चिकित्सा सहायता और सहयोगी तकनीकी और सहयोग देने वाले लोगों का भी योगदान होता है। सुधा ने उपलब्ध सहायता को अपनी

0: लिए ये एक नई शुरुआत थी जिसमें धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी कला से रिश्ता नहीं तोड़ा। उन्होंने उनके सफर से हमें समझ आता है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी कभी पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके सीखने पड़ते हैं। महिलाओं, हमारी विमेंस, याद रखिएगा, नई शुरुआत करने के लिए हर बार सब कुछ पहले जैसा होना जरूरी नहीं होता। सपना देखना खूबसूरत होता है, लेकिन उस सपने के लिए दोबारा मेहनत शुरू करना असली चुनौती होता है। सुधा चंद्र जी के कृत्रिम पैर की मदद से नृत्य का अभ्यास फिर से शुरू किया गया। उन्होंने अपनी कला के लिए नई सिरे से मेहनत करनी पड़ी। ये आसान या तुरंत पूरा होने वाला सफर नहीं था। उनकी कहानी हमें बताती है कि कमबैक सिर्फ एक शानदार दिन का नाम नहीं है, उसके पीछे रोज की कोशिश, सीखने की इच्छा और धैर्य छिपा होता है। अगर आप भी किसी पुराने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, आज मैं उसके लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकती हूँ? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो स्टेप जरूर लेंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर देता है।
1: दोस्तों, कभी भी कला को सीखने में गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुधा चंद्र की नृत्य यात्रा में उनके नृत्य गुरु का योगदान भी अहम था। कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन हमें अपनी क्षमताओं को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। जब हम किसी काम को अकेले असंभव समझने लगते हैं, तब अनुभवी व्यक्ति हमें नए तरीके सिखा सकता है। यह बात महिलाओं के जीवन में भी लागू होती है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई कला सीखने में संकोच मत कीजिए। याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं है, सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत करना समझदारी है। और साथ ही साथ सुधा चंद्र के नृत्य में वापसी के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ा। उनके जीवन के इस दौरान को समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन की मेहनत शायद दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन वही धीरे धीरे हमारी क्षमता को मजबूत बनाती है। महिला मंच की उन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी जो नई पढ़ाई शुरू करना चाहती हैं, अपना काम शुरू करना चाहती हैं या किसी हुनर को सीखना चाहती है, खुद से तुरंत परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखिए। अपने प्रयास को समय दीजिए। लगातार सीखना और जरूरत के अनुसार तरीका बदलना भी सफलता का हिस्सा होता है। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। बस आप यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए महिला मंचों में और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक और आज हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्र जी की कहानी की एंड उनके जीवन की। और दोस्तों सुधा चंद्र जी की कहानी का एक बेहद अहम पड़ाव आया वर्ष 1984 में, जब उन्होंने दो बार मंच पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। कल्पना कीजिए एक ऐसी कलाकारी जो दुर्घटना के बाद अपने भविष्य को लेकर अनुशिचिता से गुजरी, उसने फिर से अभ्यास किया और दर्शकों के सामने अपनी कला प्रस्तुत की। ये सिर्फ नृत्य की वापसी नहीं थी बल्कि उनकी मेहनत और लगन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। उनकी यात्रा हमें बताती है कि किसी कठिन दौर के बाद अपनी पसंद की चीज की ओर लौटना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आपके जीवन में कौन सा सपना है जिसे आप दोबारा मौका देना चाहते हैं? आज उस सपने के बारे में सोचकर जरूर हमें बताइएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी डर या परेशानी महसूस ही ना हो। आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में हमें यही बात दिखाई देती है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती के बाद अपनी कला को फिर से अपनाया और नृत्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। महिलाओं को अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर फैसले में दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते रहना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, सही जानकारी जुटाइए और सोच समझकर कदम उठाइए। आपका आत्मविश्वास आपकी आगे की यात्रा को मजबूत बना सकता है।
1: सुधा चंद्र की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक रही कि उनकी कहानी पर फिल्म बनाई गई। सुधा चंद्र की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक रही कि उनकी कहानी पर फिल्म भी बनाई गई। तेलुगु फिल्म मयूरी वर्ष 1984 में आई और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरित थी। बाद में हिंदी दर्शकों के लिए नाचे मयूरी नाम से भी यह कहानी सामने आई। इस फिल्म ने बहुत से लोगों तक उनकी मेहनत और नृत्य में वापसी की कहानी पहुंचाई। कला की यही खूबसूरती है, एक इंसान की निजी अनुभव भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपकी जिंदगी में भी कोई अनुभव, कोई सीख या कोई छोटी उपलब्धि ऐसी हो सकती है जो किसी दूसरे इंसान को हिम्मत दे। अपने अनुभव को साझा करने से मत झिझकिए। और सुधा चंद्र की कहानी सिर्फ एक कलाकार की वापसी तक सीमित नहीं रही, उनके जीवन यात्रा पर आधारित फिल्म मयूरी को भी पहचान मिली और सुधा को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन प्राप्त हुआ। यही उपलब्धि दिखाती है कि किसी कठिन अनुभव को कला और मेहनत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पुरस्कार मिलना उपलब्धि का एक हिस्सा है, उसके पीछे जो तैयारी, समर्पण और लगातार काम करने की आदत होती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की सीख है, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। पहचान मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सीखने और बेहतर बनने की प्रक्रिया जारी रखिए।
0: तो दोस्तों सुधा चंद्र जी की प्रतिभा सिर्फ शास्त्रीय नृत्य तक सीमित नहीं रही है, उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी तथा दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। भारत में उन्होंने टेलीविजन पर भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। दर्शकों ने उन्हें अलग अलग किरदारों में देखा है और उनकी अभिनय क्षमता को पहचाना। उनकी यात्रा से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, हमारी एक पहचान हो सकती है लेकिन हमारी क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती हैं। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहती हैं या अपने काम के क्षेत्र में बदलाव करना चाहती हैं, तो अपनी रुचि को जानने का मौका खुद को दीजिए। नई दिशा चुनना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। और दोस्तों सुधा चंद्र जी ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी खास जगह बनाई। उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदार निभाए। कहीं किसी रोज और नागिन जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों ने याद रखा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कलाकार समय के साथ अपनी प्रतिभा को अलग अलग माध्यमों में इस्तेमाल कर सकता है। नृत्य से शुरुआत करने वाली सुधा ने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई। महिला मंच की तरफ से सभी महिलाओं के लिए संदेश है, आपका पहला काम या पहला अवसर ही आपकी पूरी क्षमता की सीमा नहीं है। सीखते रहिए, नए अवसरों को पहचानिए और अपनी प्रतिभा को विकसित करती रहिए। जब कोई इंसान कुछ अलग करता है ना दोस्तों, तो उसे हर बार तारीफ ही मिले ये जरूरी नहीं। कभी कभी आलोचनाएं भी सुननी पड़ती हैं। सुधा चंद्र जी की यात्रा हमें ये सोचने का मौका देती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए सिर्फ दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर आलोचना को गलत मान लिया जाए, अच्छी सलाह से सीखना चाहिए, लेकिन निराश करने वाली टिप्पणियों को अपनी पूरी क्षमता का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपनी जिंदगी में कई तरह की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं समझें और सही सलाह के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, आपकी मेहनत का मूल्य सिर्फ दूसरों की राय से तय नहीं होता।
1: जब हम किसी कलाकार को मंच पर देखें तो अक्सर उसकी मेहनत की नजर आती है, लेकिन किसी भी बड़ी यात्रा में परिवार, गुरु, सहयोगी और कई दूसरे लोगों का योगदान भी होता है। सुधा चंद्र के जीवन में भी उनके माता पिता, गुरु और चिकित्सा सहायता देने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इससे हमें सीख मिलती है कि सफलता की राह में सहयोग को पहचानना और उसके लिए आभार व्यक्त करना जरूरी है। महिलाएं अक्सर परिवार में बहुत बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उसकी मेहनत को शब्दों में सराहना भी जरूरी है। अगर आपके घर में कोई महिला रोज आपकी मदद करती है तो आप उसे धन्यवाद जरूर कहिए। कभी कभी सम्मान को दो शब्द किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना देती हैं। सुधा चंद्र के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनकी कहानी उन लोगों तक की पहुँच है जो किसी कठिन परिस्थितियों के बाद अपने सपनों को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक चुनौती आने के बाद भी कला और प्रतिभा के लिए नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। इसके लिए मेहनत के साथ उचित सहायता और अवसर भी जरूरी है। यही कहानी हमें किसी से अपनी तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए सुननी चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता की नकल करने के बजाय अपनी रुचि, जरूरत और क्षमता के अनुसार अपना रास्ता बनाइए, यही असली मोटिवेशन है। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौट कर आते हैं।

0: लिया लिया ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों देखिए आपने सुना
1: है you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
5: अरे थे छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
6: कौन है ये?
5: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, 3 से 5 मंडे टू सैटरडे, करती है आपसे दिल की बात।
7: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
5: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका शानदार गुजर रहा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर दिन में आपको थोड़ी सी भी

0: अहमियत फील हुई है ना, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने और आपके दिन को थोड़ी और खूबसूरत बनाने के लिए खुशी यहाँ पर आ गई है। इस खूबसूरत सी दोपहर में बहुत खिलखिलाती हुई सी धूप बाहर निकल रही है और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:05। आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। हेलो फरमाइश, आपकी दोस्त खुशी और साथियों, आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा आसान सा काम करना है। आपको अपना फोन उठाना है और टाइप करना है हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 9837896896 98378। ये वही नंबर है जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमें कॉल लगाइए। और फिलहाल अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, वो सब हम उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मैम शेरपुर मार्केट से सालिम अंसारी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सो
1: हमारे हाल चाल एकदम बढ़िया है और आपके शो का इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा
0: है। अरे वाह,
1: काफी महिला मंच प्रोग्राम में हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और बताइएगा, फैमिली में सब खैरियत से हैं आपकी यहाँ पर? हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आप बताइएगा, आज आप हमारे शो की फर्स्ट कॉलर बने हैं, क्या फरमाइश है आपकी? अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं ये गीत आपको सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, रामलीला शुरू हो चुकी है, मेला भी स्टार्ट हो गया है, आप भी आ सकते हैं।
1: हमारे यहाँ पर भी बहुत भारी होता है, राजा का शेषपुर पर था, वहाँ पे बहुत भारी होता है नामग्राम में।
0: ओके, तो वहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है?
1: स्टार्ट हो गया।
0: अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ पर भी नियर बाय रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा मेले का आयोजन हो चुका है और रामायण भी यहाँ पर चलती है।
1: जी काफी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते
0: हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो आप गए अभी तक मेले में या नहीं गए हैं? अच्छा अच्छा ओके, चलिए मेले का अभी लुत्फ उठाइए। और वहाँ पर आपको मेले में सबसे ज्यादा क्या चीजें अच्छी लगती हैं, जरा हमें बताइएगा सर।
1: झूला।
0: अच्छा झूला, तो आप झूला झूलते हैं?
1: ट्रेन वाला झूलते हैं।
0: अच्छा ट्रेन वाला, ओके, तो उसमें बैठकर आप फीलिंग लेते हैं कि हम ट्रेन में बैठे हैं। हाँ चलिए अच्छी बात है, मेले का आप भी आनंद उठाइए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। सुनवाते हैं सर हम आपकी पसंद का ये गाना। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए रिफर सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। एंड आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी दिल, अनुराधा पौडवाल जी और साथ में उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज। और ये ट्रैक पिक्चराइजेशन था आमिर खान साथ में माधुरी दीक्षित जी पर। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे
1: हैं? हाँ मैम, सुन रहे हैं।
0: जी जी सर, बताइएगा अपना नाम।
1: मुस्कुरा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: ग्राम गोदी से बोल रहा हूँ मैं, दुकान पर से हूँ। टाइम सर समुद्र में से।
0: जी जी जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे दोस्त उससे गाना सुनना चाहते हैं सर जी।
0: जी बताइएगा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: मैं तेरी शिकवा करूँ तो अनिल कपूर वाली जो है।
0: अच्छा, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये ट्रैक है ना?
1: ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। हमारे के दीपक भाई हैं।
0: हाँ जी,
1: मुरादाबाद से आगे बैठे हैं मेरे दोरे।
0: ओके,
1: और आजी नबी हैं और के साउदीन भाई हैं। हम चार जने बैठे हुए आपको एंजॉय कर रहे हैं।
0: अरे वाह, हमारा शो आप एंजॉय कर रहे हैं, तभी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, तभी इतना खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए अपने दोस्तों के साथ सुनिएगा अपनी पसंदीदा ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया आपका सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। और जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना तो बात ही अलग होती है, सारे गम भूल जाते हैं और वही पुरानी बातें, वो खूबसूरत पल फिर से याद आ जाते हैं। और दोस्त बहुत स्पेशल होते हैं, है ना? तो आपके पास भी अच्छे दोस्त हैं ना, उनको संभाल कर रखिएगा। एंड सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत, मैं वापस आती हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती है आरजी खुशी एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और वक्त हुआ है 3:23। अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी राम अवतार जो 1988 में आई थी। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। जी सर नमस्कार। जी अपना नाम बताइएगा।
1: टिंकू सैनी
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। बताइएगा आज कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: गीत हमारे बड़े भैया बताने कह रहे हैं, ये इनकी फरमाइश है आज।
0: जी जी बताइएगा। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार।
2: नमस्कार जी, और कैसे हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया है
0: जी, अच्छा ही रहना चाहिएगा। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज से?
2: गाने की फरमाइश थी इनकी, मुकदमा चलेगा यार वो आज तो मोहब्बत
0: का। ओके, ये कौन सी फिल्म का गीत है?
2: फिल्म का तो पता है ध्यान से तरी, लेकिन धर्मेंद्र जी का है।
0: अच्छा
2: जी
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपको।
2: ठीक है
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं वापस आती हूँ लौटकर, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और एक खूबसूरत सा गाना हम यहाँ पर सुनवाते हैं, लौटकर आएंगे, तब तक आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। एंड अपना मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। फिलहाल अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और ट्राई करते रहिए, आपको भी डेफिनेटली कॉल लगेगा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना किशोर दया जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना, किशोर कुमार जी की आवाज में मेरे महबूब कयामत होगी, खूबसूरत सा ट्रैक। और दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा, दोपहर का समय है, किसी के घर में तो लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, है ना, और कोई ऑफिस के काम निपटा कर कंप्लीट कर कोई आराम से, कुछ लोग तो सफ़र कर रहे होंगे और कुछ आराम से लेट कर हमारा शो सुन रहे होंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि रेडियो सुनते हुए आप काम करते हैं या काम करते हुए रेडियो सुनते हैं? हाँ, और अगर मम्मी ने आवाज़ लगाई कि इधर ज़रा इधर आओ, तो आप क्या करते हैं, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं या फिर तुरंत उठकर चले जाते हैं? जी मम्मी जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइएगा हमें। तो ज़रूर बताइएगा। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका डियर? आफिया,
1: आसिया
0: जी। ओके जी, बताइएगा आसिया, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हो?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बात कर रहे हो कि, बताइएगा क्या करते हैं आप, जरा अपने बारे में भी बताओ हमें। अच्छा, अरे वाह, उसमें तो यू नो बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत बारीकी का काम होता है। लेकिन जब हम उसको करते रहते हैं कोई भी कार्य, तो उसमें हमें सफलता मिलती है और वो इजी भी लगने लगता है ना। तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: मैं आज सुनना चाहती हूँ तू मेरी जिंदगी है।
0: अच्छा, और ये किसके लिए सुनना चाहती हैं आप?
1: मेरी सिस्टर है अफरोज फातिमा।
0: हाँ,
1: सैया लायबाती और दरअसल।
0: अच्छा तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना। बाय, टेक केयर। तो चलिए, ये तो हमारी फाइनली लिसनर थी जो कि थोड़ा सा शर्मा रही थी, थोड़ा सा घबरा भी रही थी, बट होता है ऐसा, कोई बात नहीं। आप भी मुझे कॉल लगाओ बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। देखो कॉल लगाने में ना कोई कंजूसी नहीं करना है आपको, ठीक है? चलो सुनो ये शानदार से गाना।

0: दोस्तों खुशी तो और तब बढ़ जाती है जब अपना कॉल लग जाता है ना, और जब कॉल लग जाता है और फेवरेट गाना अगर चल जाए रेडियो पर तो फिर बात ही अलग हो जाती है। और ये अभी आपने खूबसूरत सा गाना सुना अनुराधा पौडवाल जी और साथ में कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी आशिकी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील मलक जिला रामपुर से शकावत हुसैन मंसूरी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैम, आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं अपनी।
0: जी कैसे लग रही है बताइए, शूज?
1: बढ़िया सो लग रहा है।
0: अच्छा शुक्रिया, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम सुनवा दीजिए, आज फिल्म का नाम है तेरे नाम का, टाइटल सॉन्ग ही है।
0: अच्छा टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं, ओके।
1: जी जी मैम,
0: तो सुनवाते हैं ये गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: ठीक है मैम।
0: या थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं टाइटल ट्रैक तेरे नाम मूवी का, और बहुत ही प्यारा गाना है। उदित जी ने इस खूबसूरत गीत को गाया है। मैं बस लौट कर आती हूँ, आप कॉल लगाती रहिएगा, एंड अभी फ़िलहाल इस गाने को भी इंजॉय करो और फ़ोन भी लगाते रहो, है ना, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो अप्लाई करो और सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज। टाइटल ट्रैक आपने एंजॉय किया तेरी नाम। और इस खूबसूरत गीत को लिखा था समीर जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी। और साथ में बड़ी खूबसूरत सी पिक्चराइजेशन किया गया इस ट्रैक पर। पिक्चराइजेशन था सलमान खान साथ में भूमिका चावला जी पर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं नीरज कुमार जी आप?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी जय माता रानी।
0: जय माता दी। बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आज लिख रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, किनको देखकर लिख रहे हैं आप गजलें? हाँ जी सर। अच्छा, गाना सुनना चाहते हैं आप ये ना?
1: जी
0: ठीक है, हम सुनवा देते हैं आपको। आप शर्माइए मत और एंजॉय कीजिएगा ये ब्यूटीफुल ट्रैक। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। एंड खुशी वापस आती है, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है कुमार सानू जी की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। बात कहते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं भी आदाब।
0: आपको भी आदाब, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम के मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपकी? सब
1: मैम हाल चाल एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा कहाँ पर हैं आप?
1: मैम मैं इस टाइम आपसे गुड़गांव से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कभी गुड़गांव कभी रामपुर, फटाफट से पहुँच जाते हो आप?
1: जी मैम, बस 4-5 घंटे का सफर होता है ये, तो जब मन करता है गुड़गांव हो जाते हैं, जब मन करता है घर चले जाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइएगा कैसे चल रहा है आपका बिजनेस?
1: मैम बिजनेस ठीक चल रहा है, इस टाइम थोड़ा हल्का चल रहा है, इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी, नवरात्रि चल रहे हैं राइट।
1: हाँ तो इस टाइम पर थोड़ा हल्का चलता है मैम।
0: ओके, तो बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम एक सॉन्ग है, रातों में नींद है
0: अच्छा
1: ना दिल में करार है, कि ये सॉन्ग है मैम, ये सॉन्ग सुनवा देना। ये सॉन्ग किसी स्पेशल पर्सन के लिए है,
0: ओके,
1: उन पर ये बिल्कुल फिट बैठता।
0: अरे वाह, क्या बात है
1: जी मैम। और सुनने वाले मेरे साथ में,
0: हाँ जी बताइएगा।
1: सबसे पहले लायबा काजमी, मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीस रहमान और मोहम्मद इशरत, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये शानदार से गाना, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है खुशी के साथ और सुनते रहना है हेलो फरमाइश। आप भी कॉल लगाइएगा, आपका ट्रैक भी यहाँ पर हम प्ले करेंगे, बस बेफिक्र होकर आप कॉल लगाइए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद

0: अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम हेलो फरमाइश है और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। देखिए वक्त हुआ है 4:07, नहीं पता चल रहा है ना समय का, कैसे घंटे कंप्लीट हो गए। ऐसा ही होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं और अपना फेवरेट कार्यक्रम सुन रहे होते हैं। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी, जय माता दी।
1: दीदी मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी, आपको भी प्रणाम, कैसे हैं आप? जय माता दी सर।
1: जी दीदी,
0: मैंने कहा जय माता दी।
1: दीदी आवाज आपकी कुछ कट कट।
0: ओ हो हो, हमने कहा आपको जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।
1: जी दीदी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी सुनने वाले श्रोता और बहनों भाइयों को भी
0: जी
1: नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी
0: बताइएगा सर, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी आप सुना दीजिए, जय माँ वैष्णो देवी फिल्म का गीत है लेके पूजा की थाली, और सभी दोस्तों को डेडिकेट रहे जो लाइव सुन रहे हैं अभी, और आपको भी दीदी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद दीदी
0: जी। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जय माँ वैष्णो देवी, लेके पूजा की थाली, जोत मन में जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। बहुत प्यारा ये भजन है। मैं बस वापस आती हूँ इस ब्यूटीफुल भजन के उस पार। आप कहीं मचाई मुझे कॉल जल्दी जल्दी से लगाइएगा, आपका कॉल लग जाएगा। बस आप शिद्दत के साथ ट्राई करो।

0: सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी जय माँ वैष्णो देवी। और हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरें। और चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, कहते हैं कि आज नजर को एक नजर की तलाश है, हर नजर को एक नजर की तलाश है, आपके चेहरे में कुछ तो खास है, आपसे दोस्ती हम यूं ही नहीं कर बैठे, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है।
0: अरे वाह।
1: गुड इवनिंग जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: निखत फातिमा जी, आपने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। हाँ जी
1: कोई नहीं जी, कभी आप आगे कभी हम आगे।
0: हाँ वही हम बोल रहे हैं कि बिना सांस लिए लड़की ने एक साथ सब कुछ बोल दिया। बताइएगा डियर, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी थी, आप कैसी और वहाँ पे सभी कैसे हैं?
0: यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब खैरियत से हैं?
1: हाँ जी, यहाँ पे सभी खैरियत से हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है निखत, और आपने जो ये लाइनें बोली है ना, सच में बहुत प्यारी थी। थैंक यू।
1: साथी के लिए ना, जितनी प्यारी आप हो उतनी ही प्यारी लाइनें आपके लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और उतनी ही प्यारी आप भी हैं, और आपने जिस ब्यूटीफुल अंदाज में इस लाइनों को पेश किया मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
1: थैंक यू जी।
0: अच्छा बताओ आज क्या सुनोगी आप?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी, जरा देख मेरा दीवानापन के तेरे बिना कहीं दिल ना लगे।
0: हाँ दीवानगी तो आपकी हम देख ही रहे हैं, एंड आप इतनी शिद्दत के साथ कॉल लगाते हैं, और हर एक शो में आप पार्टिसिपेट करती हैं।
1: हाँ जी मैं जुड़ी रहती हूँ
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया निखत, तो ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
1: हाँ जी मैं जाते जाते कुछ कहूँगी।
0: जी बिल्कुल कहिएगा मोहतरमा।
1: मेरी हर खुशी हर बात तुम्हारी है, मेरी हर खुशी हर बात तुम्हारी है, सांसों में छुपी है सांस तुम्हारी है, दो पल भी नहीं रह सकते हम तुम्हारे बिन, धड़कनों से धड़कती हर आवाज तुम्हारी है।
0: अरे मैं भारी जावा भाई क्या करोगी निखत आज?
1: कुछ नहीं जी, आपके पास आगे करेंगे जो भी करेंगे।
0: निखत निखत एक बार फिर से प्लीज ये लाइनें रिपीट कीजिएगा।
1: ओके जी। मेरी हर खुशी हर बात तुम्हारी है, मेरी हर खुशी हर बात तुम्हारी है, सांसों में छुपी ये सांस तुम्हारी है, दो पल भी नहीं रह सकते तुम्हारे बिन, धड़कनों से धड़कती हर आवाज तुम्हारी है।
0: वाओ बहुत ही अच्छा लगे हमें, आपने हमें ये शायरी सुनाई, इसके लिए शुक्रिया।
1: ओके जी थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो एंजॉय कीजिएगा ये ब्यूटीफुल ट्रैक। बाय, टेक केयर, लवली टॉकिंग टू यू। हाँ हाँ करा दीजिएगा।
1: आज देखो मम्मी कैसी बात करती है, पहली
0: बार। अरे मम्मी तो मम्मी होती हैं यार।
1: करो। हेलो
0: हेलो, सलाम आंटी जी, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम सलाम। मेरा फ्लाइट है, मेरा दुश्मन के मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
0: अरे वाह क्या बात है, सही बात बोली है आपने, मेरा दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला। जब ऊपर वाला साथ होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता
0: जी। और सब ठीक है मैम?
1: हाँ सब सही है, बात करेगा ना मुझसे भी?
0: हाँ बिल्कुल, अरे आपसे बात नहीं करेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, अब आपसे भी बात किया करेंगे। ठीक है
1: ठीक है,
0: शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप कहीं मत जाइए और मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक जी और साथ में सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज में, जरा देख मेरा दीवानापन। और अभी बात कर लेते हैं हम अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, कैसे हैं मैम
0: जी? बहुत ही अच्छे हैं सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आपका सब सुन के और भी अच्छे हो जाते हैं
0: जी। शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मैम बीकानपुर मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: ओके, बताइएगा सर आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम सॉन्ग है ये दिल आशिकाना मूवी का, अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी क्या सूरत तूने बनाई।
0: ओके,
1: हैरान है सारी खुदाई।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको।
1: मैम
0: जी आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया सर।
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए विवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर मैं वापस आती हूँ। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल आशिकाना। और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:30। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: आदाब मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम लतीफ अहमद रेहना, मैं कश्मीर सोना मार्ग से।
0: आप इतने धीरे बात क्यों कर रहे हैं? अभी शाम की चाय नहीं पी है आपने?
1: नहीं, ये शाम की चाय तो पी ली है मैडम, मगर यहाँ पे इतना बारिश आ रहा है मैडम।
0: अच्छा, अभी बारिश हो रही है वहाँ पर?
1: हाँ, 2 बजे से लेके अभी तक इतना मैं कम्बल में बैठा हूँ,
0: अच्छा ओके। आपको सर्दी लगने लगी है तो आप ब्लैंकेट में बैठे हैं?
1: हाँ, मैं तो कम्बल में बैठने लगा क्योंकि बाहर ठंड है इतना।
0: हाँ जी, हाँ जी, बारिश होने के बाद मौसम चेंज हो जाता है ऐसे। और वैसे भी आपके साइड का मौसम तो यू नो ठंडा रहता ही है, चल रहता है उधर का वेदर?
1: हाँ, यहाँ पे रहता है ज्यादा, मौसम तो ठंडा ही रहता है,
0: हाँ
1: कभी कभी तो गर्मी रहता है दिन भर।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब बताइएगा, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जिनका नाम है मुकद्दर का सिकंदर, किशोर कुमार की आवाज।
0: कौन सा गाना सुनना है?
1: कोई भी गाना चला, आपकी पसंद है, जो आप चुनेगा वो मुझे भी पसंद है।
0: अच्छा, जो हम चुनेंगे वो गाना आपको भी पसंद है?
1: हाँ, हमें भी वो पसंद है।
0: ठीक है, तो हम आपको गाना सुनवाते हैं फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना। और उस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा हीरा मुझे मिल जाए।
1: हाँ, ये वाला चलाइए,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छा।
0: ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिएगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी और साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़। और ये खूबसूरत सा गाना आप सुनिएगा।

0: तो ये सुना आपने शानदार गाना एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी यहाँ पर है और शो का नाम तो आपको मालूम ही है ना, ये फोन इन कार्यक्रम है हेलो फरमाइश। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं और अपने सफर को सुहाना बना सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हेलो, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जीतू सिंह चौहान है मैम।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, सब्जी मंडी मंजोला से।
0: जी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सब।
1: सेम टू यू मैम।
0: जी बताइएगा।
1: जय
0: माता दी, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: वेलकम मूवी का सॉन्ग सुनना है मैम।
0: अच्छा, वेलकम मूवी का, ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको आपका फेवरेट गाना। ओके जी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत से गाना फ्रॉम द मूवी वेलकम से। बहुत ही शानदार ट्रैक है, आप भी इंजॉय करो, हम सब इंजॉय करते हैं।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। और श्रोताओं, मैं आपको वक्त बता देती हूँ, समय हुआ है 4:47। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: जय माता दी।
1: जय माता दी। नमस्कार जी।
0: आपको भी नमस्कार सर।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई आपको।
0: सेम टू यू सर, आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नाम बताइएगा।
1: मैम, मैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से विजय राठौर बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप और आपके सब टीम मेंबर्स कैसे हैं?
1: सब लोग अच्छे हैं, सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे थे
0: जी।
1: और ये हमारे जुनेद भाई हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, बोले खुशी जी की आवाज बहुत अच्छी
0: है। शुक्रिया। बहुत अच्छा किया आपने सर। जी बताइएगा, आज आपका कौन सा गाना सुनने का मन है, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आज मैम भजन सुनवा दीजिए, जब ये नवरात्र चल ही रहे हैं तो।
0: हाँ जी, नवरात्रि स्पेशल।
1: अवतार अवतार मूवी का गीत है वो, चलो बुलावा आया है,
0: माता ने बुलाया है।
1: जी, माता ने बुलाया।
0: प्रेम से बोलो,
1: जय माता दी।
0: सारे बोलो जय माता दी। ठीक है सर, सुनवाती हूँ प्यारा सा गाना आपको। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: ओके मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी अवतार से, जो 1983 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाए नरेंद्र चंचल जी ने। तो मिलकर आनंद लेते हैं और उसके बाद खुशी फिर से लौट कर आती है।

0: बिना नहीं। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा अभी गाना आपने एंजॉय किया और अजहर अब्बास जी की खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों मुझे दीजिएगा अब जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और जाते जाते बस खुशी यही कहना चाहती है कि आपको शरदी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के दुखों को दूर करें और आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सारी खुशियां आ जाए और जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी। मैं मुलाकात करूंगी आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग दोस्तों।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: मुरादाबाद अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बाजे हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। समय की बात की जाए तो 5:09 हो चुके हैं और आज की तारीख 13 अक्टूबर। इस शो में हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। और भैया अब सच बताऊं तो तैयारियां चल रही होगी ना। हाँ, थोड़ी देर में पूजा वूजा करनी है और फिर प्रसाद भी तो हमें बनाना है ना। बस घर में देखे जब नवरात्रि आती है ना तो एक अलग ही माहौल, पॉजिटिव वाइब वाला माहौल आ जाता है। और साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज का स्पेशल डे क्या है, क्या खास डे मनाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में बात करेंगे। मुरादाबाद के बारे में बात करेंगे। देखिए शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि हर इंसान यही सोचता है कि चलो यार पूरे दिन तो धूप के वजह से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन शाम को जब वेदर हल्का हल्का ठंडा हो जाता है तब सोचते हैं कि चलो अब बाहर घूम लेंगे और अच्छा रहेगा। तो आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और पार्क का आपको इंतज़ार है तो आप बिल्कुल सही स्टेशन पर कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते घूमने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से बंद था। सो ढेर सारी बातें करने वाले हैं आज की शाम। बस चाय के चुस्कियों के साथ रेडियो खोल कर बैठ जाइए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट होइए रात में, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं भैया ढेर सारी बातें। और गाने तो भैया होते ही आपके लाजवाब वाले, तो बस अर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए और गाना सुनते रहिए। फिलहाल एक शानदार गाना उड़ी, उड़ी, उड़ी। और ये गाना सच बताऊं वाकई में बहुत अच्छा है। ये गाना अक्सर हमने पिंक वाला जो छोटा वाला फोन आता है ना, चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया, है ना। आई होप कि आप सभी ने ये वाला जो छोटा वाला फोन है यूज भी किया होगा और मेले में भी मिलती है ये फोन अभी भी। तो आप बता सकते भैया किन किन ने पिंक वाला जो छोटा वाला फोन है यूज किया है, जो कि चल छैया छैया छैया छैया गाना आप सुनते थे। जल्दी मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया, इस गाने को सुनकर ना पिंक वाली फोन की नहीं याद आ जाती है। हर किसी को अपना बचपन याद आ जाता है, और साथ ही साथ जब भी मेले में जाते थे ना तो ये फोन दिखते ही ना हम ये फोन जरूर खरीदते थे और सभी को कहते थे ये मेरा फोन है। और हम वैसे ही जब खेल

होते थे ना, तो चलो यार कहीं पे कॉल करते हैं, मम्मी को कॉल करते हैं, वैसे ही कॉल मिलाते थे, हालांकि उससे कॉल लगती नहीं भैया। और आप आर्शोरीना के साथ कनेक्ट हो। दूसरे समय की बात करूँ तो 5:18 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक अपडेट के बारे में। बहुत से अभी तैयारियां चल रही होंगी ना भैया, हाँ रंगे रिवाज में आज जाना है भैया, आज डांडिया नाइट जो है, जो 13 और 14 को होने वाला था इवेंट, तो अपा तो कल मिलेंगे, आज तो नहीं मिल पाएंगे हम। तो बहुत सभी तैयार हो रहे होंगे, पार्लर की बुकिंग करनी कर रखी होगी, और बहुत से बोलते कि नहीं नहीं भैया पार्लर नहीं, हम तो घर ही तैयार हो जाएंगे, जैसे भी होना एकदम कड़ाके वाले तैयार हो जाएंगे हम घर ही। तो आप सभी की तैयारियां चल रही होगी, बाकी जो आप सभी अभी ट्रैफिक में हैं और यही सोच रहे हैं कि भैया घर पहुंच कर हमें भी तो डांडिया नाइट में जाना है ना, गरबा नाइट में तो जाना है ना, इंजॉय तो करना है ना, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सड़क के साथ सावधानी बरतनी आपको बहुत ज़रूरी है। और सावधानी क्यों बरतनी ज़रूरी है, देखिए हॉर्न आपने बार बार नहीं बजानी है, क्योंकि हॉर्न कानों को ना थोड़ा परेशान कर देता है और आप खुद भी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना है। पेशेंस के साथ आपने गाड़ी चलानी है, रॉन्ग साइड में बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी है, हेलमेट और सीट बेल्ट आपने अवश्य पहनना है आप, क्योंकि आप साफ साफ कैमरे के निगरानी में होते हैं, चाहे आपको कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन आप वाकई में कैमरे की निगरानी में तो है ही, इसीलिए अपना ध्यान रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनिए और जहां भी जाना चाहते हैं पेशेंस के साथ जाइए, बिल्कुल ट्रैफिक नियमों का आपने पालन करना है और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहना है और सुनते रहना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। जय माता दी। और समय की बात की जाए तो 5:31 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ कनेक्ट है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं वेदर अपडेट की तो आज अपने मुरादाबाद का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बाहर की धूप भैया तेज तो है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट निकल कर आई है कि आज 13 अक्टूबर को देश के 23 राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। यानी कि आज कहां कहां बारिश आने वाली है उसके बारे में हम बात आपसे ज़रूर करेंगे। तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये बारिश आने वाली है उत्तर भारत, दिल्ली NCR, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य एवं पश्चिमी भारत में ये बारिश छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में आज और बारिश आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ तेज हवाओं की बात की जाए तो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तेज हवाएं चलने वाली हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा संभल के रहिए। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में भी भैया लैंडस्लाइड की बात बताई जा रही है कि खतरा की संभावना जताई जा रही है, भूकंप की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस चीज़ ने अपने पूरा ध्यान रखना है अगर आप इस इलाके से हैं, क्योंकि 23 राज्यों में बारिश की संभावना जता दी गई है। और बस अपने अपना ध्यान रखना है। और इस मौसम में खासकर एक चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि जब भी आप गीले हो जाते हैं तो घर जाकर कपड़ा अपने जो पहना है उसको जल्दी कोशिश करिए चेंज करने के लिए। साथ ही साथ जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, नाली का पानी सड़कों तक पहुँच जाता है, तो कोशिश करिए कि आप उसमें नंगे पाँव ना चले। अदरवाइज आप ऐसा करते हैं तो हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है। और ख़ासकर उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिनके पैर में कटा फटा अगर कहीं पे खरोच आ गई है, कट गया है, घाव लग गई है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उस पैर को पानी में रखते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आप तक पहुँच सकती है। सो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना है, बुजुर्ग को भी ध्यान रखना है आपने। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं मुरादाबाद के बारे में, जो कि पार्क के बारे में क्या अपडेट बताया जा रहा है वो भी मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक सुनते हैं प्यारे प्यारे गाने।

प्यार क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फ्रॉम मूवी की बात की जाए तो आ अब लौट चले, और गाने की बात की जाए तो उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया। साथ ही साथ जसपिंदर नरूला जी भी इसमें, भैया तीनों सिंगर है ना, जब तीन सिंगर एक गाने के साथ साथ बवाल मचाते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग ही होती है, एक अलग ही रौनक, एक अलग ही वाइब हो जाता है गाने के अंदर जो सुन

0: हम पार्क जाते हैं, पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं, शाम होने के बाद पार्क में जाके बड़ा ही सुकून मिलता है। घूमते हैं, वॉक करते हैं, खेलते हैं, झूला झूलते हैं और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर बात करते हैं। पूरे दिन का जो भड़ास होता है ना, वहाँ पर जाकर निकालते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं। तो पार्क ना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो शाम को कुछ हो ना हो लेकिन वो अपनी तरफ आकर्षित आपको कर ही लेता है कि आइए हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब फाइनली मुरादाबाद वालों, आपका इंतज़ार है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हर्बल पार्क और अम्बेडकर पार्क बहुत जल्द ओपन कर दिया जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और एक साथ जब आपको बहुत सारे पार्क में सब दिखते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि जो घर से अकेले रहते हैं या घर में अकेले रहते हैं ना, वो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा पब्लिक दिखे अपने आसपास। तो पार्क में ही आपको पब्लिक दिख सकती है पूरी और शुद्ध हवाओं के साथ। तो आप, आई नो, मुझे पता है कि आप रेडी हैं कि भैया जब खुले और तभी हम एंट्री मार दें उसमें, यानी कि घूमने चले जाए। तो आप जा सकते हैं बिल्कुल, जब ओपन हो जाएगा तो बिल्कुल आप जाइए, श्योर घूमिए, वहाँ पर बहुत आनंद आने वाला है आपको। और साथ ही साथ एक म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे। म्यूज़िकल ब्रेक लेने से भैया देखिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो जाता है और हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ श्रोता मैसेज करते हैं और उनको भी इंतज़ार होता है कि भैया कब हमारा मैसेज शामिल होएगा और हम अपना मैसेज खुद भी सुन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं भैया किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। जय माता दी। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि माता जी, रीना जी आपको हमेशा खुश रखे, आप हमेशा हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच और सेम टू यू, आप भी हमेशा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती रहें, माता रानी की कृपया है वो आपके ऊपर बरसती रहे। जय माता दी, जय माता दी। यानी कि आज चंद्र घंटा माँ की पूजा की जाती है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ पंकज जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि जो आपने डांडिया का गाना प्ले किया ना भाई साहब, सच में मज़ा आ गया है। वैसे भी हम शाम को मिलने वाले रंगे रिवाज में, तो देखिए जी हम तो नहीं आने वाले आज। हम मिलेंगे कल आपको। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ पूजा जी कनेक्ट होती हैं, और इनका भी कहना है कि आज ही आ जाइए, आप भी कल क्यों आ रही है, आज तो हम सब आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली कुछ काम हो गया तो इसलिए नहीं आ पाएंगे, ऑफिस का भी तो काम होता है जी। आप जाइए, बहुत अच्छा वहाँ पर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आज पूरा म्यूज़िक का होने वाला है, भक्तिमय होने वाला है वहाँ पर, एकदम एक अलग ही वाइब, एक अलग ही अनुभूति होगी आपको वहां पर जाके। तो जाइए, आप सभी एंजॉय करिए और सुनते रहिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कम बैक करूंगी।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गज वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, आजा आजा पिया के बाजार में, हिमेश रेशमिया जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत गाना। साथ ही साथ पलक जी उनके साथ दे रही है। भैया पलक जी की आवाज़ की तो बात की जाए तो भैया उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं बचा है कि उनके लिए कुछ बोल दिया जाए, क्यों इतना शानदार वो गाती है। और जब वो गाती है तो हर कोई गाने में मग्न ही मग्न हो जाता है। फिलहाल समय की बात करूँ तो 53 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है। और आज की तारीख 13 अक्टूबर और साथ ही साथ दिवाली की तारीख, भैया बहुत नज़दीक तो नहीं है? अच्छा नज़दीक है, ओके। तो अब उनके लिए देखिए, जो घर से बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अब उनको ये सरकार भी यही चाहती है ना कि भैया फेस्टिवल पर कोई भी अपने घर से बेघर ना रहे, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हर कोई अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल एंजॉय करे। क्योंकि देखिए आप अकेले रह ले, लेकिन वो वाइब आपको नहीं आ पाती जो फैमिली के साथ आपको मज़ा आता है। तो सरकार भी यही चाहती है कि भैया आपको सुविधाएं मिलती रहे, और सुविधा इसलिए मिलेगी क्योंकि घर से बेघर ना रहे, आप सभी एक फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर आपने अभी तक रिजर्वेशन बुक नहीं किया है, अपना टिकट बुक नहीं किया है, आप जिस भी लोकेशन से हैं आप एक बार सर्च कर सकते हैं, आपको जहां भी जाना है कि इस रूट पर और भी ट्रेनें निकली हुई, तो आप वहां से अपना जो टिकट है कंफर्म कर सकते हैं और जिस डेट पर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल अपने घर जा सकते हैं, फैमिली वालों के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं। और देखिए बिहार की बात की जाए तो भैया छठ पूजा एक पावन पर्व होता है, और उसमें दिवाली में एक टाइम के लिए इंसान जाए ना जाए, लेकिन छठ पूजा पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप रोक कर दिखा दो, जाएंगे भैया, चाहे भीड़ हो चाहे छत पर बैठ के जानी पड़े, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो आप छत पर ना बैठिए, ट्रेन एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, हर रूट के लिए 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। तो आप उसको एक बार देखिए, सर्च करिए और टिकट बुक करिए और अपने घर के लिए रवाना हो जाइए, है ना। बहुत सुन होते भैया शॉपिंग कर ली होगी कि हमें हाँ दिवाली पर छठ पूजा पर ये कपड़े पहनने हैं, क्योंकि छठ पूजा पर ये कहा जाता है जो छठ पूजा की फेस्टिवल यानी कि त्योहार जो करती है उनको हर चीज वस्त्र नए पहनने होते हैं। तो अभी तक शॉपिंग आपकी नहीं हुई तो ज़रूर कर लीजिए, और बहुतों की शॉपिंग हो गई है भैया कि हाँ अब तो शॉपिंग हो गई, बहुत से निकल भी गए होंगे और बहुत अभी रेयर होंगे कि आराम से निकलेंगे, अभी हमारा टिकट का जो टाइम है वो अभी पास नहीं आया है। तो वेल आपका जर्नी बहुत अच्छा रहे और हैप्पी वंस अगेन आप सभी को। देखिए एडवांस में बोल देते हैं हैप्पी दिवाली, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल नवरात्रि चल रही है आपके घर, हर किसी घर माता रानी विराजमान है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि भी। और समय 5:55, चाय के चुस्कियों के साथ आई नो पूजा की तैयारियाँ चल रही है, लेकिन एक और गाना सुनवाएंगे बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद मैं कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ।

0: सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना हो, क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमीशनर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में
6: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
5: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

अब कैसे देख पाएंगे बताइए, बिन मौसम बारिश हो जाती है, जब देखे जब बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाती है, इसके चक्कर में क्या हो रहा है भैया? दिल पे छुरिया चलने से कम बाकी नहीं है। आप आर्जोरीना के साथ कनेक्टेड, समय की बात की जाए तो 6:10 हो चुके हैं और आज की तारीख 13 अक्टूबर। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, देखिए मौसम जब देखो जब खराब हो जाता है, बिन मौसम बारिश आ जाती है, इसके चलते अब सब्जियों का जो भैया रेट है ना, थोड़ा सा और आपको अप होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ दिवाली के फेस्टिवल पर कैंडल्स जो घर को रोशनी देता है वो भी आपको महंगे मिल सकते हैं। साथ ही साथ दिए मतलब देखिए, जब भी फेस्टिवल आता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया 1-2 रुपये 5 रुपये ना बढ़े। अरे बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, बढ़ेंगे ज़रूर चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ यानी कि जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मुरादाबाद से अगर आप कहीं जाना चाहते, क्या कहाँ जाना चाहते, कहाँ नहीं जाना चाहते, उस रूट पर कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो बस आपने स्टे ट्यून रहना है आर्जोरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल मैसेज की बात की जाए तो हेलो गुड इवनिंग, और बताओ हरियाणा वालों कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं विक्की सागर जी। विवेक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनके कहने क्या हाल है वरीना जी? बहुत बढ़िया है जी, आज पहली बार आपके शो में कनेक्ट हुआ हूँ, थैंक यू सो मच, आप कनेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि मैं वैसे बाहर रहता हूँ, अलग कंट्री में रहता हूँ, और अब मैं अपने घर पर आया हूँ और दिवाली के बाद ही जाऊँगा, तो अच्छा लग रहा है। और आज मैंने भी ऐप डाउनलोड कर लिया और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी आपका रेडियो ज़रूर सुनूंगा। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे, कहीं मत जाइए, आर्जेरिना के साथ कनेक्ट।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ जय माता दी। और समय की बात की जाए तो 6:20 हो चुके हैं और आज की तारीख 13 अक्टूबर। और आप आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है। और साथ ही साथ अपने मुरादाबाद की बात की जाए, अरे अरे थम जाइए, तरह रूट की बात करने वाले भैया, देख लीजिए, पता चले कि आप वहां से जाए और आपको टल लेना पड़ जाए, इसलिए रेडियो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुरादाबाद के यानी कि बात की जाए, देखिए अगर आप मुरादाबाद से बिजनौर या हरिद्वार जाने वाले हैं तो ये खबर साफ साफ आपके लिए है। मुरादाबाद के पास नूरपुर रेलवे स्टेशन के आस मतलब रूट पर मरम्मत यानी कि काम चल रही है, जिसके वजह से हरिद्वार और बिजनौर हाईवे पर ट्रैफिक का रास्ता रूट है वो बदल दिया गया है। अब वो कहां कहां से बदला है जानेंगे। यानी कि बिजनौर जाने वाले वाहनों को अमरोहा और गजरोला के रास्ते जा सकते हैं आप। इसके बाद अगर बात की जाए हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। फिलहाल यानी कि मुरादाबाद से बिजनौर के साइड हरिद्वार से आप जाने वाले तो वो रूट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसके वजह से काम चल रहा है। तो आप जब भी निकले तो एक बार सर्च जरूर कर ले, पता चले वहां पर जाके आपको टर्न लेना पड़ जाए और फिर रिटर्न आपको मुड़ कर जाना पड़े, इसलिए पहले कहीं जाए तो सर्च जरूर कर। और साथ ही साथ अब रूट में निकल चुके तो भैया अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी, अपने गाड़ी वाले जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना वो साथ जरूर लेकर रखना चाहिए। क्या पता कब आपको आपसे ये बोल दिया जाए, चेकआउट जब होता है तब ये बोल दिया जाए हाँ भाई गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये अपने साथ आपको रखनी चाहिए, ये कभी भी आपने अपने पास से दूर नहीं रखना चाहिए। अगर आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपके दिमाग में फोन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी याद जरूर आना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे जनगणना का, यानी कि दूसरा सीमा चरण है वो शुरू होने वाला है। कब से होने वाला है, कब से नहीं होने वाला है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चल डगरिया तो चलती ही है ना, वाले गाना तो हो जाए भैया, गाने के बिना तो मजा ही नहीं आता।

या चलो अलका याग्निक जी की आवाज में, साथ ही साथ उदित नारायण जी की आवाज में ये आपने गाना एंजॉय किया फ्रॉम मूवी चलते चलते। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं यानी कि समय की बात की जाए तो 6:27 हो चुके हैं। आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्तिष्को में। जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी। देखिए माता जी का नाम बोलना बहुत जरूरी है भैया। हाँ जी, अब ये

0: बताया जा रहा है कि यानी कि जनगणना का जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि 16 नवंबर से स्व गणना और 1 दिसंबर से घर घर जाकर गणना का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। और जो पूछने वाले सवाल है ना, अब की बार आपको वो अलग ही लेवल वाला पूछा जाएगा भैया सवाल, और आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनगणना में चार यानी कि बहुत सी चीजें आपको पूछी जाएगी। वही लव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े भी होंगे शामिल इसमें। बेघर लोगों की भी होगी गणना और जाति की जानकारी भी पूछे जाएंगे आपसे। नाम, धर्म, शिक्षा और रोजगार से जुड़े होंगे सवाल। आधार, मोबाइल, बैंक खाते और कोविड टीकाकरण की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी भैया। तो ये चीज ऐसी ऐसी अब की बार सवाले हैं जो बढ़ा दी गई है, जो कि आपने उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो आपको याद है कि कोविड का कब हुआ था शुरुआत, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने टीका लगवाया था पूरे डोज या देन अदरवाइज। बहुतों ने तो भैया नहीं लगवाएगी, हम नहीं लगवाएंगे, कर लो क्या करोगे तुम। तो भाई अब ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ कड़क सवाल तो मैं पूछना ही भूल गई, धत तेरी की। देखो इस चक्कर में ना मैं भी भूल गई आपको बताने के लिए। फिलहाल आपको बता दूँ यानी कि कल छोड़कर परसों 15 तारीख बनती है, और 15 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली है। कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं भैया, मज़ा आने वाला है। लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक। देखिए भैया ऐड का भी टाइम ना बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ऐड किधर से टपक जाता है बीच में। चलिए फिलहाल ऐड सुनेंगे, उसके बाद में कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। सो स्टे ट्यून्ड एफ एम मुरादाबाद 89.6।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: ठीक है देखा है कि सब अगाड़ा मिलेगा तुम्हें तो।

साज सजनी, आए हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कड़क क्वेश्चन। अब कड़क क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है आज नवरात्रि के तीसरे दिन। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कि माँ चंद्र घंटा किसके पुत्री थी। आपने हमें नाम बताना है उनका, यानी कि उनके पिताजी का नाम बताना है, किन की पुत्री थी वो उसका नाम बताना है आपने। नंबर है हमारा 9837896896 पर आप हमें नंबर मैसेज कर सकते हैं। राइट आंसर के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी। बस आज का हमारा क्वेश्चन यही है आप सभी से, और हर किसी घर में माता जी विराजमान हैं और नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा और मिल ही के जाएगा। आपको आई होप पता भी होगा कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी। बस उनके पिताश्री का आपने नाम बताना है। हमारे व्हाट्सएप आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज अपना भेज सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9837896896 कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी, सोचिए मैसेज करिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात की जाए मूवी की तो उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले उससे पहले एक ये गाना, जिनकी शादी भैया नवंबर में शुरू होने वाली है ना, उनको ये उनके लिए गाना रहेगा।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात की जाए तो 6:44 हो चुके हैं और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। जय माता दी। और आज का कड़क सवाल भी मैंने बहुत आसान वाला पूछा है भैया, देख लीजिए अब आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है, वरना सर्च तो करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ बात की जाए 15 अक्टूबर की हो तो 15 अक्टूबर को क्या स्पेशल होने वाले, अरे मैं बताती हूँ, मूवी देखने के दीवाने हैं, मुझे पता है। मूवी हमेशा सर्च करते रहते हैं कि भैया चलो आज कौन सी मूवी लगने वाली है, कौन सी मूवी इस महीने में लगने वाली है, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं हम। क्योंकि मूवी ऐसी होती है ना जिसके लिए हम कॉलेज के बंक भी मार लेते हैं, और कॉलेज के बंक आपको याद ही होगा ना। मुझे पता है याद होगा आपको कि जब भी भैया मूवी रिलीज होती थी ना तो दोस्तों के साथ बंक मार कर मूवी देखने जाते थे, घर वालों से झूठ बोल देते थे कि नहीं नहीं आज ना प्रैक्टिकल के पैसे चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे देना, और उस पैसे की हम क्या करते थे मूवी देख लेते थे क्या, और खाना पिज्जा बर्गर वगैरह खा लेते थे, है ना। तो बचपन के जो दिन होते हैं ना बड़े ही कमाल वाले होते हैं। तो बात की जाए यानी कि 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जेलर 2 मूवी, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है ये, बहुत ही शानदार मूवी है। और ये 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी जेलर मूवी। और आज का कड़क सवाल जो मैंने आप सभी से पूछा है कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और आपने हमें आंसर बताना है कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है, राइट आंसर के साथ आपने कनेक्ट हो जाना है कि माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।

हेलो जी, गर्ल वाली इवनिंग है आज रीना के साथ. आप कनेक्ट है. समय की बात करूँ तो 6:50 हो चुके हैं और आई होप कि आप सभी बहुत ही बिंदास, बेधड़क, मस्त होंगे और अपने घर की तरफ रवाना हो चुके होंगे. और साथ ही साथ ट्रैफिक देखकर घबरा मत जाइएगा कि ये क्या हुआ, मैं तो घर पहुंचने में लेट हो जाऊंगा. मतलब लगता है कि आरती कनेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. कोई बात नहीं, आप खुद जाके घर आरती कर लीजिएगा, लेकिन ट्रैफिक को थोड़ा पेशेंस के साथ आप गाड़ी चलाइए. हेलमेट, सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है. और साथ ही साथ देखिए, कहते हैं ना, छोटी चीजों से हमें बड़े की शुरुआत करनी होती है. यानी कि ये जो अपडेट सामने आई है तेलंगाना की, जिसने कहते हैं ना, इन सब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उन्होंने क्या किया, यानी कि 10 रुपए के जो सिक्के आते हैं, चिल्लर जिनको बोलते हैं हम, यानी कि जो 10 रुपए के सिक्के हैं, उन्होंने 1 लाख तक कलेक्ट करे. यानी कि जोड़ा उनको गुल्लक में डालकर कि भैया हमें 1 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं और स्कूटी खरीदना है. अब सोचिए, जब वो शोरूम में जाता है स्कूटी खरीदने के लिए और उनको दिखाता है कि भैया हमारे पास तो ये 10-10 रुपए वाले हैं, तो क्या आप ये ले सकते हैं स्कूटी खरीदना हमें. अब सोचिए, वो 10-10 रुपए के जो पैसे थे ना, उसको गिनने में कम से कम 2 घंटे लगे. मतलब कितना पेशेंस रखा होगा ना गिनने वालों ने भी, कि भैया एक एक पैसे 10-10 रुपए का गिनना तो बड़ा भारी पड़ जाता है ना. वैसे ही जब आप दो शॉप पे जाते हो, कहीं जाते हो, तब आपको 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए मिल जाता है, तो कहते हैं यार थोड़ा बड़ा वाला नोट दे दो, यार ये क्यों दे दिया आपने. लेकिन सुनो, उन्होंने 10-10 रुपए के पैसे इकट्ठे करे, 1 लाख तक कलेक्ट करा और जाके स्कूटी ली. इसीलिए कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो कोई भी चीज़ की शुरुआत एकदम बड़ी नहीं होती, छोटी सी शुरुआत की जाती है और एक दिन वो बड़ा रूप ले लेता है. इसी के साथ आज का कड़क सवाल हमने आपसे पूछा है कि माँ चंद्र घंटा की यानी कि पिताजी कौन थे, उनका नाम बताना है हमने. और क्योंकि अगली जो बारी है आप सभी के मैसेज की हैं और हमारा आज का कड़क क्वेश्चन जो आपने हमें बताना है मैसेज करके, नंबर है 9837896896 पर, कि माँ चंद्र घंटा के पिताजी कौन थे. माता चंद्र घंटा जी के पिताजी का नाम बताना है आपने. बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है. सोचिए और मैसेज करिए. एक गाना मैं आपको सुनवाती हूँ माता रानी का, ये बहुत प्यारा. सोचिए फूलों की किस्मत कितनी अच्छी होती है ना, कि वो डेली माता के चरण स्पर्श करते हैं और माता उनसे कितना प्यार करती है. इसीलिए दुनिया में, इस धरती पर एक एक चीज़ जो भगवान ने बनाई है ना, वो अनमोल है. ये गाना सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्चुअल में पसंद आएगा.

रेखा जी, ये गाना ना वाकई में बड़ा ही खूबसूरत है कि फूलों को भी किस्मत कितनी अच्छी है कि वो माँ के चरण डेली स्पर्श करते हैं। तो किस्मत अपनी ऐसे बनाओ कि माता रानी आपको अपने दरबार में हमेशा बुलाती रहे। और इस टाइम वैष्णो देवी यानी कि कटरा जम्मू कश्मीर में एक दिन की अगर मैं बात करूँ तो 1-1 लाख श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सोचिए नवरात्रि में भी, भैया नवरात्रि के टाइम में वैसे भी वहाँ का जो वाइब होता है ना, और दिन तो होता ही अच्छा लेकिन नवरात्रि में और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सजावटी आय हाय, देख के भी आपका दिल ये नहीं करेगा कि भैया यहाँ से निकल लो, आपका मन यही करेगा भाई माता रानी यहीं रख ले, जन्म जन्म तक के लिए हमें यहीं रख ले, कुछ मत करवाना, बस तेरे दरबार में ही रहेंगे, इतना अच्छा नज़ारा होता है वहाँ का। तो चलिए, आज मैंने आप सभी से एक बहुत ही प्यारा कड़क क्वेश्चन पूछा है। अगर आप देखिए माता के भक्त है तो आई नो कि आपने ये आंसर अवश्य आपको मिल गया होगा, क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, माँ चंद्र घंटा किसकी पुत्री थी। चलिए अब देखते हैं किनका हमारे पास राइट आंसर आता है। भैया कोमल शर्मा जी कनेक्ट होती हैं, पर्वत राज हिमालय राज की पुत्री थी माँ चंद्र घंटा। अगले मैसेज की बात की जाए तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप। और इनका कहना है कि पर्वत राज हिमालय की राजा हिम्बा और रानी मैनावती की पुत्री थी माँ चंद्र घंटा। ओके जी, इन्होंने पूरे डिटेल में बता दिया।

0: रितु यादव जी भी राइट आंसर के साथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं।
1: जग घूमे
0: प्रकाश नगर से ये कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात लिखते हैं गली नंबर 2 से भी। ओके अगले मैसेज की बात की जाए तो अंकुर जी हमारे साथ राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अगली मैसेज की बात करो तो शेफाली जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से। इनका कहना है कि भैया ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ गायत्री जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से राइट आंसर के साथ। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे जी सेम टाइम सेम जगह। और वंस अगेन आप सभी को कोमल शर्मा जी ने राइट आंसर दिया था तो आप सबसे पहले यानी कि बनती हैं हमारे शो के विनर। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत।
1: बारिशों के मौसम
0: एक और मैसेज आ गया हमारे पास। माता चंद्र घंटा जी के पिता का नाम हिमालय राज था। ओके
1: आती है वो लाली।
0: रोहित राणा जी अलीगढ़ से कनेक्ट होते हैं। अलीगढ़ में अलीगढ़ का रेडियो भी हम अच्छा ये तो मतलब हम मैंने वहाँ पे काम किया है। मेरा कहने का मतलब ये है जब भी हम काम करते हैं ना जहाँ पे और उस जगह का नाम आता है ना तो एकदम वाइब वही हमें कनेक्ट कर लेती है अलीगढ़ में
1: है।
0: तो वहाँ का ताला बड़ा ही फेमस है। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाजत। आपको हम मिलेंगे कल। अभी के लिए बाय टाटा टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और माता रानी जी की आपके ऊपर कृपया बरसती रहे। बोले एक बार दिल से बोलिए जय माता दी। चलिए फिलहाल न्यूज सुनते हैं और इसी के साथ बाय।
2: चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे।
3: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हवलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
4: है। योर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
8: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है, नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है, नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है।
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है।
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत मुहूर्त विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एक जगह सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीजें, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सीबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा।
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
4: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
3: सही
4: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
3: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
4: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
4: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
3: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
4: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे हो, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
3: सो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
4: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
3: सुना सकती है, बिल्कुल
4: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
3: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
4: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। जो रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है, अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
3: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
4: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये भारत में, कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है। इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको वो सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
3: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
4: अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पर बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
3: या नहीं है।
4: तो मुख्यतः ये 5 रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग।
3: अंत में सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
4: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ,
3: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
4: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
3: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
4: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानत उपाधि मिली हुई।
5: वैसे
4: बाइक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है, और आई एम परसुइंग एलएलएम।
3: एलएलएम तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
4: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
3: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
4: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
3: ओके।
4: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल इथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
3: बिल्कुल क्या बात,
4: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
3: बिल्कुल।
4: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
3: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
4: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
3: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
4: मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
4: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
4: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जिंदगी वो गाना ना जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
3: बिल्कुल।
4: तो बस यही लाइफ है
3: सर, किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल। किताबें ही आपकी।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: आज आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डा से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कई बस डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाले 13 नए मॉनिटरिंग स्टेशंस का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और प्रदूषण पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकी की जानकारी भी ली।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि दिल्ली वासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिले और राजधानी को स्वच्छ और सतत बनाने के लक्ष्य को गति मिले। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की दिशा में कदम बढ़ाया है।
6: दिल्ली को रियल टाइम मॉनिटरिंग की तरफ जिस तरीके से बढ़ाया, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से ये पूरी दिल्ली ने देखा, जो आज तक दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। और आज 13 और नए CAQM सेंटर्स को उद्घाटन करके हमने दिल्ली के पूरे हर कोने से अपने AQI मॉनिटरिंग को रियल टाइम मॉनिटरिंग में तब्दील करने का एक नया स्टेप लिया है।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए परिवहन निगरानी और बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं पर एक साथ काम कर रही है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर लगभग 5238 हो गई है। नई बसें वातानुकूलित और लो फ्लोर हैं। इनमें CCTV कैमरे, पैनिक बटन, रियल टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आनंद विहार ISBT, नंद नगरी, रोहिणी सेक्टर 37, नांगलोई और केशवपुर डिपो में 5 सार्वजनिक EV चार्जिंग

0: स्टेशन शुरू किए गए हैं। आनंद विहार स्टेशन पर 240 किलोवाट क्षमता के 8 और 60 किलोवाट के 2 चार्जर लगाए गए हैं। वहीं बिजली की आपूर्ति के लिए 1600 केवीए क्षमता का सब स्टेशन भी बनाया गया है। अन्य 4 स्थानों पर 240 किलोवाट क्षमता के 4-4 चार्जर और जरूरी बिजली व्यवस्था भी की गई है। वहीं दिल्ली में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के जरिए 24 घंटे प्रदूषण पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए AI आधारित कैमरों, रियल टाइम डेटा और मैकेनिकल रोड स्वीपर्स की GPS ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया। साथ ही 13 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का भी उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख प्रदूषण केंद्र पर 11 कार्य बिंदुओं को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण केंद्र पर वायु गुणवत्ता में आए सुधार का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जो 30 अगस्त को 430 था आज घटकर 92 हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक और CNG बसों के संयुक्त बेड़े को बढ़ाकर 5500 से अधिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार्जिंग अवसंरचना स्थापित की है और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सर्वोदय कन्या विद्यालय में विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 की छात्राओं को 471 साइकिलें वितरित की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में विकसित की गई आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में अटूट आत्मविश्वास को विकसित करना है ताकि वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के अंकों तक सीमित न रहें बल्कि उनमें विषयों की समझ, व्यावहारिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीखने की क्षमता भी विकसित हो। श्री सूद ने विद्यार्थियों को राष्ट्र के भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, अनुभवात्मक शिक्षा और करियर काउंसलिंग केंद्रों का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
2: आज इन स्कूलों में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी आ गई है, ICT लैब बन गई है और क्रोम बुक्स उपलब्ध कराई जा रही है, लैंग्वेज लैब उपलब्ध कराई गई है, इस सबसे इन सबके शिक्षा के स्तर में बहुत परिवर्तन आ रहा है।
1: उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान, विदेशी और भारतीय भाषाएं सीखने के अवसर भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के राजनैतिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1952-53 में जम्मू कश्मीर में लागू विशेष संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध उनका आंदोलन राष्ट्रीय एकता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्होंने विद्यार्थियों से भारत के संवैधानिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करने और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में पशुपालन और डेयरी विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की। ये वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए DBIM वर्जन 3.0 के अनुसार बनाई गई है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये वेबसाइट विभाग की डिजिटल मौजूदगी को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दूसरे जाम साहेब स्मृति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2024 में पोलैंड यात्रा के दौरान घोषित एक द्विपक्षीय पहल है। इस पहल के अंतर्गत हर साल पोलैंड के 20 युवाओं को भारत आने का अवसर दिया जाता है, जिससे सांस्कृतिक संबंधों, विचारों और साझा इतिहास का आदान प्रदान किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के मिशन के अनुरूप NDMC राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट।
3: चहल ने बताया कि NDMC क्षेत्र में संसद भवन, प्रमुख सरकारी कार्यालयों, विभिन्न देशों के दूतावासों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के स्थित होने के कारण यहां स्वच्छता बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि NDMC ने प्रभावित क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती में लगभग 50% की वृद्धि की है, ताकि कचरे का समय पर निस्तारण हो सके और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। श्री चहल ने अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए नागरिकों से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने और कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। श्री चहल ने NDMC के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सफाई कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उनका प्रयास टीम भावना और जनसेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण है। अभियान में NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज धूल और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन, पानी के छिड़काव और तेज धार से सफाई करने की व्यवस्था से लैस 12 नए बहुउद्देशीय ट्रक माउंटेड वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
4: इस अवसर पर महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम आधुनिक मशीनरी के उपयोग के माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह पहल राजधानी में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि ये 12 बहुउद्देशीय वाहन वायु में मौजूद धूल के कणों को नियंत्रित करने, सड़कों को स्वच्छ रखने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ये नए बहुउद्देशीय ट्रक माउंटेड वाहन 7000 लीटर क्षमता वाला पानी का टैंक है। ये वाहन धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने, शहर के पर्यावरण में सुधार लाने और विभिन्न नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत, स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
1: अखिल भारतीय व्यापारी संघ कैट ने UPI लेन देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR शुल्क को स्थगित करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। कैट ने कहा है कि त्योहारी और विवाह सीजन के दौरान ये निर्णय समय अनुकूल भी है और व्यावहारिक भी। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों और दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। भवन निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से निगम के सभी 12 क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम ने भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 23 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की और 7 संपत्तियों को सील भी किया। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज नगर निगम के हर वार्ड में महिला पार्क विकसित करने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में सत्या शर्मा ने अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुकूल वातावरण में सुबह शाम सैर करने और समय बिताने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डा से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सर्वोदय कन्या विद्यालय में विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 471 साइकिलें वितरित की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दूसरे जाम साहेब स्मृति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात की और एनडीएमसी ने आज नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।

0: मुरादाबाद कैसे हो सर? हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: थोड़ा सा बता दो यार अपने बारे में। बड़ा एकदम स्वैग वैग में आए हो आप, ऐसे रहते हो क्या हमेशा?
1: बिल्कुल,
0: दैट्स लवली यार।
1: मेरा काम है तो मेरे फील्ड ऑफ थोड़ा
0: आई नो
1: रहना पड़ता है,
0: क्रिएटिविटी वाले लोगों के साथ थोड़ा सा होता है। क्या थोड़ा सा अपने बारे में बता दें यार?
1: आई एम कांते, मैं वैसे लोकल यहाँ का हूँ, सिंगर हूँ। बाकी मैं दिल्ली बेस्ड और बैंगलोर मुंबई, मतलब मैं ऑल ओवर पैन इंडिया काम करता हूँ। बाकी मेरे जो शो रहते हैं वो बेसिक रहते हैं बॉलीवुड सूफी। एंड अभी जो मैंने उतरा हूँ मैं मार्केट में, फर्स्ट टाइम ही मेरा भजन जैमिंग का जो मैं शो ला रहा हूँ, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट आ रहा हूँ। तो मेरे शोज बैक टू बैक इसके आते रहते हैं। और आप जैसे मुझे बताया आपको आरजे हमारे भाई ने कि एक कल एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, तो उसके लिए वो आपको अभी बताएंगे।
0: अभी तो डेमो कर रहे हैं।
1: हाँ, अभी डेमो कर रहे
0: हैं। हाँ, अभी तो मतलब जो कल आप वहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा सिनारियो भी पता लगेगा क्या होने वाला है एक्चुअल। एंड गिटार पे हमारे साथ भैया मौजूद है, प्लीज यार अपने बारे में बता दो थोड़ा, क्या नाम है आपका, मुरादाबाद में कहाँ से हो? आयुष भाई आप बहुत कम बोलते हो या फिर आज ही थोड़ा सा? अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आयुष भी मुरादाबाद से हो, बहुत बढ़िया। तो आयुष एंड कांता भाई स्टूडियो में है और आज ये आपके लिए कुछ स्पेशल म्यूजिकल जर्नी जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, आई मीन जो हमारी बात होगी वो भी म्यूजिक में होगी। तो शुरू करें दादा, चलो ठीक है। तो अभी आप क्या सुनाने वाले हो मुरादाबाद की जनता को, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे
1: हैं? ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भजन है।
0: हाँ,
1: ये सबने सुना होगा, अच्युतम केशवम, बहुत ही प्यारा भजन,
0: बहुत ही प्यारा।
1: मैं इसे करता हूँ शुरुआत,
0: प्लीज यार। श्योर, सो मोस्ट वेलकम। और गाइस आप भी मैं जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: माहौल ही बना दिया राधे राधे भाई साहब आपको तो यार आपने तो मतलब कमाल कर दिया, इतना बढ़िया आपने गाया, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, बस मुरादाबाद की जनता भी आपकी आवाज में डूब गई होगी, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना अच्छा आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, कहाँ से इतना अच्छा आपको आया?
1: ये मेरा बचपन से था मेरा।
0: अच्छा,
1: ये मेरे ब्लड में है म्यूजिक, लेकिन इसको मैंने खुद से ही परखा जाना और खुद के मैंने इसको पॉलिश किया, इम्प्रूव किया। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद का ही गुरु मतलब रहा हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है,
0: तो मतलब प्रॉपरली मुरादाबाद से है। दैट्स वेरी नाइस। तो गाइस देखो कितना बढ़िया वो लोग कर रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सबसे पहले आप दोनों को जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि तमाम लोग आपके सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो कुछ माता रानी का हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ तो एक दो कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, इससे माहौल बन जाएगा। तो कांता भाई हमारे साथ स्टूडियो में है, उनका सोशल मीडिया डेफिनेटली आप जानेंगे, अगर आप उनसे और कनेक्ट होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं और कल का क्या सीन है ये हम आपको बताएंगे डेफिनेटली, कैसे आप उस इवेंट के अंदर एंटर हो सकते हो, ये सब डेमो है, बाकी पिक्चर के लिए आपको कनेक्ट रहना है, पहले कुछ सुन लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो कांता भाई कुछ माता रानी के ऊपर हो जाए क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं आज। दोस्तों आपको भी ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से शरदीय नवरात्रों की, पूरी एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। एंड इस वक्त हमारे साथ कांता भाई एंड आयुष भाई हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, गिटार पे आयुष जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे गिटार बजा रहे हैं। तो कांता भाई क्या सुना रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये अभी एक मिनट ले रहे, तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज जरूर करें, और कल क्या स्पेशल होने वाला है उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को डेफिनेटली फॉलो करें। हमारा जो ऑफिशियल पेज है वो है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और जो मेरा अपना इंस्टा हैंडल है वो है रेडियो वाला आनंद के नाम से, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कांता भाई आई थिंक रेडी हो आप? चलो ठीक है, तो एक देवी का कुछ सुन लेते हैं गाइस, नवरात्रि है तो ऐसे में वाइब तो होनी चाहिए ना, तो जोर से बोलो
1: जय माता दी,
0: सारे बोलो
1: जय माता दी,
0: जय माता दी, चलो शुरू करते हैं।

0: सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मेरे पास तो सिर्फ ये तालियां ही हैं और ये दिल आप चुरा के जाने वाले हो आज कांता भाई, मेरा ही नहीं पूरी मुरादाबाद की जनता का, इतना बढ़िया आप गा रहे हो। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपने इतना बढ़िया माहौल तो यहाँ पे बनाई दिया है, इससे पहले आपने छोटी छोटी जैमिंग्स भी किए हैं, तो कल क्या बेसिकली आप लोग लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप वहाँ परफॉर्म करने वाले हो तो क्या स्पेशल होने वाला है कल हमारे शो?
1: इसमें स्पेशल ये होगा कि मेरे साथ एक गोपीज बैंड है जो दिल्ली बेस्ड है, वो मेरे साथ कोलैब करेगा
0: कल।
1: हाँ कल।
0: ऑलराइट, मतलब आपकी लाइव परफॉर्मेंस?
1: हाँ लाइव रहेगी।
0: ऑलराइट,
1: कुछ सॉन्ग हम साथ में करेंगे, कुछ मेरा सोलो है।
0: अरे वाह, वेरी
1: नाइस। कुछ मेरा सोलो पार्ट है वो करेंगे।
0: हाँ।
1: बाकी जो इसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप भजन, इसमें भजन के साथ हम एक रॉक वाला टच भी डालने वाले हैं।
0: ओके, मतलब जैसे हम जैमिंग,
1: आप लोगों ने बेसिकली सुना है जागरण चौकी, ये एक अलग चीज है।
0: ओके,
1: इसको हम स्टेज पे एक रॉक तरीके से परफॉर्म करेंगे।
0: अरे वाह, वेरी नाइस। तो मतलब एक अलग ही माहौल बनने वाला है स्पिरिचुअलिटी का।
1: हाँ, हाँ, ताकि इससे हर एज का इंसान जुड़ चुके, जेंसी हो या
0: कनेक्ट हो सके।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: वेरी नाइस। कोई मैशअप आप सुनाना चाहें, कोई और जो आपके दिल के बहुत करीब हो भजन, जो आप चाहते हैं कि मुरादाबाद की जनता को यार मैं सुना दूं, थोड़ा सा उनकी क्यूरियोसिटी हम बढ़ा सके। सो यू नो कुछ अगर हो ऐसा आपके पास। हाँ, श्री राम जानकी तो माहौल ही बन जाएगा यार, उनकी आवाज आप भी सुन पा रहे होंगे गाइस। देखिए आपको कैसी लग रही है उनकी परफॉर्मेंस, आप बता सकते हो हमें व्हाट्सएप करके।
1: इसको एक एक बढ़ा दो। तो अगेन ये बहुत प्यारा भजन आप सभी के लिए।
0: हाँ, मेरी पूरी मुरादाबाद की जनता सुन रही है आपको इस वक्त लाइव, एंड हो सकता है कुछ लोग आपको जानते भी हो, है ना, तो भी हो सकता है। हाँ प्लीज कांता भाई।
1: श्री

0: क्या बात है, बहुत ही वंडरफुल माहौल बना दिया यार. बिल्कुल लग रहा है कि मैं कैसे कब जाऊंगा, ये कब होगा, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इनका. गाइस ये मेरे में नहीं, आप में भी बढ़ रही होगी, है ना. सो चलो इन शॉर्ट जल्दी से बात कर लेते हैं. उनका अभी एक जामिंग शो भी होने वाला है आज ही शाम को, तो वो बहुत जल्दी में है. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया, आप आए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने निकाला. आई नो ये बहुत हेक्टिक टाइम है इस टाइम पे, है ना, बहुत ज्यादा आपको चीजें प्रिपेयर करनी. इनफैक्ट आप दो दिन रहने वाले या वन डे रहने वाले?
1: दोनों
0: डे भी. ओके, वो पूरा अहमदाबाद वाली फील आपको गुजरात वाली मुरादाबाद में देने वाला है, करेक्ट. एंड मैं भी वहाँ मिलूंगा, कांता भाई मिलेंगे, हमारी ऑफिशियल टीम वहाँ मिलेगी, एंड आई थिंक आपके और भी लोग साथ में होंगे ना, आपका बैंड एंड सारा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो आप क्या कहना चाहोगे मुरादाबाद की जनता को, यू नो कि वो क्यों आए, आप उनको कुछ करने कहना चाहोगे?
1: हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको आकर एक अलग ही एहसास होगा, क्योंकि भक्ति के साथ जब जैमिंग हम लोग ऐप देते हैं तो एक तो होता है नॉर्मल आप बैठ के सिर्फ भजन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप खड़े होकर पूरी एनर्जी के साथ आप लोग जय घोष करेंगे और हरे कृष्णा या राधा नाम के साथ हम लोग गाएंगे और इसमें एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम लोग भजन करेंगे. तो बस मेरा ये कहना है सभी जनता से यहाँ की कि आप सभी लोग आइए और इसका एड्रेस क्योंकि वो बहुत मेन है.
0: डेफिनेटली बताने वाला हूँ, लेकिन अभी उससे पहले हम एक ना आपसे कुछ सूफी सुनेंगे. देखो भजन तो हमने सुनी लिए, सो यू नो आपकी आवाज मैंने सुना है.
1: जो मेरा मेन जॉनर है वो सूफी है,
0: मेरे को ही पता है. एंड आई थिंक जो गाना मैं अंदर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो आप शायद सुनाने वाले हैं. एंड अब आप जो मुझे बहुत पसंद है आप वही गाओगे, मेरे को पता है. मैं बाद में बताऊंगा आप जो गाने वाले हो. वो हम सभी का फेवरेट है, जेंजी का बहुत फेवरेट है. जो प्यार व्यार करते हैं उनसे बड़ा कनेक्शन फील कराता है. अब आप समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है. तो आप गा दो,
1: मैं बोल दूं पहले, शायद आप मैं कभी कुछ और गा दूं.
0: आप बोलो एक बार, देखते हैं फिर.
1: तेरे दीवानी.
0: हाँ एग्जैक्टली, मैं तो आपको पहली बता रहा था ना, ये मेरी मैनिफेस्टेशन पहली होगी मेरी. क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है ना आपने, मेरे को पता है. तो देखो सूफी सॉन्ग की जब भी बात आए और अगर तेरी दीवानी ना आए तो मुझे लगता है मतलब पाप चढ़ेगा अगर मैंने सुना. तो गाइस एक बार हो जाए फिर तेरी दीवानी कांता भाई की वॉइस में. एंड बाकी इनके सोशल मीडिया हैंडल डेफिनेटली जानेंगे. और कल तो हम मिलने वाले हैं ऑफकोर्स. तो मेरे बीच में दो लड़कियां और बैठी जो सिर्फ सुन रही है और मुस्कुरा रही है. नो ताली, नो क्लैप्स, नो हूटिंग्स, आई डोंट नो क्या हो रहा है उनको, मजा नहीं आ रहा. हाँ चलो फिर शुरू करते हैं. रेडी करें भैया, तो आप कहीं मत जाओ गाइस, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज सर.
2: प्रीति लत मोहे ऐसी लागी

0: अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग, इतने अच्छे अच्छे कलाकार मुरादाबाद में छुप छुप के बैठे हैं, मुझे तो बड़ी मतलब जो है ऐसे मेरे को लग रहा है कि क्यों सामने नहीं आ रहे अभी तक, इतने अच्छे टैलेंटेड, आप इतने टैलेंटेड हो कांता भाई, क्यों नहीं आपने सोचा कि थोड़ा सा और आगे जाया जाए?
1: बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े मेहनत
0: हमारे भी आओ, कभी कभी हमारे रेडियो की जनता को भी अपना जो है टैलेंट दिखाओ,
1: आप टाइम देंगे जरूर?
0: हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो गाइज इस वक्त कांता भाई और आयुष भैया हमारे साथ थे और गिटार पे भैया थे और साथ में भैया ने इतनी फैंटास्टिक वॉइस में गाया और ये कल पूरा आपके लिए लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टेंट डीएम कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे। आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं? क्या है आपका इंस्टा? ऑफिशियल कांते के नाम से मिलेंगे। एंड आप अगर जब भी उनके गाने सुनना चाहते हैं या उनसे कुछ भी आपको लगता है कि यार हमें भैया से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तो आपके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके वो आपसे बात कर सकते हैं, राइट? चलो फिलहाल बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप आए भैया, और थैंक यू आयुष भाई, आपको भी दिल से थैंक यू। और बाकी चलते चलते आप कुछ कहना चाहोगे? लास्ट मौका आपके पास है, तमाम सारे लोग आपके पास है, कुछ कहना चाहते हो कल को लेकर के, अपने इस इवेंट को लेकर के, फर्स्ट टाइम मुरादाबाद में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग ला रहे हैं, तो इस विषय में?
1: बस आई वॉन्टेड के सभी लोग आए और इस इवेंट को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, सभी लोग बहुत टाइम से इसको मेहनत कर रहे हैं इस पे, और ये शो हमारा दो बार भी पोस्टपोन हो चुका है। पहले इसका डेट था 1st of September, फिर 20 में हुआ, तो फाइनली अभी जाके हो रहा है।
0: थोड़ा वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था लास्ट।
1: हाँ बिल्कुल, बारिश बहुत हुई थी इस बार।
0: एग्जैक्टली,
1: बाकी बस मैं यही बोलूंगा कि आओ और इस बहुत ही मस्ती भरी शाम का आनंद लो और जुड़ जाओ भगवान के साथ।
0: लाइफ को जो है ना थोड़ा सा म्यूजिकली भी एंजॉय
1: करना चाहिए।
0: नवरात्रि चल रहे हैं, इतना बढ़िया माहौल है, स्पिरिचुअलिटी में जो है हर इंसान डूब चुका है, लेकिन कल का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा और डिफरेंट होने वाला है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुरादाबादी, प्लीज आप लोग जरूर आइए, और आप आएंगे भी क्यों नहीं, इतना बढ़िया जो गाया भाई ने, और ये तो सिर्फ थोड़ा सा डेमो था, पूरी फिल्म आपको कल मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू आपको भी सर, और आगे भी आप लोग जरूर आइएगा, हम आपको अभी से एडवांस में बुक कर रहे हैं। एंड जाते जाते कुछ और हमारी जनता को जो आप अपनी तरफ से कुछ सुनाना चाहें छोटा सा, जाते जाते
1: बस मैं एक थोड़ा सा गाना गाना चाहूंगा।
0: हाँ प्लीज, कोई सा भी गाना, व्हाटएवर जो भी आपका हो, फिल्मी, थोड़ा फिल्मी स्टेशन बना दो यार, बहुत सारा भजन गा लिया हमने।
1: तो ये जो मैं सॉन्ग गाने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगा।
0: अरे वाह,
1: जितना भी मैंने कुछ किया, हम लोगों ने यहाँ पे आज बात की, तो ये एंडिंग पार्ट है।
0: शाहरुख खान का तो नहीं है गाना?
1: कल होना हो।
0: हाँ मेरे को समझ आ गया, देखो थोड़ा सा हम भी रहते हैं ना स्टेशन में, समझ जाते हैं। प्लीज टेल अस, बहुत अच्छा गाना है, सोनू निगम साहब की आवाज, राइट? बहुत बढ़िया।
1: ही इज माय फेवरेट सिंगर बचपन से चाइल्डहुड।
0: क्या बात।

wonderful message, wonderful lyrics, wonderful song. Thank you so much. And guys, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. कांता भाई को भी फ्री कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्सर्ट में जाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी. बाकी हम जा रहे हैं, आप भी आओ, मिल करके थोड़ा सा धमाल मचाते हैं और इस मेमोरी को और ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, राइट? चलो जी, बाय बाय. थैंक यू कांता भाई, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू भैया आपको भी. एंड आप सभी को गाइज मेरी तरफ से वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि. मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद, उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आदाब, सत श्री अकाल। और कहते हैं पूरी उम्मीद है मेरे को कि आज का दिन रहा होगा एकदम मस्त, एकदम झकास, क्योंकि जिंदगी की जो गाड़ी है ना एकदम बढ़िया चलनी चाहिए। कभी भी एक्सीलेटर जो है ना, मतलब कंट्रोल में रह के चले, ना ज़्यादा तेज और ना ही बार बार ब्रेक लगे। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपके साथ खूब सारी बात करने इस दिल से दिल तक अखिल संग में, जहाँ बातें होंगी दिल की, अंदाज होगा मस्ती वाला, शायरी होगी मोहब्बत वाली, और मोटिवेशन ऐसा होगा कि भाई साहब बस अगर आप सोए हुए होंगे ना तो आज ही अभी उठ के डांडे खेलने चले जाओगे। तो कोई बात नहीं, एक बात ये बताइए दोस्तों, क्या जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है? अरे नहीं, कभी चाय में चीनी कम होती है तो कभी दोस्तों में अकल कम होती है। अरे बस गुस्सा मत हो जाना भाई। और कभी कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन मुस्कुराना फिर भी ज़रूरी है। चेहरे पे मुस्कान, दिल में अरमान रखिए, मुश्किलों के बीच भी अपनी पहचान रखिए। वक्त बदलता है ये बात याद रखिए, हर हाल में खुद पर थोड़ा विश्वास रखिए। तो चलिए इसी बात पर बात करते हैं अपने एक कॉलर से, जिन्होंने बहुत देर से कह रहे ना कि अखिल जी मैं बस कॉल कर रहा था और आप जो हैं आज लेट हो गए। मैंने कहा हाँ सर, वो ट्रैफिक ऐसे ही हो जाता है, प्रकाश नगर चौराहे पे एकदम बैरिकेड लग जाता है कि नहीं भाई साहब आप यहाँ से यू टर्न ले लीजिए, गाड़ी को वापस घुमा के पहुँचाइए स्टूडियो पे। तो सर थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो हमें भी सहयोग देना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने लिसनर से। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? इंद्र भान जी, कैसे हैं आप? आपको भी सर, आपको भी, आपको भी और पूरे परिवार को भी। और इस समय कैसा मौसम है वहाँ पे?
1: मौसम शाम को, रात को और भोर में सर ठंड रहता है, और यहाँ पर इसके बाद सुबह एकदम कोहरा भी रहता है सर और ठंड भी रहता है। अभी दो टाइम का मौसम धूप भी रहता है तो थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन ठंड का हवा चलता है तो लगता है कि ठंड हवा आने के साथ चालू हो गया।
0: ये तो है। अब आप जो है ना, आपने जो जो हाफ स्वेटर जो है अपने अलमारी में और संदूकों में दबा के रखे थे ना, उन्हें निकाल के धूप लगा लीजिए। तो क्या कहते हैं ना, कोई ऐसी कोई दिल की बात, जो दिल की शायरी है जो आप सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को, या कोई ऐसी बात जो साझा करना चाहेंगे?
1: एक दिन शाम सुबह की रात होती है,
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बिल्कुल एकदम मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताजा ताजा अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है।
1: सर ये खुद मेरा बनाया हुआ है।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंद्रजीत जी। तो आज कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगे और कहते हैं ना थोड़ा सा गुनगुनाना भी चाहेंगे अपने साथ?
1: सर वो गाना तो नहीं बन पाता है सर, क्योंकि नाना पाटेकर जी हमारे बीच में तो नहीं रहे, नाना पाटेकर जी, तो आज मैं उन्हीं का फिल्म सुनना चाहता हूँ। उसमें अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर दोनों मिलकर गाते हैं, और फिल्म का नाम है कोहरा, और गीत बोले हम है बनारसी भैया, गायक सुदेश भोसले अमित कुमार।
0: सुदेश भोसले जी की आवाज का तो ये गाना बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना उसमें तो खुद ही इंसान गाने लगता है कि चलो जी आज ये गाना हम ही गुनगुना देते हैं
1: जी सर।
0: और जो नाना जी ने इस गाने में जो एक्टिंग, मतलब कहते ना वैसे पूरी फिल्म में जो उनकी एक्ट का तो कुछ जवाब ही नहीं था, मगर इस गाने में भी उन्होंने इतनी शानदार भूमिका निभाई है, मजा आया आ गया, इसकी भी अलग कहानी है
1: जी सर। और सबसे पहले जी आपको कहने को हेलो को उत्तर प्रदेश के श्रोताओं को, पूरे भारत का श्रोताओं को जीरे से राहुल, और मुरादाबाद में जुड़े सभी श्रोताओं को जो इस समय फोन कर रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा सर, आकर आपको डेडिकेट कराएगा। धन्यवाद,
0: धन्यवाद, धन्यवाद इंजी जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे इंद्र भान जी, और इंद्र भान जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि इस समय जो हवा है ना वो ऐसी ही चल रही है, हल्की सी शाम को ठंडी ठंडी और दिन में भी ठंडी ठंडी, मगर क्या करें साहब, सुबह ऑफिस जाना और शाम को घर वापस आना है, तो इस बीच चाय की चुस्की लीजिए और आज जो थोड़ा जल्दी भाग के आए ना, चलो जी डांडिया नाइट एंजॉय करते हैं, तो वो इस समय गांधी मैदान में जरूर आपको डांडिया के साथ नाच करते हुए मिल जाएंगे, मगर उससे पहले हम सुनते हैं ये फरमाइश। और अगर आपका जाना मिस हो गया ना तो कोई बात नहीं साहब, गाड़ी में भी डांडिया कर सकते हैं, सिर्फ अपना गाना पसंद का प्ले करवा लीजिएगा 9837896896 पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं बिल्कुल आपके दिल से निकली हुई हमारे दिल तक। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुबान से नहीं निकलती, बस दिल में रह जाती हैं, और जब दिल की बातें शायरी बनकर निकलती है ना, तो सीधे किसी अपने के दिल तक पहुंच जाती है। क्यों, सही कहा ना? हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है, हर शाम कुछ नया सिखा कर जाती है। जो हंसकर जीना सीख लेते हैं दोस्तों, जिंदगी भी उन्हीं से दोस्ती निभाती है। तो चलिए अपने लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भाई साहब, आपकी दुआ भाई साहब, बहुत बहुत।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आरब मंडी चौराहे से बोल रहे हैं भाई।
0: तो आरब जी, क्या करते हैं आप?
1: बस थोड़ा सा वही काम कर लेते हैं, बस सुबह मजदूरी पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं।
0: चलिए साहब, ये भी अपने में आप में बहुत बड़ा काम है, सुबह सुबह उठना। मतलब जब सुबह उठना होता होगा तो पहले सोचते होंगे थोड़ी देर और सो लें, और सो लें, ऐसा होता है कभी आरब जी आपके साथ?
1: नहीं, ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए।
0: ऐसे आदमी को नहीं करना चाहिए, जब अलार्म बजे ना एक बार में ही उठ जाना चाहिए, है ना?
1: आलसपन दुनिया का सबसे बुरी चीज।
0: क्या बात कह दी आरव जी आपने, आपने तो ऐसी बात कह दी कि बस अब संडे में इस बात को,
1: आलसपन ना जिंदगी का सबसे बुरी चीज है,
0: संडे वाले दिन इस बात को बस एडिट कर देते हैं, बाकी तो रोज उठना चाहिए टाइम से, है ना?
1: नहीं, किसी दिन भी आलस नहीं करना चाहिए आदमी।
0: तो सही है साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप मंडी समिति में रहते हैं, आपसे तो पंगा भी नहीं कर सकते हो।
1: ना, ऐसा नहीं, देखो हम से भी ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी दुनिया में पड़े हुए।
0: बिल्कुल सही बात कही, सुबह जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी
1: मेहनत करने वाले।
0: बिल्कुल सही कहा आपने बात। तो ये बताइए आरव जी, कोई शायरी सुनाएंगे, क्या करेंगे, या जी गाना गाएंगे एक?
1: गलती हो गई है, क्षमा मांगता हूँ।
0: ये पर्सनल शायरी है लगता है।
1: गलती हो गई है, क्षमा मांगता हूँ, अपने आप को हर चीज से मैं जांचता हूँ।
0: क्या बात है।
1: वो आदमी बुरा है जो देखती अपनी तस्वीर को दुनिया की नजरों से भागता।
0: क्या बात कही, बिल्कुल सही। आप रोज लौकी की सब्जी खा रहे हैं या कभी कभी बीच में पनीर मटर पनीर भी मिल रहा है आपको?
1: ना देखो, ज्यादा मसाले का तो मुझे लालच है ही नहीं, ताजा शुद्ध शाकाहारी रहना आदमी को सही।
0: नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसी ही रहे। मैं तो बस नॉर्मल पूछ रहा हूँ आज, जो आपने एकदम शायरी दी है बिल्कुल एकदम दिल से निकली हुई है आज।
1: ना आदमी को तो कुछ भी जो बोलना चाहिए अपना लिखना चाहिए, आदमी को हर आदमी को अपने लिए कुछ ना कुछ लिखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही,
1: दो लाइनें लिखे या चार लाइनें लिखे,
0: और जब जब वो लिख ले तो उसके बाद 9837896896 पे कॉल करके बता भी देना चाहिए। सही कह रहे हो,
1: बातें बोल नहीं पाते, मैं आपको प्रोग्राम प्रतिदिन सुनता हूँ।
0: आप बिल्कुल रोज सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, तो आप कौन सा
1: बोल नहीं पाते,
0: तो आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं अब जो बहुत ही दिल के पास है इस समय आपके?
1: बेदर्दी वाले मैं तुझी को मेरा दिल याद करता है।
0: क्या बात है, क्या कितने साल हो गए आरव जी? अगर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि शादी को आपकी?
1: तेरह चौदह साल हो गए।
0: चलिए चलिए, सही है सही है, बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छा लगा आपने जवाब जो है इतना सोच समझ के, ज्यादा बिना टाइम के दे दिया।
1: आदमी शादी को तो हमेशा याद रखता है, पहले आदमी के बाद कितनी गर्लफ्रेंड होती है कोई याद नहीं रखता।
0: क्या बिल्कुल सही कहा, अब आप इस गाने को जरूर याद रखिएगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब जो आपने एकदम बात करी ना, एकदम बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बहुत ही अच्छी बात कही, और बहुत ही सीधी बात कही, और बहुत अच्छा लगा कि आरव जी ने आज जो है ना इस तरीके से जो गाना सुनाया ना, बेदर्दी बालमा तुझको, ये तो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसे लगा कि बस अब लता मंगेशकर जी की आवाज़ आने वाली है इसके बाद।
1: नहीं नहीं, एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ।
0: छोटा सा शेर नहीं, छोटा लंबा सा भाग सुना दीजिए आज।
1: अरे कैसी बातें करती हैं आपने। गम बुलाती है मुझको तेरी देख के लहू को, गम बुलाती है मुझको तेरे लहू को देख के।
0: क्या बात है,
1: मुझे तो अपना ही शरीर आज नजर नहीं आ रहा,
0: बहुत
1: तस्वीर देख ली मैंने आपकी, मुझे अपनी ही जगह नजर नहीं आ रहा।
0: क्या बात है, ये तो मुझे लग रहा है एकदम एकदम शायरी जो है एकदम निकली है, एकदम अड़ोस पड़ोस से दिल से।
1: नकली
0: क्या
1: क्या बताया आपने, नकली?
0: नहीं मैं कह रहा हूँ निकली निकली। अरे आप मतलब
1: अरे नहीं, देखो ऐसा थोड़ा सा हमारा साउंड ना बराबर, मोबाइल आपको चल लिया है, दूसरा वाला ही उसमें आवाज आ रही है, सब सुनने के लिए मैं बरकरार बैठे हुए सब बराबर।
0: हमने कहा ये शायरी जो आपके बहुत दिल से करीब से निकली है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप कहीं भी फरमाइश पूरी करें। अभी अभी पूरा शो बाकी है, आज आपको खूब सारी शायरी भी सुनने को मिलेगी, तब तक ये गाना सुनते
1: हैं।
0: दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मुलाकात करे, दोस्ती वो है जो दूर रहकर भी याद करे, दोस्त अगर सच्चा हो जिंदगी में तो खामोशी भी आपकी हर बात समझे।
1: खामोशी
0: खामोशी भी आपकी हर बात को समझे। चलिए बहुत अच्छा लगा आरव जी, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत खुश हुआ कि आपने किस तरीके से जिस तरीके से अपनी बातें रखी, तो आपकी भी गान सुनते। नमस्कार आरव जी। तो हमारे साथ थे आरव जी मंडी समिति के पास से, कह रहे हैं भाई साहब रोज सुबह उठ के ना टाइम से काम पे निकल जाता हूँ और टाइम से आ जाता हूँ, अब आप मेरे को सुना दीजिए अपना पसंदीदा गाना। तो हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर नरेंद्र जी, आपको भी सुनेंगे और आपकी भी बात करेंगे, मगर उससे पहले ये गाना सुनते हैं।

कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक, DM कार्डियोलॉजी।

नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती है ना आपकी अपनी दिल की, क्योंकि ये आपका है अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं अपनी भी, क्योंकि हम अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं और हम वही इंसान हैं जो पूरे दिन लगे रहते हैं, कभी इस काम में कभी उस काम में। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजे जो है ना उसके नज़र नहीं आते, कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता है। तो लगता है शायद हमसे नहीं होगा, शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन याद रखिए, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता है, तो उस मिट्टी में रहना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज पेड़ बन जाता है। तो आपकी मेहनत भी ऐसी ही है, हो सकता है कि आज उसका फल ना दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोशिश बेकार जा रही है।

0: गिरकर उठना ही तो कमाल होता है, मुश्किलों से लड़ना ही मिसाल होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है इस दुनिया में जिनके इरादों में कुछ कर गुजरने का ख्याल होता है। तो चलिए बात करते हैं अपने लिसनर से जो कह रहे हैं कि साहब आप तो कुछ कर गुजरोगे, हमें भी तो कुछ कर गुजरने दो। तो बात करते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर।
0: सर नमस्कार, आज तो आवाज ऐसी तेज सी आ रही है, मतलब मुझे लगता है अभी अभी आपने डिनर कर लिया है।
1: हाँ, कर लिया साहब।
0: तभी तो बिल्कुल एनर्जी एकदम फुल टूश है। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप, हमारे सभी श्रोताओं को बताइए।
1: हाँ, अरावली से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाली जो अरावली, हमने यहाँ बुला ली है मुरादाबाद में।
0: तो आप जो है इसका मतलब आसपास लाइन पार के आसपास से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अरावली तो यहीं आए हुए हैं ना, हनुमान जी तो जो पहाड़ लेके आ रहे हैं ना इस समय, अपनी रामलीला में लेके आने वाले हैं वो पहाड़।
1: तो जिस श्रोता से आपने बात करी, एकता कॉलोनी से, उससे थोड़ी सी आ गई है।
0: अच्छा, वो एकता कॉलोनी में है। सब पता है आपको कौन से श्रोता कहाँ रह रहे हैं। तो कुछ तो इसी बात पे, उन्होंने भी एक शायरी सुनाई थी, अब आप भी एक शायरी सुना दीजिए बढ़िया सी।
1: फूल तोड़ा था गुलाब का आपके लिए, लेकिन कांटों ने भी रास्ता बदल दिया।
0: क्या बात है, मतलब आपने फूल तोड़ा था गुलाब का और कांटों ने आपके लिए रास्ता बदल दिया।
1: हाँ।
0: क्या बात। और
1: बात करी थी अखिल जी से दिल तक।
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मतलब सही है, अगर कॉल ना उठे ना तो समझो सामने वाला इंसान तो धोखा दे रहा है ना।
1: अरे कल लगाते लगाते थक गए, मझोली का प्रभात वो बात खत्म कर दिया ना कोई।
0: कोई बात नहीं, प्रभात जी ने देखो आज कल इतनी सारी बात कर ली, पूरे हफ्ते की बात कर लिया, वो फिर मंडे को पूरे हफ्ते की बात करेंगे हमसे दोबारा। मैं कहता हूँ आप
1: मंगल को ही बात करेंगे।
0: चलो, आपकी इतनी सारी बातों पे एक छोटी सी, मतलब बिना अभी फरमाइश के आप जो है ना अभी बात मत छोड़िएगा, आप ही के लिए एक बात कह रहा हूँ, छोटी छोटी खुशियों से रिश्ता बनाए रखिए, छोटी छोटी खुशियों से रिश्ता बनाए रखिए, अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखिए, कल की फिक्र में आज ना खो जाए कहीं, आज को भी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखिए। तो नरेंद्र जी कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं जो इस समय आपके दिल के बहुत करीब है?
1: फिल्म शराबी।
0: अरे शराबी फिल्म का गाना,
1: और शराबी का गाना वो है एक तरह से गजल ही है उस फिल्म में, मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह।
0: जरूर जरूर, आपकी मंजिल और आपके रास्ते तो हमें पता है कहाँ है किधर है, मगर तब भी आपको ये गाना सुनाएंगे।
1: सभी श्रोताओं के लिए डेडिकेट है।
0: चलिए चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आप ऐसी ही कॉल करते रहिए, भले ही वो मिस कॉल बन जाए मगर कॉल जरूर करिएगा नरेंद्र जी।
1: मैं ये कह रहा हूँ रामलीला देखने के लिए तो दो ही जगह बहुत है।
0: रामलीला देखने के लिए दो ही जगह
1: बहुत, आनंद जी देख रहे हैं खूब दबा कर रामलीला।
0: हाँ, आनंद जी तो आज डांडिया खेल रहे हैं खूब, गरबा छो केम छो मजा मत छो कर रहे हैं आज।
1: जो कल प्रोग्राम होगा उनके कलाकार आए थे स्टूडियो में।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: सिंगर। हाँ जी, उनका वो प्रोग्राम भी सुना, सुबह भी सुना था मैंने।
0: क्या बात है क्या बात है, तो आप जरूर
1: आनंद जी से हमारी नाराजगी है वो भैया।
0: तो वो आप आनंद जी से सुबह पूरी कर लीजिएगा नाराजगी।
1: ना भैया, छोटा मोबाइल है, व्हाट्सएप पे बात नहीं हो पाती।
0: चलिए हम आनंद जी के बाद आपका मैसेज पहुंचाएंगे, और अभी लेते हैं इस गाने का आनंद, कहते हैं ना थोड़ा सा मजा ले लेते हैं।
1: लेकिन खुशी का प्रोग्राम भी आपके प्रोग्राम से की तरह होता है।
0: खुशी मैम का तो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होता है, खुशी मैम जो है ना एकदम खुश करके दिल खोल के बिल्कुल एकदम
1: बात कर देती है श्रोताओं के।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और वो जो है तड़का हरियाणवी तड़का, वो तो बहुत ही मजाक हो रही है भैया।
0: वो बहुत है, वो ऐसी हैं, वो मस्त हैं, वो बहुत ही एकदम बढ़िया करके
1: मस्त है और स्वस्थ है, जुकाम उन्हें भी हो रहा है।
0: चलिए आप,
1: आनंद जी को भी हो रहा है।
0: आज हमारे नरेंद्र जी ने सभी का स्टूडियो में जितने भी हमारे सारे साथी हैं सभी का अपडेट दे दिया, बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी। इससे हमें ये पता चलता है कि आप जितना सुनते हैं ना एफएम, हमें मतलब अभी तक और कोई नहीं सुनता पूरे दिन।
1: हमारा 7:30 बजे भजन शुरू हो जाए, भजन खत्म हो, समाचार, समाचार के बाद तो आनंद जी आ ही जाते हैं।
0: बस बस बस बस, तो चलिए करते हैं। चलिए नरेंद्र जी, करिएगा, आप पकड़ लीजिएगा उन्हें, और तब तक आप आपका गाना सुनते हैं, आपकी फरमाइश सुनते हैं। ठीक है, तो श्रोता हमारे साथ थे नरेंद्र जी, और जैसे जैसे वक्त जो है ना बढ़ता जाता है, 9:55 हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं यार। जल्दी जल्दी बात करते हैं, फरमाइशें सुनते हैं, क्योंकि दिल की बात होती ही ऐसी है, पता ही नहीं चलता कितनी लंबी चल जाए। सेम टू सेम जिसे नरेंद्र जी की इतनी लंबी बात चल गई दिल की, तो कहते हैं ये कुछ जुड़ाव ही ऐसे होते हैं। तो चलिए तब तक इनकी फरमाइश का लेते हैं आनंद। आनंद जी को भी बहुत याद किया। अगर आनंद जी से आपको मिलना है ना, तो इस समय चल रही डांडिया नाइट आपकी गांधी पार्क में, बुद्धि विहार में, रंग है रास और खूब लोग कर रहे हैं वहाँ पे आनंद के साथ मस्ती, क्योंकि आनंद जी वहाँ पे हैं इस समय आप सभी के एंकर। तो हाँ चलिए आप करिए मस्ती, हाँ हमारे साथ, हम भी खूब मस्ती करेंगे, खूब गाने चल रहे हैं हमारे भी डांडिया वाले। तो अगर नहीं जा पा रहे हैं तो गाड़ी में भी हाथ हिला सकते हैं साहब, ऐसा नहीं है। तब तक लेते हैं इस गाने का आनंद और

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। खूब सारी बातें हुई हैं आज दिल की, और जो है ना कहते हैं अब समय भी हो गया 10:03 में। कह रहा है भाई साहब अब तो जरा छोड़ दो, माइक भी कह रहा है कितना बोलोगे अखिल भाई कितना बोलोगे। मैंने कहा नहीं साहब हम नहीं बोलेंगे, हमें तो ये समय भी कम लगता है क्योंकि तुम्हारी हंसी से मेरी शाम सज जाती है, तुम्हारी बातों से हर उलझन सुलझ जाती है। रिश्ता हो अगर दिल से दिल के जुड़ाव का तो दूरियां भी मोहब्बत कम नहीं कर पाती है। तो यही बात है, आप लोगों के साथ पूरा जुड़ाव रहता है और ये 1 घंटा भी सच में कहें तो हमें कम लगता है। और हमारे साथ एक और लिसनर हैं, चलिए चलते चलते उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? हेलो।
1: अरे मैं शैलेश, मैंने कहा संजय बोल रहा हूँ।
0: संजय जी नमस्कार, क्या क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: नमस्कार सर, आपसे कितनी बात, अभी बात ना हुई आपसे, भूल गए क्या?
0: नहीं आपसे अभी आपसे बात हुई थी, मगर अभी आप हमारे साथ ऑन एयर हैं, सभी सुन रहे हैं आपके साथ पूरे लाइव में,
1: इसलिए बात कर रहे हो।
0: नहीं नहीं आपसे, आपकी हमारी बात हो रही है और इस समय पूरा मुरादाबाद सुन रहा है कि संजय जी और अखिल कौन सी दिल की बातें कर रहे हैं।
1: अरे भाई आपसे तो बात करते हो दिल खुश हो जाता है।
0: कुछ और संजय जी, ये कोई बढ़िया सी शायरी सुनाइए ना।
1: शायरी मुझे आती नहीं भाई।
0: तो कोई एक गाना ही सुना दे, एक लाइन गा दीजिए आज दिल
1: की। गाना सुनाऊं? गाना सुनाऊंगा आपको।
0: जैसे जैसे
1: आपने मुझे उलझन में डाल दिया, मैं गाना क्या सुनाऊं? अब मैं सुनाऊंगा जरूर। ये गाना है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी भीगी भीगी सी पलकों में आके रह गए मेरी सपने बिखर के।
0: मन
1: तू भी तरसे,
0: अब तो मुझे पता चल गया
1: मन तेरा भी किसी को मिलने को। ये संजीव कुमार और हमारे बहुत पुराने, एकदम मैं पुरानों को याद करता हूँ।
0: हाँ हाँ नहीं अच्छी बात।
1: जया बहादुर का हमारी जो है जया बच्चन है, तो उनका गाना है ये गाना ही सुनवा दिए जी आप।
0: जरूर जरूर ये गाना भी सुनवाएंगे। और आपके लिए चलते चलते, क्योंकि अब समय हो गया है, आपके लिए चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने होते। हर वक्त पास नहीं होते, यादों में बस जाते हैं जो दिल से, वो लोग कभी हमसे दूर नहीं होते।
1: बिल्कुल नहीं होते, दिल के करीब रहते हैं,
0: दिल के करीब रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल करी, आपसे इतने दिनों बाद बात हुई संजय जी।
1: लेकिन मेरी ये कॉल बिल्कुल रिसीव कर ली है।
0: जरूर जरूर जरूर संजय जी,
1: ये सॉन्ग सुना दीजिएगा
0: पक्का, जरूर ये आपको सुना देंगे। अनामिका को आप बुला लीजिएगा, बाकी हम गाना सुना देंगे। चलिए जरूर जरूर सुनाते, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद संजय जी।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, जो इस समय कह रहे थे कि आप मेरी कॉल नहीं उठाते, मैं कॉल करता रहता हूँ। सर हम कैसे आपको बताएं कि कॉल खूब सारी आती है, हम नहीं उठाते, खुद ही उठ जाती है। तो चलिए अब जैसा हो गया समय 10:07 और भाई साहब मैं लेट हो गया हूँ, वहाँ से भी कह रहे हैं कि भैया बोलते रहोगे क्या, बोलते रहोगे, आओगे नहीं? हमने कहा नीचे जरूर आएंगे, क्योंकि अब दिल का जो कनेक्शन जब जुड़ जाता है ना, पहले भी कहा था, जब पता ही नहीं चलता, बातों का ही पता नहीं चलता, वक्त का ही पता नहीं चलता है। और दोस्तों मैं बस चलते चलते ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि डर लगने के बावजूद आप सही कदम उठाने की कोशिश करेंगे। पहली बार स्टेज पर जाना, नया काम शुरू करना, नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो, या अपने सपने के बारे में परिवार से बात करनी हो, तो घबराहट होना तो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल है कि हाँ भाई पहली बार अगर कुछ कर रहे हैं तो हल्की सी तो धड़कन जो होती है ना, वो भी थोड़ी सी एक आध सेकेंड तेज भागने लगती है। लेकिन एक गलती मत करना, सिर्फ इसलिए मत रुक जाना क्योंकि आप अभी परफेक्ट नहीं है, सीखते सीखते ही इंसान बेहतर बनता है। अपने हौसलों को कभी कमज़ोर मत होने देना, मुश्किलों को खुद पर हावी मत होने देना, आज कदम छोटा है तो क्या हुआ दोस्तों, कल यही कदम तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तो चलिए इसी शायरी के साथ और इसी नोट के साथ तो विदाई लेते हैं, क्योंकि एक घंटा जो है ना कभी कभी कम लगता है, मगर ये जो खूबसूरत महफिल सजती है आपकी और हमारी, और जो दिल की ये बातें होती ना, हंसी मजाक होती है, पता ही नहीं चलता कब 2 मिनट की 8 मिनट में निकल जाती है कॉल, और रिश्तों की बातें होती हैं, खुद पर भरोसा करना भी एक कला होता है भाई साहब। जाने से पहले आपके लिए चलिए एक और शायरी बोल देते हैं। हर दिन कोई नई उम्मीद से सजाना, गिरकर भी हर बार उठ जाना, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, अपने दिल की सुनना और मुस्कुराना। तो याद रखिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की कहानी अभी चल रही है, कोई पन्ना मुश्किल हो सकता है, कोई पन्ना खूबसूरत, लेकिन एक पन्ने के आधार पर पूरी किताब का फैसला मत कीजिएगा। अपने परिवार को समय दीजिए, दोस्तों को याद कीजिए, हाँ हाँ उसी दोस्त को याद कीजिए जो कह रहा भाई साहब आजा निकल के बाहर फटाफट चाय पीने चलनी है, और खुद के सपनों पर भी काम कीजिए। अपनी मुस्कान को संभाल के रखिए। मैं हूँ अखिल, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मिलेंगे फिर एक नई शाम, नई बातों और नई शायरी और ढेर सारी मस्ती के साथ। जिन जिन की कॉल कहते हैं ना नहीं उठ पाई, उनसे कल करेंगे खूब सारी बातें। कुछ तो इसलिए नहीं मिला पाते क्योंकि भैया अभी अखिल आप आज बहुत बिजी होते हैं, कॉल एकदम जो होती है ना हमारी लग नहीं पाती, मगर कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से दिल तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सनडाउनर विद

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाल जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.